मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में फिल्म श्री 420 से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, दिल में पहली बार जागे किसी के खूबसूरत एहसास, एक मीठी सी घबराहट और शर्माते हुए प्यार के इकरार को बयां करता हुआ गीत सुनवाने जा रहे हैं आपको शमशाद बेगम की आवाज में। फिल्म है मिस्टर एंड मिसेस 55।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में फिल्म हाथी मेरे साथी से आप ये गीत सुन रहे हैं। इसी के साथ ही भोर सुहानी से अब अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 9वीं तिथि, तदनुसार 30 मई 2026 सुबह के 5:53 हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब आपको आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। सुबह 6:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम अर्पण। 6:44 पर सुनिएगा कार्यक्रम श्री रामचरितमानस गान।

गोल्ड सुप्रभात इस कार्यक्रम का समय रहेगा सुबह 7:10 पर। सुबह 7:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आज सवेरे।

10:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम विश्व दर्पण। 10:30 पर आप सुन सकेंगे।

तस्वीर वाल्मीकि नगर बिहार। ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे सुबह 11:10 पर। 12:10 का समय रहेगा आकाशवाणी FM गोल्ड वुमेन एंड फैमिली शो घर आंगन का।

दोपहर 1:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल। ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। ये आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है 100.1 MHz पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर दो नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। श्री शाह ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की है।
1: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: गृह मंत्री ने ड्रोन, रडार, निगरानी टावर, अत्याधुनिक तकनीक और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती से एक मजबूत सुरक्षा तंत्र के निर्माण का विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इसके स्थापना के बाद कोई भी देश की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकेगा। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग लाइंग की यह पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमा के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। राष्ट्रपति यू मिन आंग आज शाम नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति की कल म्यांमा भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। म्यांमा के राष्ट्रपति सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के उत्साहवर्धक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि कल तिरुवनंतपुरम में सेमीकंडक्टर स्टार्टअप नेत्रा सेमी ने देश का पहला एजआई सिस्टम ऑन चिप नेत्रा A2000 विकसित किया है, जो उन्नत 12 नैनोमीटर नोड तकनीक पर आधारित है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत अनुदान जारी करने और उसके उपयोग के बारे में व्यापक समीक्षा बैठक की। बैठक में समग्र शिक्षा अभियान के तीसरे चरण को अधिक

प्रभावी, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाने पर विशेष बल दिया गया। श्री प्रधान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वर्ष से समग्र शिक्षा अभियान, पीएम पोषण, पीएम श्री और अन्य प्रमुख योजनाओं के समन्वय से एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे स्कूली शिक्षा प्रणाली में बेहतर समन्वय और प्रभाव सुनिश्चित होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। और खेलों में, आईपीएल क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। फाइनल में गुजरात टाइटंस का मुकाबला कल अहमदाबाद में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सुप्रभात। भक्ति केवल ईश्वर की आराधना नहीं, बल्कि मन में विश्वास, विनम्रता और आशा का दीप जलाए रखने का नाम है। आज अर्पण में स्वीकार करें निधि का नमस्कार।

के 6:33 और ठीक 33 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की नशरियात का आगाज होता है। मैं आपका मेजबान शबीर खान।

0: दर्शकम् तथा परिणाम अभिमुखीकरणम् आसीत्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले श्रीप्रधानः अवदत् यत् समग्र शिक्षाभियानं पीएम पोषणम् उल्लासः पीएम श्री इत्यादीनां प्रमुखयोजनानां एकीकृतपद्धत्याः प्रसारणम् अस्मिन्नेव वर्षे आरभ्यते। सः अवदत् यत् एतेन विद्यालयीयशिक्षाव्यवस्थायां बृहत्तरः समन्वयः प्रभावश्च सुनिश्चितः भविष्यति। केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अवदत् यत् कृषकाणां कृते बीजानां उपलब्धता सुनिश्चेतुं चतुस्सप्तति सहस्राधिकैक लक्ष क्विंटल परिमितस्य राष्ट्रीय बीज संरक्षणस्य स्थापना कृतास्ति। सः ह्यः नवदिल्ल्याम् अस्य वर्षस्य खरीफ अभियानस्य कृते कृषि विषयकस्य राष्ट्रीय सम्मेलनस्य द्वितीय दिने प्रसारमाध्यमान् संबोधयन् आसीत्। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां गतसायं महाराजा यादविंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट क्रीडांगणे न्यू चंडीगढ़ नगरे महत्वपूर्णे क्वालिफायर द्वितीय स्पर्धायां गुजरात टाइटंस दलेन राजस्थान रॉयल्स दलं सप्तस्तोभैः पराजितम्। अधुना गुजरात टाइटंस दलं श्वः रविवासरे अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे निर्णायक स्पर्धायां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन सह स्पर्धिष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर दो नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। श्री शाह ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की।
2: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है कि चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
1: गृहमंत्री ने ड्रोन रडार निगरानी टावर अत्याधुनिक तकनीक और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती से एक मजबूत सुरक्षा तंत्र के निर्माण का विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इसके स्थापना के बाद कोई भी देश की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकेगा। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग हलाइंग की ये पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमा के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे आज शाम नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति की कल म्यांमा भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है। उन्होंने बताया कि किसी भी एलपीजी वितरक केंद्र पर आपूर्ति की कमी की कोई सूचना नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के उत्साहवर्धक परिणाम मिल रहे हैं। श्री वैष्णव ने कल कहा कि तिरुवनंतपुरम में सेमीकंडक्टर स्टार्टअप नेत्रा सेमी ने देश का पहला एज एआई सिस्टम ऑन चिप नेत्रा A2000 विकसित किया है जो उन्नत 12 नैनोमीटर नोड तकनीक पर आधारित है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत अनुदान

जारी करने और उसके उपयोग के बारे में व्यापक समीक्षा बैठक की। बैठक में समग्र शिक्षा अभियान के तीसरे चरण को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाने पर विशेष बल दिया गया। श्री प्रधान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वर्ष से समग्र शिक्षा अभियान, पीएम पोषण, पीएम श्री और अन्य प्रमुख योजनाओं के समन्वय से एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। आईपीएल क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। फाइनल में गुजरात टाइटंस का मुकाबला कल अहमदाबाद में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: in terms of human development and quality of life. Israeli troops entered the southern Lebanese village of Dibayn near Marjayoun yesterday, pushing deeper into Lebanon, even as military officials from both countries held rare direct talks in Washington. The move came amid fresh Israeli airstrikes that killed at least 6 people. Lebanese state media reported that 5 people were killed in strikes on Deir Kanun, Al-Neher and Abbasieh, while a municipal policeman died in a separate strike on the village of Ebba. At the same time, a 6-member Lebanese military delegation met Israeli military officials at the Pentagon in the first direct military talks between the two countries in decades. In sports, India continued its impressive performance at the Asian Under-20 Athletics Championships in Hong Kong, taking its medals tally to 8, including 4 gold, 2 silver and 2 bronze, and climbing to the second place in the standings behind China. On the second day of the competition yesterday, Indian athletes won 7 medals, including 4 golds. The standout performance came from 19-year-old Pooja Singh, who clinched the gold in the women's high jump with a leap of 1.93 meters. India's other 3 gold medals came from Nitin Gupta, who won the men's 5,000-meter race walk, while Amanat Kamboj topped the women's discus throw, and Rahul Jakhar backed the yellow medal in the men's decathlon. And that is the end of this news bulletin.
1: हमारी आवाज अब तक आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से पहुंच रही है मीडियम वेव 268.8 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7:10 हुए हैं। समय एक वक्फे के बाद पेश होता है आज का लाइव मॉर्निंग शो पयामे सुबह।
2: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर, हर गली, हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
3: अरे यार तू कहाँ ले आया मुझे? अम्मा तेरी भाभी ने घर का सामान मंगाया है, नहीं ले गया तो शामत है। सुना यहाँ ऑफर्स भी है।
4: ओह,
3: सॉस एक में एक फ्री, कुकिंग ऑयल 40% ऑफ, 5 किलो आटा 70 रुपए।
4: भाई ऑफर तो ठीक है, लेकिन क्वालिटी और लेवल का क्या?
3: अम्मा लेवल वेवल छोड़, ऑफर्स देख।
4: ओए ऑफर किंग, ऑफर के चक्कर में अपनी आंखें मत ऑफ कर। क्वालिटी परखने के लिए लेबल पे गौर कर। किसी भी खाद्य उत्पाद की प्रामाणिकता की पहचान उसका लेबल है। खरीदने से पहले लेबल की जांच अवश्य करें।
5: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K।
6: अरे माँ देखो एक्सीडेंट, रुकना पड़ेगा, मैं मदद करके आता हूँ।
7: रहने दे बेटा, इतनी झंझट में क्यों फंसना? पुलिस केस हो गया तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने पड़ेंगे।
6: नहीं माँ, अब ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट की पीएम राहत स्कीम आ गई है, ये गोल्डन आर है माँ। अभी मदद मिल जाएगी तो इसकी जान बच जाएगी।
7: पर बेटा हॉस्पिटल जाते ही वो एडवांस पैसे मांगेंगे, कहाँ से आएंगे इतने पैसे?
6: माँ इसमें कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है, 1.5 लाख तक का इलाज और 7 दिन का खर्चा सरकार देगी, 1 रुपया एडवांस नहीं देना पड़ेगा।
7: और वो पुलिस, वो तो तुझे तंग करेंगे ना कि कैसे हुआ, कहाँ से लाया।
6: माँ अब 7 रूल्स हैं, नो हरासमेंट, मदद करने वाले को राहवीर माना जाता है, मुजरिम नहीं, पुलिस परेशान नहीं कर सकती।
7: सच में? फिर तो बेटा देरी मत कर, जल्दी जा।
6: हाँ माँ, आप बस 112 डायल करके एम्बुलेंस बुला लो, पेपर वर्क अब सिस्टम हैंडल करेगा, हमें बस इंसानियत दिखानी है।
7: शुक्र है, अब डर या पैसे की वजह से किसी की जान नहीं जाएगी।
6: वही तो माँ, पीएम राहत, इलाज पहले पैसे बाद में, 112 डायल करें जिंदगी बचाएं।
5: Issued in public interest by Office of the Transport Commissioner, Jammu and Kashmir.
8: Central University of Kashmir, Gandharbal की जानिब से तालीमी साल 2026-2027 के लिए पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्रामों में दाखिले का ऐलान किया गया है। Central University Entrance Test बराए पोस्ट ग्रेजुएशन 2026 के Central University of Kashmir के प्रोग्रामों के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को मुतला किया जाता है कि दाखिले के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं। मजीद तफसीलात के लिए www.cukashmir.ac.in पर जाएं या दफ्तरी औकात में 9469847277 पर राबिता कायम करें।
9: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
10: जी,
9: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
10: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
9: पर ये होगा कैसे?
10: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
9: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
10: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
9: बस
10: बस
9: समझ गया।
10: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए

0: गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। जब सुबह अपने नर्म कदमों से रात की दहलीज पार करती है तो फिजा में एक अनजानी सी ताजगी खिलने लगती है। परिंदों की चहचहाहट, हवा की सरगोशियां और उफक पर बिखरती रोशनी ये एहसास दिलाती है कि जिंदगी अभी उम्मीद से खाली नहीं हुई। इसी ख्याल, इसी कैफियत और इसी ताजगी के एहसास के साथ हम पयाम सुबह लेकर हाजिर। मैं हूं आपका मेजबान रशीद निजामी और आज मेरे साथ हैं
1: शब्बीर अहमद खान। जी हाँ दोस्तों, आज एक नई सुबह लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आपसे कहना चाहूंगा कि मैं मेरी कैफियत इस वक्त बयान नहीं कर सकता लफ्जों में, क्योंकि मेरे सामने इस वक्त मेरे उस्ताद बैठे हुए हैं। अगर मैं उनका नाम भी ना लूं तो उनका अंदाज, बोलने का अंदाज और उनकी आवाज खुद उनकी पहचान बताती है। मुझे नाम बताने की जरूरत नहीं है, बल्कि यूं भी कह सकते हैं हम कि ये रेडियो कश्मीर के एक इंस्टीट्यूट हैं जहां से हर कोई बंदा कुछ सीख ही लेता है। और दोस्तों, प्रोग्राम पे आते हैं। हर सुबह अपने साथ सिर्फ सूरज की रोशनी नहीं लाती, बल्कि नए सवाल, नए इम्कानात और मुआशरे के बदलते हुए रंग भी हमारे साथ रखती है।
0: शबीर, पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ऊंचाई पे पहुंचाया मुझे। हालांकि वहां पे मैं हूं नहीं, वो एक सराब है जो आपको दिखता है। हकीकत बिल्कुल, जो आपने कहा कि नई सुबह जो अपने साथ सूरज की रोशनी नहीं लाती बल्कि नए सवाल, नए इम्कान लाती है। जब हम शनिचर की बात करते हैं ना, इस सुबह में जैसा कि रवायत है, हम बात करते हैं उन मसाइल पर जो बराए रास्त हम सब की जिंदगियों से जुड़े होते हैं। वो मसाइल जो कभी सड़कों पर दिखाई देते हैं, कभी इदारों में और कभी हमारे अपने रवैयों में।
1: जी निजामी साहब, सनीचर को पयामी सुबह का थीम होता है इश्यूज रिलेटेड टू पब्लिक, यानी अवामी मसाइल की बात होती है, उनका हल ढूंढने की कोशिश होती है। साथ ही हम अपने जमीन से चंद सवाल पूछते हैं। क्या हमारा अपना रोल क्या है समाज के, समाज को बेहतर बनाने के लिए?
0: बिल्कुल सही कहा आपने शबीर, दूसरों पर उंगली उठाना आसान है लेकिन अपने में कोई कमी, खामी या गलती ढूंढना बड़ी बात होती है, और उसे भी बेहतर। और बड़ी बात यह कि हम उस खामी, उस गलती को दूर करने की कोशिश करें।
1: निजामी साहब, तो आइए आज की इस खुशगवार सुबह में मौसीकी की लताफत और ख्यालात की संजीदगी के साथ करते हैं आगाज।
0: आगाज में आप सबके लिए ये प्यारा नगमा।

0: आकाशवाणी श्रीनगर आप तक पहुंच रहा है एक नए रंग, नए आहंग और नई लय के साथ।
1: पल पल जाऊं मैं तोरे रंग में जिवां।
2: जिंदगी से जुड़े हर एक शोबे की मुफीद जानकारी।
3: सब्र रोशिद सुलुन।
2: सुनते रहिए हमारी नशरियात
0: दुनिया के किसी भी कोने में, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और वेव्स OTT के जरिए।
4: जहां जाएगा हमें पाएगा।
5: ये जो प्रोग्राम पैम सुबह यूज तो आकाशवाणी श्रीनगर पर बोझान छू मीडियम वेव्स आत अर्हट आशारिय अठक मीटर यानी अक्सा सखत शुरक के लहर्ट्स तो FM 71.5 MHz पर। बुझ तुंद मेजबान रशीद निजामी तो मैसेज छे शब्बीर खान।
6: निजामी साहब, जिंदगी छन सिर्फ खुशियन तो ख्वाहिशन हुन नाव बल्कि तिमन सवालन हुन नाव ते यम दोह दिश असि पानस दशन खोवि जायन लबान छे। कुने ट्रैफिक को मसले, कुने नौजवान हिंद रोजगार को मसले, तो कुने सोशल मीडिया के असरातन हुन, तो कुने माहौलियात तो शहरी जिम्मेदारी हुन मसले।
5: बिल्कुल शबीर साहब, अक्सर यात प्रोग्रामस मन मसलन हुन जिक्र करान अमा पोज तिमन हिंदी हल झार कोशिश कम सपदान।
6: बिल्कुल
5: मे बसान अख महजब माशर वनो तथ ये शिकायत सत शूर तौजूद आ शूर इंसान बेहतर वत कु लागान तो मुख्तलि मसलन हूं हल पुरमन तरीकस पे झारन तरगीब दिवान।
6: बिल्कुल पन् सामीन वनो पन्नस ये मॉर्निंग ट्रांसमिशन मज कोशिश कर सान बोजन वाले गरपूर फायद मिलन ये प्रोग्राम सम बापत पे पान तान रोजान तो बी मुख्तलि मेहमान दावत दिवान रोजान। तह पाओ चेतस जे आज सुबह 10:30 आसन सन मेहमान डॉक्टर अब्दुल हफीज शाह मसूदी स्पेशल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी यमन सत कत करन सन सथी निजामी सर।
5: यमन यजन सन मेहमान छ डॉक्टर अब्दुल हफीज शाह मसूदी साहब यम वन पोस्टन पे काम करम जिंदगी बेहतरीन तजुर्बो किताब चक लिखी मुख्त इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस आसान तिमन मजान तो यमो कर सी दावत कबूल। मे पूर्व उम्मीद सन सारी बोजन वल रोजन तमें सा जुटित 10:30 तो शबीर साहब चुना सलाह अख बदाना करो पेश तिकाजे सुबह सुबह ये मौसीकी सत मूड ठीक सपदि ना अख खास कैफियत पद सपदान पे तमुक असर पूर दोस रोजान।
6: बिल्कुल बजा फरमा क्या करो पेश
5: ये कलामि सादुद्दीन सादी अख बेहतरीन कंपोजिशन मुनीर अहमद मीर साहबन बनमच मुनीर अहमद मीर साहबन आवाज़ बेची।

0: इसी आलू से प्रोसेस होके आता है, और
1: बिल्कुल
0: उसके
1: सही,
0: अलग अलग वराइटीज है, उसमें कुफरी चिप्सोना वन, कुफरी चिप्सोना वन टू वगैरह है। तो
1: बिल्कुल
0: वो इस हवाले से ये एक बहुत ही अहम तरीन क्रॉप हमारी पूरी दुनिया, हिंदुस्तान के अंदर नहीं, कश्मीर के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर एक अहम तरीन क्रॉप है
1: डॉक्टर
0: जो हम
1: साहब। एक
0: खड़े।
1: बात बताइए, कितनी किस्में यहाँ हमारे कश्मीर में इसकी अवेलेबल है?
0: इसकी जो दो वैरायटीज हमारी यूनिवर्सिटी ने रिलीज की है, इसमें शालीमार पोटैटो वन और शालीमार पोटैटो टू, ये दो दो वैरायटीज यूनिवर्सिटी ने रिलीज की है। इसके बगैर हमारे पास जो यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने रिकमेंड की है वो बहुत सारी, जैसे कुफरी ज्योति है, एक पुरानी वैरायटी है, कुफरी हिमसोना है, कुफरी हिमालनी है, कुफरी बादशाह है, इसका मरकजी इदारा है वो शिमला में है, वहां से सिफारिश शुदा ये वराइटीज हमने इनको यहाँ टेस्ट किया है, और यहाँ हम इसको रिकमेंड करते हैं कि फार्मर इसको लगा सकता है।
1: बिल्कुल सही, चूंकि आप वेजिटेबल साइंसेस से ताल्लुक रखते हैं तो इसकी गजाई अहमियत के बारे में थोड़ा सा बताइए।
0: ये एक बेहतरीन सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स का, जो एक इंसान को डेवलप होने में चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, कैल्शियम चाहिए, मिनरल्स चाहिए, फाइबर चाहिए। इस आलू के अंदर प्रोटीन थोड़ा सा इसमें कम है, लेकिन बाकी जो भी इंसान को मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए खाने, गिजा के जो हमें मिलता है, वो इस आलू के अंदर, तभी इसको पूरे दुनिया में इसको स्टेपल फूड कहा जाता है, और हमारे हिंदुस्तान में ये एक पहली नंबर पर ये जो सब्जी है इसको काश्त किया जाता है। अगर
1: जी
0: आप इसका रकबा और जो इसका प्रोडक्शन है वो एक नंबर पे है हमारे हिंदुस्तान के अंदर।
1: जब इसके हम काश्त करते हैं
0: जी,
1: तो पानी कितना चाहिए इसके लिए?
0: हम जो प्लेन्स में, जो हमारे यहाँ श्रीनगर वगैरह जो प्लेन एरिया है,
1: जी
0: इसमें आपको इतना पानी की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके दो तीन क्रिटिकल, जिसको हम क्रिटिकल स्टेज कहते हैं, जब इसमें फूल आ जाए, क्योंकि वो फूल हमें यहाँ सीड सेट नहीं होता, हमें यहाँ उसको नहीं, उसको काटना पड़ता है, वो एक अलामत है कि आपको इसमें पानी देना ही देना है। अगर इसमें जमींदार थोड़ा सा ध्यान रखे कि पानी जो क्रिटिकल स्टेज से, एक तो जब लगाने के टाइम पे मॉइस्चर उसमें अच्छा होना चाहिए
1: जी
0: ताकि ये जर्मिनेट हो सके, और जब इसका क्रिटिकल स्टेज, जब जब फूल निकल आए, तब इसका पानी का एक क्रिटिकल स्टेज है, उस टाइम पानी इसको चाहिए चाहिए। अगर इसमें पानी की कमी उस टाइम हो गई तो इसकी जो पैदावार है वो बहुत कम हो जाएगी।
1: बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमारे साथ बात की इस आलू के हवाले से।
0: थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू
1: अपने
0: सर।
1: तमाम सामईन किराम को बता दें कि आपके साथ बात कर रहे थे डॉक्टर रिजवान रशीद, असिस्टेंट प्रोफेसर डिवीजन ऑफ वेजिटेबल साइंसेज, शेरी कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, श्रीनगर।
0: थैंक यू सर।

सेट ऑन किया है कि आप जुड़े हैं लाइव मॉर्निंग शो पयामे सुबह के साथ। और इस वक्त हो चला है खबरों का, जहां आकाशवाणी दिल्ली से ठीक 8 बजे समाचार नष्ट होंगे।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए तेल कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाए गए हैं। अस्पतालों में प्रसव बढ़कर 90.6% हो गए हैं। म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग हलाइंग 5 दिवसीय यात्रा पर आज भारत आएंगे। मौसम विभाग ने आज देश के कई राज्यों में तेज बारिश और गरज के साथ तूफान आने का पूर्वानुमान लगाया। हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरे दिन 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
5: Regarding the efforts of the government to keep the price stable, is Bharat Sarkar ne excise duty kam ki. So these all efforts have been done to keep the price stable. We are working on the strategic reserves also. Oil marketing companies ko work out karne ke liye kaha hai ki LPG ka jo reserve hai, that should be minimum 30 days with them. And they are working on it. And similarly for crude also we are working.
4: संयुक्त सचिव ने कहा कि सरकार रणनीतिक भंडारों के माध्यम से ईंधन सुरक्षा मजबूत करने और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि किसी भी एलपीजी वितरण केंद्र पर आपूर्ति की कमी की कोई सूचना नहीं है।
6: सरकार सभी घरों तक एलपीजी सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज्ड प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
4: विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रहे हैं। श्री महाजन ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र से भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त उड़ानें संचालित की जा रही हैं। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि कच्चे तेल का टैंकर व्यापारिक पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल चुका है। इसके 3 जून को विशाखापट्टनम पहुंचने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इस पोत पर लगभग 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल भारत आ रहा है। श्री शर्मा ने कहा कि क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 6ठे चरण के आंकड़े कल जारी कर दिए। इसके अनुसार मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा में भारत ने तीव्र प्रगति की है। सर्वेक्षण के अनुसार संस्थागत प्रसव 88.6%

0: से बढ़कर 90.6% हो गए हैं। सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत की कुल प्रजनन दर 2% बनी हुई है। सर्वेक्षण के अनुसार 12 से 23 महीने के बच्चों के टीकाकरण का आंकड़ा लगातार 96% से अधिक बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार मिशन परिवार विकास सहित राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रमों के निरंतर प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। सर्वेक्षण के अनुसार महिलाओं की डिजिटल समावेशन और वित्तीय सशक्तिकरण में निरंतर प्रगति हुई है। इसमें कहा गया है कि इंटरनेट का उपयोग करने वाली महिलाओं की संख्या लगभग दोगुनी होकर 64.3% पर पहुंच गई है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि आयुष्मान भारत और विस्तारित स्वास्थ्य सुरक्षा पहलों ने स्वास्थ्य सेवा में वित्तीय सुरक्षा मजबूत की है। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग हलाइंग की ये पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमा के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे आज बाद में नई दिल्ली पहुंचेंगे। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति की कल म्यांमा भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच बैठक के दौरान म्यांमा और भारत के बीच आपसी संबंधों से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत म्यांमा के राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए उत्सुक है।
1: म्यांमा के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है, जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
2: दिस इज ऑफिशियल विजिट एंड वी लुक फॉरवर्ड टू वेलकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार।
0: इस यात्रा के अंतर्गत म्यांमा के राष्ट्रपति व्यापार और उद्योग जगत से संबंधित वार्ताओं और शहर के विभिन्न स्थलों पर भ्रमण के लिए 2 जून को मुंबई भी जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर 2 नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की।
3: BSF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के 2 सप्ताह में होगी। महाधिवक्ता तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि सरकार युवाओं के लिए चिंतित है और ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि आगे ऐसी कोई चूक न हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा।

0: पंजाब नगर निकाय चुनावों में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 19 नगर पंचायतों के 1977 वार्ड में से 958 वार्ड जीत लिए हैं। कांग्रेस को 397, शिरोमणि अकाली दल SAD को 192 और भाजपा को 172 वार्ड में जीत हासिल हुई है। बहुजन समाज पार्टी को केवल 7 वार्ड मिले। निर्दलीय उम्मीदवारों ने 251 वार्ड जीतकर तीसरा स्थान हासिल किया। गोवा आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। 1987 में इसी दिन गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था और वो भारतीय संघ का 25वां राज्य बना था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज पणजी स्थित कला अकादमी में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे।
1: गोवा में आज आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह राज्य की पिछले 4 दशकों की उल्लेखनीय प्रगति और विकास यात्रा को रेखांकित करेगा। 1961 में पुर्तगाली शासन से मुक्ति के बाद गोवा दमन और दीव के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश बना था। इसके बाद 1967 में हुए ऐतिहासिक जनपद संग्रह ने गोवा की अलग पहचान को बनाए रखने का मार्ग प्रशस्त किया। वर्ष 1987 में कोंकणी को राजभाषा का दर्जा मिलने के बाद राज्य गठन का रास्ता साफ हुआ और 30 मई 1987 को गोवा भारत का 25वां राज्य बना। आज के समारोह में कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा पर स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा। इसके साथ ही एक कॉफी टेबल बुक का लोकार्पण, पुरस्कार वितरण और नागरिक कल्याण से जुड़ी विभिन्न पहलों की शुरुआत भी की जाएगी। इसके बाद उपराष्ट्रपति गोवा स्थित CSIR राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का दौरा करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेक्काल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज बहुत तेज बारिश की आशंका जताई है। विभाग ने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओलावृष्टि की भी आशंका व्यक्त की है। IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस की टीम प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गई है। न्यू चंडीगढ़ में कल दूसरे क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु के बीच फाइनल कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। हांगकांग में चल रही एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए अब तक कुल 8 पदक अपने नाम किए। इनमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत तालिका में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। कल प्रतियोगिता के दूसरे दिन भारतीय एथलीटों ने 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो रहा है। 1 महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की यह प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद कनक। नीट UG पेपर लीक मामले में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी आज के अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला ने सर्वोच्च न्यायालय का बयान दिया है, जवाबदेही तय होने तक नहीं रुकेंगे पेपर लीक मामले। देशबंधु और नवभारत टाइम्स ने CBSE की 12वीं की आंसर शीट भी डिजी लॉकर में भेजे जाने की जानकारी दी है। पत्र लिखता है, यहीं से करा सकेंगे रिवैल्यूएशन। शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पास करने की अनिवार्यता से छूट देने का सर्वोच्च न्यायालय का इंकार भी अनेक अखबारों में है। अमर उजाला लिखता है, समय सीमा 1 साल बढ़ी। दैनिक जागरण ने भी इस खबर को प्रकाशित किया है। पत्र ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, सरकारी शिक्षकों को सेवा में बने रहने के लिए TET पास करना ही होगा। जनसत्ता ने कर्नाटक में कांग्रेस की बैठक आज होने का समाचार देते हुए लिखा है, DK शिवकुमार को चुना जाएगा नेता। पंजाब केसरी ने सिद्धारमैया की सिद्धि शीर्षक से अपने संपादकीय में लिखा है, कर्नाटक में जितनी शालीनता और शांति के साथ कांग्रेस पार्टी के भीतर नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, उसे भारतीय लोकतंत्र की जीवंत ताकत कहा जा सकता है। दैनिक जागरण ने घरेलू उड़ानों में कटौती से हवाई किराया 30% तक बढ़ने का समाचार दिया है। मौसम विभाग की चेतावनी भी कई अखबारों में है। अमर उजाला लिखता है, अटका मॉनसून, 7 दिन के बाद देगा दस्तक, 10% कम होगी बारिश। राजस्थान पत्रिका की टिप्पणी है, बेवफा मॉनसून। दैनिक भास्कर लिखता है, इस साल सूखे का खतरा। हालांकि पत्र ने बिहार, झारखंड, बंगाल और उत्तर पूर्व में अच्छी बारिश की संभावना व्यक्त की है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए

कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाए गए हैं। अस्पतालों में प्रसव बढ़कर 90.6% हो गए हैं। म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग हलाइंग 5 दिवसीय यात्रा पर आज भारत आएंगे। मौसम विभाग ने आज देश के कई राज्यों में तेज बारिश और गरज के साथ तूफान आने का पूर्वानुमान लगाया। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: पूर्वानुमान लगाया और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी श्रीनगर है, मीडियम वेव 268.1 मीटर यानी 1116 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रोग्राम है पयाम सुबह। मैं हूं आपका मेजबान, आपका होस्ट, आपका दोस्त रशीद निजामी, और मेरे साथ हैं मेरे साथी शब्बीर अहमद खान।
2: जी निजामी साहब, मुझे लगता है अब नजर डालते हैं 30 मई की तारीखी अहमियत पर कि आज के दिन दुनिया में कौन कौन से अहम वाकयात रोनुमा हुए, किन अजीम शख्सियात ने जन्म लिया और किन नामवर हस्तियों ने इस दुनिया से रुख्सत ली।
1: बिल्कुल शबीर, सबसे पहले तारीख के औराक से चंद अहम वाकयात। 1431 ईस्वी में आज ही के दिन फ्रांस की कौमी बहादुर खातून हीरोइन जोन ऑफ आर्क को जिंदा जला दिया गया। वो फ्रांस की आजादी की अलामत समझी जाती हैं।
2: यहां 1911 ईस्वी में दुनिया के मशहूर मोटर रेस इंडियाना पोलिस 500 पहली बार मुनक्कद हुई।
1: 1922 ईस्वी में अमेरिका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन में लिंकन मेमोरियल अवाम के लिए वक्फ किया गया, जो सदर इब्राहिम लिंकन की यादगार है।
2: 1987 में आज ही के दिन गोवा को भारत की 25वीं मुकम्मल रियासत का दर्जा हासिल हुआ है।
1: 2012 ईस्वी में भारत के अजीम शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद 5वीं मर्तबा आलमी चैंपियन बने। उन्होंने उस दिन टाई ब्रेकर में बोरिस गेलफेंड को हरा दिया। अब जिक्र करते हैं उन शख्सियात का जिनकी पैदाइश आज के दिन हुई।
2: जी निजामी साहब, आज यानी 30 मई 1909 में मशहूर अमरीकी मौसीकार बेनी गुडमैन पैदा हुए, जिन्हें किंग ऑफ स्विंग भी कहा जाता है।
1: बिल्कुल। 1947 ईस्वी में भारतीय सियासतदान और साबिक वजीर आला पुडुचेरी वी नारायण स्वामी पैदा हुए आज ही के दिन यानी 30 मई को।
2: 30 मई 1955 में बॉलीवुड के मारूफ अदाकार परेश रावल पैदा हुए, जो उन्होंने फिल्मी दुनिया में अपनी मुनफरद अदाकारी से एक अलग मकाम हासिल कर लिया।
1: बिल्कुल। और 1980 में आज ही के रोज इंग्लैंड के मशहूर फुटबॉलर स्टीवन जेरार्ड पैदा हुए, जो दुनिया के बेहतरीन मिडफील्डर्स में शुमार किए जाते हैं। शबीर, आज के रोज जो शख्सियात ये दुनिया छोड़कर चली गई हैं, उनका जिक्र भी करेंगे लेकिन इस नगमे के बाद।
2: जी बिल्कुल।

0: वॉल्टेयर वफात पा गए आज ही के दिन यानी 30 मई को।
1: 1960 ईस्वी में नोबेल इनाम याफ्ता रूसी अदीब बोरिस पास्टरनाक इस दुनिया से रुखसत हुए।
0: 1606 ईस्वी में सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव जी शहीद हुए, जिन्हें सिख तारीख में बड़ी अकीदत से याद किया जाता है।
1: 2013 ईस्वी में मारूफ भारतीय फिल्म साज अदाकार और हिदायतकार ऋतु पार्नो घोष इंतकाल कर गए। बंगाली सिनेमा में उनकी खिदमात को हमेशा याद किया जाएगा। ऋतु पार्नो घोष ने 19 नेशनल अवार्ड्स हासिल किए हैं, जो एक बड़ी अचीवमेंट तस्वर की जाती है, और वो सिर्फ 50 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। तो शबीर, ये थी वो शख्सियात जो आज ही के दिन यानी 30 मई को ये दुनिया छोड़कर चली गई हैं। तारीख हमें ये सबक देती है कि वक्त गुजरता रहता है, मगर इंसान के आमाल, खिदमात और किरदार उसे हमेशा जिंदा रखते हैं। क्यों
0: जी? बिल्कुल, जिन हस्तियों ने इंसानियत की भलाई के लिए काम किया उन्हें हर जमाने में याद किया जाएगा, भले ही शोभा कौन सा रहा हो, देश कौन सा रहा हो या मजहब कौन सा रहा हो।
1: बहुत अच्छे, बहुत अच्छी बात आपने कही, यानी आप बेलौस खिदमत के लिए उठे।
0: बिल्कुल,
1: जब आप खिदमत काम की, लोगों की, गरीबों की, यतीमों की, पसमानदा लोगों की करेंगे तो नाम आपका जरूर
0: बेशक बेशक और सुनहरी लफ्जों में आपका नाम लिया जाएगा।

0: तस्वीर ये था गाय फिल्म का नगमा
1: जी।
0: अब घड़ी क्या इशारा कर रही है?
1: घड़ी तो बहुत बड़ा इशारा कर रही है कि आपको हम सुनाने वाले हैं खबरें अपने समय को आकाशवाणी दिल्ली से। खबरों का वक्त हो चला है खबरनामे कबल के।
0: ये वो इशारे हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। हमें अपने सुनने वालों को खबरदार करना है,
1: अपने सुनने वालों को भी खबरदार करना है, खुद भी खबरदार रहना है कि दुनिया में हर रोज या आज के दिन क्या हुआ।

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। मरकज ने तेल मार्केटिंग कंपनियों से कहा है कि वो मगरबी एशिया महाजाराई जारी रहने के पेश नज़र एलपीजी के जखीरे 30 दिन तक बरकरार रखें। खानदानी सेहत के कौमी सर्वे से माँ और बच्चे की सेहत के मैदान में बड़े फायदों का पता चला है। इदारा जाति जजगी में इजाफा होकर ये 90.6% हो गई है और बच्चों की टीकाकारी 96% हो गई है। म्यांमार के सदर मिन ऑंग लैंग भारत के 5 रोजा दौरे के पहले मरहले में आज सुबह बिहार में बौद्ध गया पहुंचेंगे। भारत के महकमे मौसमियात ने आज मुल्क की बहुत सी रियासतों में मूसलाधार बारिश और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की पेशगोई की है। हांगकांग में 20 साल तक की उम्र की एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट्स का बोलबाला रहा। उन्होंने दूसरे दिन सोने के 2 तमगों समेत 7 तमगे जीते हैं। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा कर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ फाइनल मैच खेलने को यकीनी बना दिया है। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने सरकारी शोबे की तेल मार्केटिंग कंपनियों से कहा है कि वो एलपीजी के जखीरे कम से कम 30 दिन के लिए कायम करें, क्योंकि मगरबी एशिया में महाजाराई से तवानाई की आलमी सप्लाई में बार बार रुकावट आ रही है। पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत में ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने यह बात मगरबी एशिया महाजाराई के बारे में बैन वजारती प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कल नामनिगारों से बात करते हुए कही। सप्लाई में रुकावट की रोकथाम से मुतालिक एहतियाती इकदामात का जिक्र करते हुए मोहतरमा शर्मा ने कहा कि भारत खाम तेल को जखीरा करने की गुंजाइश में इजाफे के लिए भी काम कर रहा है। मोहतरमा शर्मा ने कहा कि हुकूमत अहम जखीरों और बिला रुकावट सप्लाई को यकीनी बनाकर ईंधन की यकीनी फराहमी को मुस्तहकम बनाने पर भी काम कर रही है। इसके अलावा जखीरा अंदोजी की रोकथाम के लिए भी इकदामात किए जा रहे हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने खानदानी सेहत का 6ठा कौमी जायजा जारी किया है, जिसमें आदाद शुमार से माँ और बच्चे की सेहत, तगजिए और माली तहफ़ के मैदान में भारत की खातिर खा तरक्की का पता चलता है। ये जायजा कल जारी किया गया, जिससे ये बात खास तौर पर पता चली है कि इदारों में की गई जजगी में जो पहले 88.6% थी, इजाफा होकर 90.6% हो गई है। एक तफसीली रिपोर्ट।
1: आदाद शुमार से पता चला है कि 95.9% हामला खवातीन को जज्जी के बाद की निगहदाश्त मिलती है, जबकि माओं को पहली सेमाही में मिलने वाली जज्जी के बाद की निगहदाश्त में भी इजाफा हुआ है। पहले ये 70% थी, जबकि अब ये 76.2% हो गई है। जायजे में कहा गया है कि भारत में खवातीन के हामला होने की मजमू शरह TFR 2% बरकरार है और बच्चों की टीकाकारी से खानदानी मनसूबाबंदी के कौमी प्रोग्रामों के असरात की अहमियत जाहिर होती है, जिसमें मिशन परिवार विकास भी शामिल है। जायजे में खवातीन की डिजिटल शमूलियत और माली तफवीज अख्तियारात के मैदान में लगातार पेशरफ भी जाहिर की गई है। यह भी कहा गया है कि जिन खवातीन ने कभी न कभी इंटरनेट इस्तेमाल किया है, उनकी तादाद तकरीबन 2 गुना हो गई है। पहले ये 33.3% थी, जबकि अब ये तादाद 64.3% हो गई है। सर्वे में बताया गया है कि आयुष्मान भारत, PMJAY और हिफ्जान सेहत के तौसी शुदा इकदाम से हिफ्जान सेहत में सबके लिए पैसे की यकीनी फराहमी का इस्तेहकाम पैदा हुआ है। वजारत ने बताया कि इस दरियाफ्त से तरक्याती मकासद हासिल करने की राह में भारत लगातार तरक्की कर रहा है। स्वाति रखेजा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
0: म्यांमार के सदर मिन होंग यांग भारत के 5 रोजा दौरे पर आज सुबह बिहार के बौद्ध गया पहुंचेंगे। उनके हमरा एक आला सतह का वफद भी होगा, जो बहुत से काबीना वजीरों, सीनियर अफसरों और सरकर्दा ताजिरों पर मुश्तमिल होगा। सदर मिन का उनकी मौजूदा हैसियत से भारत का यह पहला दौरा है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: म्यांमार के सदर यू मिन ऑंग ह्यांग बोधगया में महात्मा बोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। आज बाद में वो नई दिल्ली पहुंचेंगे, यहाँ वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर से मुलाकात करेंगे। उम्मीद है कि कल

0: म्यांमार भारत तियाती फोरम में शिरकत करेंगे। पीर को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी और तहजीबी रिश्तों को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर तबादला ख्याल करेंगे। नई दिल्ली में नामाजगारों से बात करते हुए वज़ारत खारजा के तर्जमान रणजीत जायसवाल ने कहा कि उन सभी मामलात पर जो म्यांमार और भारत के दरमियान बहुत से पहलुओं पर मबनी ताल्लुकात का हिस्सा है, दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात के दौरान तबादला ख्याल किया जाएगा।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
2: दिस इज ऑफिशियल विजिट एंड वी लुक फॉरवर्ड टू वेलकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार।
0: दौरे के हिस्से के तौर पर म्यांमार के सदर 2 जून को मुंबई जाएंगे, जिसका मकसद ताजिरों और सनअतकारों से बातचीत करना और मौकों का दौरा करना है। हमारे नामनिगार ने बताया कि म्यांमार भारत की पड़ोसी मुकदम मशरक पर खसूसी तवज्जो और महासागर पॉलिसियों का कायल है। म्यांमार के सदर के भारत के सरकारी दौरे से उम्मीद है दोनों मुल्कों के दरमियान कसीर जहती ताल्लुकात में मजीद इस्तेहकाम और गहराई पैदा होगी। सुपर्णा सेकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
3: कर्नाटक के सुबुकदोश हो रहे वजीर आला सिद्धारमैया ने नया रहनुमा मुंतखब करने के लिए आज सहपहर 4 बजे कांग्रेस कानून साज पार्टी की मीटिंग तलब की है। इस दौरान डीके शिवकुमार वजीर आला सिद्धारमैया की जगह लेने की दौड़ में सबसे आगे हैं। गवर्नर थावरचंद गहलोत ने जनाब सिद्धारमैया का इस्तीफा कबूल कर लिया है और नए रहनुमा के चुने जाने तक उनसे निगरान वजीर आला के तौर पर फरज़ अंजाम देने को कहा है। इस दौरान कांग्रेस के सभी 136 अराकीन असेंबली को कानून साज पार्टी मीटिंग में शरीक होने से मुतालिक सर्कुलर जारी किया गया है। पंजाब मुकामी बल्दियाती इंतखाबात में बरसर इख्तदार आम आदमी पार्टी ने 1977 में से 958 वार्ड्स में जीत दर्ज की है। रियासत की 8 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों, 75 म्यूनिसिपल काउंसिलों और 19 नगर पंचायतों में ये इंतखाबात हुए थे। कांग्रेस ने 397, श्रोमणि अकाली दल ने 192 और बीजेपी ने 172 वार्ड्स में कामयाबी हासिल की है। बीएसपी महज 7 वार्ड्स में ही कामयाबी हासिल कर सकी। दिलचस्प बात यह है कि आज़ाद उम्मीदवार 251 वार्ड्स में जीत के साथ तीसरे नंबर पर हैं। 26 मई को पंजाब के शहरी मुकामी बल्दियाती इदारों में हुए इंतखाबात में कुल 7,554 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। रियासत गोवा आज अपना यौमे तासीस मना रही है। आज ही के दिन साल 1987 में गोवा को मुकम्मल रियासत का दर्जा दिया गया था और इस तरह यह भारतीय यूनियन की 25वीं रियासत बन गई थी। नायब सदर सीपी राधाकृष्णन पणजी की कला अकादमी में गोवा यौमे तासीस तकरीबात में शिरकत करेंगे। ये मौका गोवा की आज़ादी से लेकर इंसानी तरक्की और म्यारे ज़िंदगी के मामले में भारत की सरकर्दा रियासत बनने तक के गोवा के सफ़र की अक्कासी करता है। मज़ीद तफसील हमारे नामानिगार से।
4: गोवा की यौम तासीस तकरीबात के दौरान आज रियासत की गुज़श्ता 4 दहाई के दौरान जो तब्दीली हुई है उसे नुमाया किया जाएगा। 1961 में पुर्तगाली तसल्लुत से आज़ादी हासिल करने के बाद गोवा दमन और दीव के साथ मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाका बन गया था। 1967 में फैसला कुन लम्हा तब आया जब गोवा के लोगों ने गोवा की मुनफरिद शनाख्त को बरकरार रखने के लिए तारीखी ओपिनियन पोल में हिस्सा लिया। साल 1987 में कोंकणी जबान को सरकारी जबान का दर्जा मिलने से गोवा के रियासत बनने की राह हमवार हुई और उसी साल 30 मई को गोवा भारत की 25वीं रियासत बन गई। गोवा की यौम तासीस तकरीबात के दौरान नायब सदर सीपी राधाकृष्णन आज CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी का दौरा करेंगे, जहां वो तहकीक और टेक्नोलॉजी से मुतालिक नुमाइशी अशिया का मुशाहिदा करेंगे और साइंसदानों से बातचीत करेंगे। इस दौरान नायब सदर CSIR NIO कॉफी टेबल बुक का इजरा भी करेंगे। पणजी से महेश चोपड़े की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
3: इस दौरान मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने गोवा के यौमे तासीस के मौके पर रियासत के अवाम को मुबारकबाद पेश की है। जनाब शाह ने कहा कि गोवा सकाफत और विरासत का अजीमुशान इम्तिजाज है जो दुनिया के सामने गर्मजोशी से भरपूर भारतीय ज़ियाफ़त का चेहरा पेश करता है। जनाब शाह ने कहा कि रियासत गोवा मुल्क की तरक्की और फ़ख्र के मामले में अपना तआवुन जारी रखेगी। मरकजी वज़ीर दाखला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत उभरते हुए सिक्योरिटी चैलेंजों से ज़्यादा मौसर तरीके से निमटने के लिए सरहदी मुहाफिज़ फोर्स BSF को इजाफी जिम्मेदारियां देने पर गौर कर रही है। جناب شاہ نے کل گجرات کے بھوج میں بی ایس ایف اہلکاروں سے بات چیت کے دوران یہ بات کہی۔

0: इस दौरान जनाब शाह ने भारत पाकिस्तान सरहद पर स्ट्रेटेजिक एतबार से अहम दो नई सरहदी चौकियों का इफ्तिताह किया। जनाब शाह ने मजीद कहा कि बीएसएफ के कयाम के 60वें साल के मौके पर सरहदी हिफाजत के बीएसएफ के नजरिए को मुकम्मल तौर पर तब्दील करने का फैसला किया गया है। जनाब शाह ने महज सरहदी सलामती के रिवायती नुक्ते नज़र को इलाकाई सलामती के नए नुक्ते नज़र से बदलने के मकसद से क्वाड्रेंगुलर सिक्योरिटी ग्रिड के कयाम को मुतारिफ कराने का ऐलान किया है। भारत के महकमे मौसमियात ने आज मगरबी उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और अंडमान निकोबार जजायर में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। आईएमडी ने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और चंडीगढ़ में ज्वालाबारी के साथ आंधी तूफान की पेशगोई भी की है। महकमे ने शुमाल मशरकी रियासतों और साहेली कर्नाटक में गरज चमक के साथ आंधी तूफान का इम्कान जाहिर किया है, जबकि मगरबी मध्य प्रदेश और तेलंगाना में शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहने का इम्कान है। हांगकांग में जारी 20 साल से कम उम्र की एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत मुसलसल बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहा है। सोने के 4, चांदी और कांसे के 2-2 तमगे समेत कुल 8 तमगे जीतकर दर्जाबंदी में भारत चीन के बाद दूसरे मुकाम पर पहुंच गया है। कल मुकाबले के दूसरे दिन भारतीय एथलीट्स ने 4 सोने के तमगे समेत 7 तमगे जीते हैं। 19 साल की पूजा सिंह ने खवातीन की 1.3 मीटर की हाई जंप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सोने का तमगा जीता है। भारत के लिए दीगर 3 सोने के तमगे नितिन गुप्ता, अमानत कंबोज और राहुल जाखड़ ने हासिल किए हैं। आईपीएल क्रिकेट में कल रात न्यू चंडीगढ़ में खेले गए सेकेंड क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ अब कल अहमदाबाद में खेले जाने वाले फाइनल मुकाबले में गुजरात टाइटंस और दिफाई चैंपियंस राजस्थान रॉयल्स बेंगलुरु आमने सामने होंगे। राजस्थान रॉयल्स की जानिब से जीत के लिए मुकर्ररा 215 रन के निशाने को गुजरात टाइटंस ने 8 गेंद बाकी रहते हुए 3 विकेट के नुकसान पर 219 रन बनाकर हासिल कर लिया। शुभमन गिल ने सबसे ज्यादा 104 रन बनाए, जिन्हें मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेट के नुकसान पर 214 रन बनाए थे। वैभव सूर्यवंशी ने सबसे ज्यादा 96 रन बनाए, अलबत्ता वो एक बार फिर सेंचुरी बनाने से चूक गए। खवातीन क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में दूसरे टी20 बैनुल अक्वामी मैच में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इस मैच में भारतीय टीम 3 मैचों की सीरीज को जीतने के मकसद से मैदान में उतरेगी। भारतीय वक्त के मुताबिक ये मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। जुमेरात के रोज चेम्सफोर्ड में खेले गए इफ्तिताही मैच में इंग्लैंड को 38 रन से शिकस्त देने के बाद भारत ने सरदस्त सीरीज में 1-0 से सबकत हासिल कर ली है। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर।
1: शुक्रिया जमीर। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के अखबारात ने अलग अलग खबरों को शाहसुर्खी बनाया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सरहद पर वाक़ चौकी पर जवानों से बातचीत की और 14 निगरानी चौकियों का इफ्तिताह किया और कहा कि सरहदी इलाकों के लिए 4 रुखी सिक्योरिटी ग्रिड बनेगी। इस खबर को रोजाना प्रताप ने जड़ी सुर्खी के साथ शाये किया है। रोजाना प्रताप ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के हाथों ऑपरेशन सिंदूर अंजाम देने वाले बहादुर फौजियों के तजर्बात पर मबनी किताब के रस्म इजरा की खबर को पहले सफ़े पर जगह दी है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि किताब ऑपरेशन सिंदूर अंजाम देने वाले जवानों को खराज अकीदत पेश करती है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी डिजिटल मईशत बनकर उभरा। स्टेट ऑफ इंडिया डिजिटल इकोनॉमी 2026 की रिपोर्ट में ये बात कही गई। इस खबर को आज के अखबारों ने खसूसी तौर पर शाया किया है। रोजामा इंकलाब ने अमरीकी सर डोनाल्ड ट्रंप के उस ऐलान को बड़ी अहमियत दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान के साथ मुतअद्दिद निकात पर इत्तेफाक राय में पेशरफ्त हुई है। नीज आबनाए हुरमुज में बहरी ट्रैफिक की बिला तातुल बहाली यकीनी बनाई जाएगी। आज के बेशतर अखबारात ने उर्दू के नाम और शायर पद्मश्री डॉक्टर बशीर बद्र के इंतकाल पर उर्दू दुनिया उनके मद्दाहों की तरफ से जबरदस्त खराज अकीदत पेश किए जाने और ताजियती नशिस्तों के अहतमाम की खबर पर भी खसूसी तवज्जो मरकूज की है।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। मरकज ने तेल मार्केटिंग कंपनियों से कहा है कि वो मगरबी एशिया महाजराई जारी रहने के पेश नज़र LPG के जखीरे 30 दिन तक बरकरार रखें। खानदानी सेहत के कौमी सर्वे से माँ और बच्चे की सेहत के मैदान में बड़े फायदों का पता चला है। इदारा जाती जचगी में इजाफा होकर ये 90.6% हो गई है और बच्चों की टीकाकारी 96% हो गई है। म्यांमार के सदर मिन ऑंग ह्लैंग भारत के 5 रोजा दौरे के पहले मरहले में आज सुबह बिहार के बौद्धगया पहुंचेंगे। भारत के महकमे मौसमियात ने आज मुल्क की बहुत सी रियासतों में मूसलाधार बारिश और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की पेशगोई की है। हांगकांग में 20

0: साल तक की उम्र की एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट्स का बोलबाला रहा। उन्होंने दूसरे दिन सोने के दो तमगों समेत 7 तमगे जीते हैं। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ फाइनल मैच खेलने को यकीनी बना दिया है। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन
1: आकाशवाणी श्रीनगर स्टेशन ट्यून कर मीडियम वेव अखत शुरुआस FM 3.5 मेगाहर्ट्ज़ पर वनकेश प्रोग्राम जारी लाइव मॉर्निंग शो पयाम सुबह।
2: तमीन पेश खिदमत स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम सेहत बदन। यह प्रोग्राम तहतान वातान हया वेलनेस एंड रिसर्च सेंटर नजदीक पुलिस स्टेशन बटमालो श्रीनगर ये डिस्क पाइल्स तो प्रोस्टेट वगैरह खतरे ऑपरेशन बगैर इलाज सपदान फोन 7051545788।
3: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्रोग्राम सेहत बदन खदमत हाजिर बुस्तून मेजबान रशीद निजामी। यह प्रोग्राम तुंदिस खदमत पेश करान हया हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर नजदीक पुलिस स्टेशन बटमालो श्रीनगर। तो प्रोग्राम मं मुख्तलिफ बेमार तो मुख्तलिफ दादिन पे कहान तम कहान यम सोन सेहत बेहतर रोज अत तैनात डॉक्टर साहबान स आज से सब दिकात हया वेलनेस एंड रिसर्च सेंटर MD डॉक्टर फिरोज साहब से वन स्टूडियो मज फिरोज अहमद साहब खरमक।
4: अस्सलाम
3: वालेकुम। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। डॉक्टर साहब इस आज मौजू चोरमो छु ये बड़ दिलचस्प मौजू हालांकि आज करो ना कुनी बीमारी पे कत कह मखसूस बीमारी पे कत कह आज करो तिथ अमल अकान यम सीमार हेको सपद या यम सहत कुनी किस्म ददार हे वत मगर अतन अख खास सवाल पैद सपदान यम सात ईद मनावान अच्छा पन्नी सेहत ख्याल तथ कन रोजान कह यथ ख्याल थान पे अत पे रोशनी जी क्या करान यम सोन सेहत खराब हे सपद।
4: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुरशीद साहब गोडनिच कथ वन बहुत पन्न बोजन वाल सारे दिल चन अमी गहरायो सान ईद मुबारक पेश कर चूंकि तु सी पता अस मुसलमान पूर वस मं बड़ दो गो लक ईद इस शुकरान ये माह मुबारक तरह दह या कुतर दह गुजरम और अम पस परवरदिगार शुक्र गुजार कर और तथ पे ईद उल फितर इस मनावान दम चीज ईद उल जुहा मुसलमान बोर्ड त्यौहार यह त्यौहार यह मनावान हजरत इब्राहिम अला नबीन अलैहिस्सलाम सिंदिस तथ यादस मज हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम वसलाम जबा आयो कर और तथ मुकाबले पे खुदा सबन जनत मज दुम या जानवर सूज और तम पद गो तम सद बदल सो यह बड़ा टॉपिक तौजू तारे मुसलमान पता चूंकि तुंद सवाल तुंद यह आज क्या क्या बेअतदारी तो बा चीज यम सहत पे फर्क पे हकीकत मन चूंकि ईद उल अजहा तो यथ मुरबानी जज्बा और हर कह मुसलमान यमिस पे जक़ात वजिब अमिस फर्ज कुरबान पन्न तरफ तो चूंकि यम सा कुरबान और हर कंस तकरीबन हर कह घर वो कोशिश कर कुरबान करो और अत कुरबानी मं जो चीज खास कर अत मान नंबर कि यम सा कुरबानी माज खमो या इस्तेमाल करो यह करो एहतियात सान यह करो एहतदाल सान यह करो ना कि अकन करो सो मतलब ज्याद करो दपान एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड हर कह चीज ज्याद इस्तेमाल कर सेहतस पे वातान असर और इथे कन माज अगर एहतदालस पे खेमो कहन चीज कर अल्लाह तबारक तआला ने तथ मखलूक पैदा करमित यम सिर्फ तो सिर्फ इंसान सिंद खातिर कोरमुत और इंसान वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून तो जिन तो इंसान खुदा सबन पन्नी इबादत खातिर गो दरअसल इस अमदा यह अल्लाह ताला सानी खतर थोमुत यम सा खेमो मगर अत करो यह ख्याल कि ज्यादती कर चीजस मे खान चेन मैं बेअतदारी गन क्या सान घर मन बनान यह ईज पे योत क्या बल्कि ओवरऑल पूरे वरी किस वरीस वो गोश खेन कि मसाल खेवान यानी गोश कम मसाल ज्यादा तील ज्यादा और सह फ्राई कर तूत कि तमिक अफादियत तमिक न्यूट्रिशन तथ मज कैल्शियम बाकी चीज तम सारी जाय गान अमि तलने स अत चीज थो ख्याल खास कर अजक ईद पे कर अत पे जबरदस्त अमल कि तूत ज्यादा मसाल जात इस्तेमाल कर तूत ज्यादा फ्राई कर ज्यादा कहें ज्यादा तील इस्तेमाल कर अत थो ख्याल
3: यह قربان کی ماز دِن امس قربان

0: जगजीत सिंह को आपने सुना और आप समाप्त कर रहे हैं पयाम सुबह आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव 268.81 मीटर यानी 1116 किलोहर्ट्ज और FM 103.5 MHz पर।
1: जी समीन, आप इस वक्त जुड़े हैं पयाम सुबह की लाइव नशरियात के साथ और आपको याद दिलाना चाहेंगे आज जो 10:30 बजे हमारे साथ मेहमान जुड़ने वाला है, जिनके साथ हमारे साथ ही रशीद साहब बात करने वाले हैं।
0: बिल्कुल, हमारे जो आज के मेहमान हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि सारे सुनने वाले वो बातचीत सुनेंगे। आप हैं डॉक्टर अब्दुल हफीज शाह मसूदी साहब, जो इस वक्त हैं सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। आपके साथ हम बात करेंगे नौजवान, सोशल मीडिया और बदलते अकदार के मंजरनामे पर।
1: बिल्कुल, क्योंकि रशीद साहब, ये जो आजकल जो सोशल मीडिया की हम बात करते हैं, बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है ये, इस पर बात होनी चाहिए। और ऊपर से जो एक्सपर्ट इस पर बात करने वाले हैं, वो भी एक अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारी यूथ तक पहुंचाएंगे, ताकि वो इसके असरात भी उन तक पहुंचा सकते हैं कि कितने फ़ायदे आपको है सोशल मीडिया से, और एट द सेम टाइम अगर आपको इसकी लत लग जाए तो नुकसानात भी आपको हो सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: ये बिल्कुल बेहतरीन तरीके से वो खूब हमारे यूथ को समझा सकते
0: हैं। यानी हम सुनने वालों को ये बता दें कि सुनना ना भूलें 10:30 बजे
1: लाइव इंटरैक्टिव शो,
0: लाइव इंटरैक्टिव प्रोग्राम।
1: जी तो निजामी साहब, अभी वक्त हो चला है कश्मीरी खबरों का, बिल्कुल 9:20 हो रहे हैं।
0: और ये भी बता दें कि कश्मीरी खबरों के बाद आप उर्दू में भी खबरें सुन सकते हैं।
1: जी, उसके खबरों के उस पार एक बार फिर उनके साथ हम बातचीत जारी रखेंगे अपनी।

0: अजम के साथ मुल्क की सरहदों की हिफाजत करता है। इस मौके पर गुजरात के वजीर आला भूपिंदर पटेल, नायब वजीर आला हर्ष संघवी, मरकजी दाखिला सेक्रेटरी आईबी के डायरेक्टर, बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल और कई दीगर अफसरान भी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर को मुनशियात की बिद्दत से छुटकारा दिलाने के लिए नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत सरगर्मियां शिद्दत से जारी हैं और मुनशियात के बुनियादी ढांचे को ख़त्म करने नीज इस धंधे में मुलविस लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में कोई भी दकीका फरोगुजाश नहीं किया जा रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ज़ाती तौर पर इन सरगर्मियों की निगरानी कर रहे हैं और मुख्तलिफ अजला में पदयात्राओं और बेदारी प्रोग्रामों की क़्यादत करते हैं। इसी सिलसिले की एक कड़ी के तहत लेफ्टिनेंट गवर्नर युकुम जून को कुलगाम में एक पदयात्रा की क़्यादत कर रहे हैं। हमारे कुलगाम के नुमाइंदे ने खबर दी है कि पदयात्रा के लिए इंतजामिया की तरफ से तमाम इंतजाम मुकम्मल किए गए हैं। वाजह रहे कि मनोज सिन्हा ने पिछले महीने की 11 तारीख को जम्मू से नशा मुक्त अभियान की शुरुआत करके ड्रग्स स्मगलरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का अंदिया दिया था।
1: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। एनडीपीएस एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारम्भ किया जाएगा।
0: लोक भवन श्रीनगर में कल मुतदी शख्सियात और वफूद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात हुई। सीनियर कांग्रेस लीडर्स सुरेंद्र सिंह चन्नी ने एलजी के साथ मुलाकात करके त्राल इलाके की तरक्की और नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा करने से मुतालिक मामलात उनकी नोटिस में लाए। नबार्ड के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर गोवर्धन एस रावत ने भी एलजी से मुलाकात हुए। दरियासा कश्मीर रोड सेफ्टी फाउंडेशन के एक वफद ने इसके चेयरमैन नासिर अली खान की क्यादत में लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात की। एसकेआईसीसी श्रीनगर में आज और कल कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल का इनेकाद किया जा रहा है। इस फेस्टिवल की अहमियत के बारे में कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल की असिस्टेंट डायरेक्टर नायरा मंजूर ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
2: ये एक कल्चरल और एक इंटेलेक्चुअल फेस्टिवल है। ये हमारा तीसरा एडिशन है। इस बार का जो हमारा इवेंट है ये एक मल्टी स्टेज्ड इवेंट होगा। सो वील हैव मेन स्टेज वेयर वील हैव पैनल डिस्कशंस एंड वील हैव परफॉर्मेंसेस एटसेट्रा। वील आल्सो हैव अ सेकंड स्टेज व्हिच इज ओपन फॉर पीपल सो दैट वी कैन हैव अ वाइडर पार्टिसिपेशन। हमारे फेस्टिवल में आपको पैनल डिस्कशंस मिलेंगे, आपको बुक लॉन्चेस मिलेंगे, आपको म्यूजिक कॉम्पिटिशंस, कैरियोके, आर्ट एग्जिबिशंस, ये सारी चीजें जो भी आपको एक लिटरेचर फेस्टिवल में देखने मिलेंगी।
0: वाजह रहे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी आज सुबह 10:30 बजे शुरू होने वाले इस फेस्टिवल में शिरकत करेंगे। भारत में स्विट्जरलैंड की सफीर मोहतरमा माया तिसाफी ने कल श्रीनगर में वजीर आला उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की। दोनों शख्सियात ने देर पर सियाहत, बागबानी और दीगर मुंसलिक सेक्टरों समेत बाहमी दिलचस्पी के कई मामलों पर तफसीली तबादला ख्याल किया। महकमा आला तालीम ने सरकारी डिग्री कॉलेजों में यूजी दाखिलों के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त फार्म जमा करने और कॉलेज तरजीहात अपडेट करने की आखिरी तारीख में तौसी कर दी है। महकमा आला तालीम के मुताबिक उम्मीदवार अब आज शाम 5 बजे तक दाखिला पोर्टल jkadmissions.in पर अपनी दरख्वास्त जमा या अपडेट कर सकते हैं। इस हवाले से डायरेक्टर कॉलेजेस प्रोफेसर शेख एजाज बशीर ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
3: जो लास्ट डेट था सबमिशन ऑफ फॉर्म वो 27/5 बजे तक था, अभी हमने उसको एक्सटेंड कर दिया है। हमारे पास सिविल सोसाइटी और स्टूडेंट्स की तरफ से बहुत रिप्रेजेंटेशन आई थी तो हमने उसको एक्सटेंड कर दिया है। अब 30/5 बजे तक लिंक खुली रहेगी। हमने जो उनका टेंटेटिव मेरिट लिस्ट भी निकाल दिया है तो उसको भी देखकर वो अपनी चॉइसेस बढ़ा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं कॉलेज वाइज और प्रोग्राम वाइज। तो ये प्रोसेस सारा अभी 30 तारीख तक स्टूडेंट कर सकता है। तो 5 बजे लिंक बंद हो जाएगी, फिर बाकी जो शेड्यूल है वो उसी शेड्यूल के हिसाब से लिस्ट निकलेगा और फिर राउंड 2 हो जाएगा और स्पॉट राउंड हो जाएगा।
0: नए वजीर आला सुरेंद्र चौधरी ने कल नौशहरा इलाके का दौरा करके वहां तरक्याती कामों तिबी निगहदाश की सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने मुतलका हुकाम को हिदायत दी कि वह तरक्याती कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के साथ साथ लोगों को आला मयार की तिबी सहूलियात फराहम करें। और अब दर्ज हरारत, श्रीनगर में रात का कम से कम दर्ज हरारत 11.6 डिग्री जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्ज हरारत 30 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन दिन में 12:30 पर उर्दू में नष्ट होगा। खुदा हाफिज।
4: रीजनल न्यूज यूनिट आकाशवाणी श्रीनगर की पेशकश रेडियो न्यूज रीड, हफ्ते रफ्ता की खास और अहम खबरों के खुलासे पर मबनी प्रोग्राम रेडियो न्यूज रीड।

0: न्यूज रील का ताजा शुमारा लेकर मैं बसारत कुल। हमारे आज के शुमारे में क्वाड मुल्कों के वज़राए खारजा का इजलास नई दिल्ली में इख्तिताम पज़ीर। श्रीनगर में एनसीसी के ज़ारे अहतमाम एक खसूसी कौमी यकजहती कैंप मुनाकिद। जम्मू कश्मीर हुकूमत यूटी के गोना को सकाफती और तामीरी विरसे को तहफ्फुज़ देने की वादा बंद। वज़ीर आला और मरकजी पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से श्रीनगर में सिविल सर्विस 2026 का इम्तिहान मुनाकिद। अब पेश है मौसुआत की तफसील। क्वाड मुल्कों के वज़राए खारजा की मीटिंग आज नई दिल्ली में खत्म हो गई। वज़ीर खारजा डॉक्टर एस जय शंकर ने वज़राए खारजा की मीटिंग की सदारत की, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के वज़राए खारजा ने शिरकत की। एक मुश्तरक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डॉक्टर जय शंकर ने क्वाड मुल्कों के माबेन इश्तराक को मजीद मुस्तकम बनाने पर जोर दिया। डॉक्टर जय शंकर ने इस बात को उजागर किया कि जमहूरी मुल्क होने के नाते क्वाड ममालिक ने दहशत गर्दी के मुश्तरक खतरे से निमटने पर भी अपनी तवज्जो मरकूज की है।
1: As democratic nations, we also devoted attention to countering the common threat of terrorism. There must be zero tolerance for terrorism, and nations subject to terrorist attacks have the right to defend themselves. A free and open Indo-Pacific has many dimensions and facets. Our meeting today took stock of the progress in many of them while encouraging exploration in others. In the coming days, whether it is economic activity, energy trade or maritime commerce, the Indo-Pacific will become even more important to the world.
0: लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि भारत अपने नौजवानों के लिए नहायत पुर उम्मीद है और उसे एतमाद है कि हमारी नई नस्ल इस मुल्क को नई बुलंदियों तक परवाज करवाएगी। श्रीनगर में एनसीसी के ज़ेर एहतमाम खसूसी कौमी यकजहती कैंप में उन्होंने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से आए एनसीसी कैडेट्स के साथ बातचीत की।
2: आज भारत अपने युवाओं को आशा और विश्वास से देख रहा है कि आगे बढ़ती हुई ये पीढ़ी हमारे राष्ट्र को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में सक्षम बनाएगी। कैंप में हिस्सा ले रहे सभी कैडेट्स इतिहास के महज दर्शक नहीं है बल्कि इतिहास के निर्माता भी। देश के हर कोने से आए युवा चेहरे, जिनकी भाषाएं अलग हैं, जिनकी परंपराएं भिन्न हैं, जिनकी जीवन यात्राएं अलग अलग परिवेशों में पली हैं, वो मुझे भिन्न नहीं बल्कि एक रूपता में दिखाई पड़ रहे थे। और इसलिए मैं मानता हूँ भारत जैसे विशाल और महान देश के लिए विविधता ये कोई चुनौती नहीं है बल्कि यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है।
0: वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मौजूदा हुकूमत जम्मू कश्मीर के गोनागो सकाफती और तामीरी विरसे को तहफ्फुज़ देने के साथ साथ लोगों के मसाइल को हल करने की वादाबंद है। इन बातों का इजहार वज़ीर आला ने श्रीनगर में राबिता दफ्तर पर कई वफूद और अहम शख्सियात के साथ मुलाकात के दौरान किया। इसी दौरान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने गुज़श्ता दिनों 53 उम्मीदवारों को SRO 43 और रिहेबिलिटेशन असिस्टेंट स्कीम के तहत तकर्रुरनामे तकसीम किए। वज़ीर आला ने उम्मीद जाहिर की तैनाती के बाद ये अपनी खिदमतंदी और ईमानदारी से अंजाम देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव फहरिस्तों पर खुसूसी नजर सानी की। इंतखाबी कमीशन की कार्रवाई को कानूनी एतबार से जायज करार दिया है और ये भी कहा है कि आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात कराने के लिए आईन में इस तरह की नजर सानी की गुंजाइश रखी गई है। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने सेटलमेंट कमिश्नर को हिदायत दी है कि वो जम्मू कश्मीर में जमीन के रिकॉर्ड की जदीद कार्य और इसके डिजिटाइजेशन का काम वक्त मुकर्रर के अंदर मुकम्मल कराने के लिए तमाम अजला में फील्ड अमले के लिए सलाहियत साजी के प्रोग्रामों का एहतमाम करें। वो इस सिलसिले में मुतल्लिका महकमे की तरफ से किए गए अब तक के काम की पेशरफ्त का जायजा ले रहे थे। मरकजी पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से गुज़श्ता हफ्ते सिविल सर्विस 2026 के सिलसिले में श्रीनगर में सूबाई इंतजामिया कश्मीर की निगरानी में 9 जिली इम्तिहानी मराकज पर इम्तिहान का अमल कामयाबी के साथ मुनाकिद किया गया। इस सिलसिले में सलामती समेत दीगर तरह के सभी माकूल इंतजाम किए गए थे। सभी जिली इम्तिहानी मराकज में उम्मीदवारों की हाजिरी चेहरे की शनाख्त की बुनियाद पर की गई, जो 100% कामयाब रही। कुल मिला के 2001 उम्मीदवार इम्तिहान में शामिल हुए, जिनमें 27 उम्मीदवार जिस्मानी तौर से खास उम्मीदवारों के लिए तमाम जरूरी सहूलियात से लैस एक मखसूस मरकज कायम किया गया था। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने लोक भवन श्रीनगर में एक आला सतह की मीटिंग के दौरान नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान से मुतल पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस और यूटी इंतजामिया पर जोर दिया कि वह नशे की बिद्दत का कलागम करने के लिए मुहिम में तेजी लाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर का पैगाम,
3: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार्ड आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज।

0: और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
1: दरियासना जिला बांडीपुरा में भी मुनशियात मुखालिफ पद यात्रा निकाली गई, जिसको लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि नौजवान कौम की तामीर में एक अहम रोल अदा करते हैं और उन्हें तामीरी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। इस मौके पर LG ने पद यात्रा के शुरका को मुनशियात के खिलाफ अपनी जंग जारी रखने का अहद दिलाया। वज़ीर तालीम सकीना इतू ने कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर में गैर मारूफ सियाहती मकामात को सियाहत के नक्शे पर लाने के लिए वादाबंद है। जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिले में पांचन पत्री के मकाम पर सियाहती सलाहियत साजी कैंप का इफ्ताह करने और ऑल टेरेन रैली को रवाना करने के बाद उन्होंने कहा कि नए सियाहती मकामात को मंजर आम पर लाने से ज्यादा सयाह जम्मू कश्मीर की सैर पर आएंगे। श्रीनगर में आज और कल कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल का इनेकाद किया जा रहा है। इस फेस्टिवल की अहमियत के बारे में कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल की असिस्टेंट डायरेक्टर नायरा मंजूर ने न्यूज रील के साथ बात करते हुए कहा,
2: कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल जो है ये एक कल्चरल और एक इंटेलेक्चुअल फेस्टिवल है जो कि श्रीनगर में मुनाकद किया जाता है। ये हमारा तीसरा एडिशन है। कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल 30th और 31st May को SKICC में ऑर्गेनाइज होगा। इस बार का जो हमारा इवेंट है ये एक मल्टी स्टेज्ड इवेंट होगा। We'll have a main stage where we'll have panel discussions and we'll have performances, etc. We'll also have a second stage which is open for people so that we can have a wider participation. Hamare festival mein aapko panel discussions milenge, aapko book launches milenge, aapko music competitions, karaoke, art exhibitions. Ye sari cheezein jo bhi aapko ek literature festival mein dekhne milengi.
1: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल 31 तारीख को अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर आवाम से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। आकाशवाणी पर नशर होने वाले इस माहाना प्रोग्राम की ये 134वीं किस्त होगी। महकमा आला तालीम ने सरकारी डिग्री कॉलेजों में UG दाखिलों के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त फॉर्म जमा करने और कॉलेज तरजीहात अपडेट करने की आखिरी तारीख में तौसी कर दी है। महकमा आला तालीम के मुताबिक उम्मीदवार अब आज 30 मई शाम 5 बजे तक दाखिला पोर्टल jkadmissions.in पर अपनी दरख्वास्त जमा या अपडेट कर सकते हैं। इस हवाले से डायरेक्टर कॉलेज प्रोफेसर शेख एजाज बशीर ने न्यूज रील के साथ बात करते हुए कहा,
3: हमारा जो लास्ट डेट था सबमिशन ऑफ फॉर्म वो 27 बजे तक था, अभी हमने उसको एक्सटेंड कर दिया है। हमारे पास सिविल सोसाइटी और स्टूडेंट्स की तरफ से बहुत रिप्रेजेंटेशन आई थी तो हमने उसको एक्सटेंड कर दिया है। अब 30 तारीख 5 बजे तक लिंक खुली रहेगी और मेरी गुजारिश है कि स्टूडेंट्स के साथ कि वो अपनी चॉइसेस चेंज कर सकते हैं। अभी भी हमने जो उनका टेंटेटिव मेरिट लिस्ट भी निकाल दिया है तो उसको भी देखकर वो अपनी चॉइसेस बढ़ा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं कॉलेज वाइज और प्रोग्राम वाइज। तो ये प्रोसेस सारा अभी 30 तारीख तक स्टूडेंट कर सकता है। तो 5 बजे लिंक बंद हो जाएगी तो ये फिर बाकी जो शेड्यूल है वो उसी शेड्यूल के हिसाब से लिस्ट निकलेगा और फिर राउंड 2 हो जाएगा और स्पॉट राउंड हो जाएगा।
1: शोबे तालीम समाज में एक मुस्बत बदलाव लाने में कलीदी रोल अदा करता है। तहम वक्त की जरूरत है कि शोबे तालीम को जदीदियत से हमकिनार कराने के साथ साथ इसमें जदीद तकाजों के मुताबिक बदलाव लाया जाए। इस ताल्लुक से दुबई में मुकीम एक बैन अक्वामी शहरत याफ्ता तालीम दान और सस्टेनेबिलिटी की पैरोकार डॉक्टर हलीमा सादिया ने न्यूज़ील के साथ बात करते हुए कहा,
4: जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो इंसान के इंटेलिजेंस का मुकाबला नहीं कर सकता क्योंकि इंसान की इंटेलिजेंस रियल है और वो आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमें एज ए टूल लेना है लेकिन अपना दिमाग उसमें लगाना है। अब आजकल क्या हो रहा है कि जो हमारे स्कूल के तलबा तालबात हैं उन पे बहुत बुरा असर पड़ा इससे कि वो अपना दिमाग लगाते नहीं है। क्वेश्चन टाइप किया, उससे आंसर ले लिया, उसको कॉपी कर लिया। कुछ क्रिएटिव अगर टीचर ने करने को दिया है तो वो भी वहां से लिया, इससे कॉपी कर लिया, वहां से राइटअप कॉपी कर लिया। तो इससे क्रिएटिविटी पे बहुत फर्क पड़ा, उनके सोचने की सलाहियत कम हो रही है। सोचने की सलाहियत जो हमारे स्क्रॉलिंग ऑफ रील्स है उससे भी बहुत हो रही है।
1: जम्मू कश्मीर बैंक UT के मुख्तलिफ सेक्टरों को फरोख देने और लोगों को आला मयार की बैंकिंग सहूलियात दस्तियाब कराने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहा है। बैंक की तरफ से इस साल एक बड़ी रिक्रूटमेंट शुरू की जा रही है। इस ताल्लुक से जम्मू कश्मीर बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO अमिताभ चटर्जी ने न्यूज रील के साथ बात करते हुए कहा,
5: बैंक अगर प्रॉफिटेबल नहीं होगा तो उससे फिर बैंक सस्टेन करना या सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। अभी 2021 के बाद से कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है इस बैंक में और उसका मेन रीजन ये था कि जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो था ना हमारे बैंक का वो बहुत हाई था। मतलब जितना इनकम हमारा था उससे उसके मुकाबले में कॉस्ट काफी हाई था और कॉस्ट में मेजर 75-80% जो था वो स्टाफ कॉस्ट था। तो इस चीज को जब तक हम कंट्रोल नहीं कर पाए, कॉस्ट कम करके नहीं इनकम बढ़ा के, तो हमने कोशिश की कि इनकम बढ़ाए। लास्ट पिछले 5 साल में हमने इनकम काफी बढ़ाया तो अब हम इस पोजीशन में हैं। मतलब अपने माध्यम से ये बता सकते हैं आवाम को कि इस साल एक रिक्रूटमेंट ड्राइव होगा और अच्छा खासा होगा क्लर्क में भी और ऑफिसर्स में भी।
1: जम्मू कश्मीर में आजकल

0: जबरदस्त गर्मी महसूस की जा रही है, खासकर जम्मू खिते के बेशतर अजला में गर्मी की शिद्दत में रोज अफजो इजाफा होता जा रहा है। बढ़ती गर्मी के पेश नजर लोगों को कई एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की जरूरत है ताकि वो इसके मुजर असरात से बच सके। इस सिलसिले में जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर शाहिद हुसैन ने न्यूज रील से बात करते हुए कहा,
1: दिन ब दिन गर्मी जो है ये शिद्दत इसकी बढ़ती जा रही है। अब उससे क्या हो रहा है कि इसमें कई लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, जैसे बुजुर्ग लोग होंगे, हमारे छोटे बच्चे हैं, प्रेग्नेंट लेडीज होंगी, तो इनको थोड़ा सा इसमें बचाव करने की हिदायत हमारा जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वो हम इशू करते रहते हैं। तो उसके लिए हमारी यही सलाह है आम पब्लिक को कि जितना हो सके दिन के टाइम, स्पेशली एक जो हीट वेव हम देखते हैं ज्यादा जो शिद्दत होती है वो कोई 12 से लेकर 3 बजे तक का ज्यादा एक पीरियड होता है, जितना हो सके इफ पॉसिबल अवॉइड करें बाहर निकलने के लिए। कुछ ऐसे भी प्रोफेशनल होंगे जो बाहर काम करना पड़ रहे हैं, ओपन में भी काम कर रहे हैं, तो उनके लिए यही है कि आप अपने साथ पानी का इंतजाम रखें, और कोई फ्रूट, पपीता है, वाटरमेलन है, कुकम्बर है, जिसमें थोड़ा सा लिक्विड्स वगैरह हमें मिल जाते हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। दूसरा, जो उनके कपड़े पहनने का जो होगा वो तो लाइट कलर के कपड़े पहने, लूज कॉटन के कपड़े पहनने से उससे भी आराम मिलता है, थोड़ी सी ना फायदा हो जाता है। तो कहीं हो सके तो अम्ब्रेला साथ रखें, सो दैट ये जो गर्मी दिन ब दिन अब और बढ़ने वाली है इससे हम बचाव कर सकें।
0: अब रेल से मुतालिक खबर। भारतीय रेलवेज एक मरतबा फिर जम्मू कश्मीर के मेवा उगाने वालों और ताजरों के लिए ट्रांसपोर्टेशन का एक तेज और काबिल एतबार जरिया साबित हुआ है, और रवां चरी सीजन के दौरान अब तक 45 टन ताजा चरी रेल के जरिए से मुल्क के बड़े बाजारों तक पहुंचाई गई है। जम्मू डिवीजन के सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर उचित सिंघल ने कहा है कि रेलवे चरी को मौसर तरीके पर मंडियों तक पहुँचाने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। इसी दौरान रेलवे डिवीजन जम्मू ने सफर करने वालों की सहूलत के लिए जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर अलमयार का एक आइसक्रीम पार्लर खोलने का फैसला किया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने गुजशत दिनों राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में मुनाकिद हुई एक पुरवकार तकरीब पर इस साल के पद्म अवार्ड अता किए। पद्म एजाजा 3 जुमरों में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पर मुश्तमिल हैं। काबिले जिक्र है कि इस साल पद्मश्री पाने वालों में जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले मारूफ माहिर तालीम प्रोफेसर शफी शौक भी शामिल हैं। समीन, इसके साथ ही न्यूज रील का आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। निगरानी आला तारिक राहतर, तरतीब तहजीब इशफाक शाह और कौशिकी कश्यप, मुदीर शबीरुजमा, रिकॉर्डिंग और एडिटिंग आसिफ बशीर, पेशकश रीजनल न्यूज यूनिट आकाशवाणी श्रीनगर। हमें इजाजत दें, खुदा हाफिज।
2: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच, आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
3: आकाशवाणी श्रीनगर आप तक पहुंच रहा है एक नए रंग, नए आहंग और नई लय के साथ।
4: पल पल जाऊं मैं तो रंग रजवा।
5: जिंदगी से जुड़े हर एक शोबे की मुफीद जानकारी।
6: सब्र रूषित सुलुम।
5: सुनते रहिए हमारी नशरियात
3: दुनिया के किसी भी कोने में, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और वेव्स OTT के जरिए।
7: سمین تہ ٹون کورمت آکاشوانی ہند سری نگر اسٹیشن تو ونکس تھی لائیو مارننگ شو بوزان پیام صبح تہند میزبان رشید نظامی تو بس شبیر خان نظامی صاحب مے باسان یہ ونکس ونکس آو وقت دون دہ تو یہ وقت آسان قشر موسیقی بوزن کی پت کال پہ یہ وقت رودمت بوزن یت من اکثر بوزان قشر موسیقی تہد کیا خیال بوز بہت جارا
8: بہت جارا بوزو مگر گڈنت کر بہ عرض یتنس کرو اکس بزرگس متعلق تھوڑا بہت کت حالانکہ بزرگن تو شاعرین ہن کت یتنس کمی پہن کران تاز 10 بجے پروگرام صوفی سدا یت من تفصیل کسی بزرگس کسی صوفی شاعرس یا شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی کت سپدان یا لائف ہن کت سپدان وی یتنس تنسی بزرگ سن کت کرن تیزا مناسب کی مگر شبیر صاحب ات ون بہ یہ اوتر یعنی 14 مئی اس زٕتووُہ سَتووُہ

0: कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तेहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
1: सूफी सदा ये प्रोग्राम चु प्रत दोह आकाशवाणी श्रीनगर पेठ सुबह 10 बजे पेठ 10:30 बजे ताम नश शब्दान वली बोजो प्रोग्राम सूफी सदा।
2: मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियाँ बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत पायेदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स।
3: अकी हदीस मौजिब ये कायनात वुनिथन पेनय खुदाय बरतर बुजुर्ग उस अकिस पोशीद खजान के सूरत मंज तथ पे अत पे कह वन मुश्किल सिर्फ ये जो सो पोशीद खजान जात अहद तसवुर फरमावान बहुस पहचान युन बस सो खलकत पद करा शेख महीुद्दीन इबन अरबी रहमतुल्लाहि अलैह अत अजीम वाक़स मजीद वजाहत करान फरमावान कायनात इब्तिदा हकीमान गौर तलब तो हल तलब तिकाज़ अमुक बुनियादी शर्त तखलीक बगस पछान युन शेख महीुद्दीन इबन अरबी ब्रोह कुन फरमावान तखलीक कायनात गुक कदम जात अहद सुंद पन्नस अजली दर्जस यानी जात अहदस मज कायम तो दायम रूजित दर्जे वहदतस कुन नजूल फरमावन इस्तिलाहे सूफियस मज अथ दर्जे हकीकतस हकीकत मोहम्मदिया वनान यानि सुनूर उस कुन यादाश हुंद जवहर असल यथ मुतलिक इरशाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम गुडनेत आव म्यों नूर पद कर अत दर्जस दर्जे वहदत वनान अमि पत सपुद नजूल ब्याक दर्ज कायम यथ वाहदियत वनान यह सु दर्ज यथ मज आम जू जचन हुंद अख गैर मदी तो गैर जिसमी हयात इब्तदा सपद अरूजिक यम दर्ज अहद वहदत तो वाहदियत अम पत आलम अरवाह वजूदस यह आलम अरवाह अरूज कन त्रेन त्रेन दर्जन तो नजूल कन दर्जन दरमियान आलम बरजख नजूलिक ज दर्ज आलम मिसाल तो आलम अजसाम आलम अजसाम अम सफरुक या नजूल आखिरी दर्ज सफर अथ दर्जस यानी आलम अजसाम मज अंदस वातान तो अमी दर्ज पे वापस तुरू सपदान अम वत हंद मुसाफिर यानी सालिकान तरीकत पन्नस खाकी वजूदस मज इन सारे दर्जन हज तहकीक करान तो आरिफ बिल्ला खताब प्रावान फरमुदाति बुजुर्गान इन सारे दर्जन मज जाति खुदावन बिला शिरकत गैरे जलवा अफरोज अक्सर सूफिया इकरामन हुंद नजरी ये जे जमीनस आसमानस मंज सिर्फ अख जात वाहिद मौजूद कसरत तैदाद यह महज अख फरेब उस इंसान जिसमन हंदिस कसरतस मंज हेने ये तो अत कसरतस मंज कर दीदार वहदत सो नाकस नजर इन फरमावन कसरत एन वहदत तो वहदत एन कसरत वजूद मुतलक अख वजूद सुच हकीकी वजूद तो अत मज कसरत बमिसले सदरस मज वथन वाजन लहर इन लहरन छन बजाय खुद कह हैसियत हासिल सिर्फ ये जी ये लहर दरअसल अख इशार अख चैनवन यमि कथि हज जगुस पछान युन यम तूफिया इकराम दुनिया आय अद सुबाइजीद बुस्तामी या जुनैद बगदादी मौलाना रूम या फरीदुद्दीन अत्तार इन सारे हंद मुश्तरक मसलक युह युद नजरी इंसानस नफ्स तो रूह नफ्स लमान दुनिया कुन तो रूह अरूजस कुन उस शख्स नफसानियात शिकार गि सह गफलत मज हवान तो असल मकसद निश दूरान तो उस इंसान नफसानी ख्वाहिशन पामाल कर सह आलम अरूजस कुन सफर शुरू करान सानियत कशीर मज अमे नजरिए बहल पाय शख्सियत वसमत इन मज नाव शाह गफूर शाह गफूर सब कशर जबान हंदो तमो नामवर शायरों मज उस पन्न शायरी सब जहाँ त मशरा ये बदकस्मती ये जे युद हाल अहवाल

0: घर का एसी हो या गीजर, वोल्टेज का हीरो सिर्फ एक BS वॉइस स्टेबलाइजर्स, पावर फ्लक्चुएशन सॉर्टेड, लॉन्ग लाइफ फॉर योर अप्लायंसेस गारंटीड। BS वॉइस, दैट्स बेस्ट सर्विस। कॉल नाउ 9419001960।
1: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर, हर गली, हर कूचे तक पहुँचे।

0: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
1: सभी तो ऐसे प्रोग्राम बोजान सूफी सदा। ये प्रोग्राम छु प्रत दोह आकाशवाणी श्रीनगर पेठ सुबह 10 बजे पेठ 10:30 बजे ताम नश्र सब्दा।
2: समय मोहतरम तो ऐसे सूफी तेरी शिवाचारण पेठ मबनी प्रोग्राम बोजान सूफी सदा। तहरीर गुलाम नबी शाकिर। इश आकाशवाणी श्रीनगर सान्य दुमाला नुकर हना इंतजार। ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मीडियम वेव 268.1 मीटर यानी 1116 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय पयामसु प्रोग्राम जारी है। अगली सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं रशीद निजामी साहब के साथ।
3: शुक्रिया सुहेला, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और अपने तमाम सुनने वालों को बता दें कि अब

0: शब्बीर खान रुखसत हो गए हैं ट्रांसमिशन से और सुहेला उनकी जगह आई है। और अब ये वक्त है हमें आज के मेहमान के साथ रूबरू होने का। आज के मेहमान के बारे में बता दें कि आज के जो हमारे मेहमान हैं, आप एक मारूफ मुंतजिम, दानिश्वर, शायर और समाजी मुबसर हैं जिन्होंने इंतज़ामी खिदमात के साथ साथ समाजी और तहजीबी मौजूदात पर भी गहरा काम किया है। और इनके बारे में यह है कि इन्होंने पहले PhD किया सेंट्रल एशियन स्टडीज़ में, उसके बाद KAS किया, ये 1999 बैच के KAS हैं। बहुत सारे अहदों पे काम किया और काबिल रश काम किया। आप हैं डॉक्टर अब्दुल हफीज शाह मसूदी। डॉक्टर साहब खैर मकदम, वेलकम।
1: बहुत शुक्रिया अपने स्टूडियो में मधु करने का। रेडियो कश्मीर से एक तवील वाबस्तगी रही है और मेरे लिए सआदत है कि एक मरतबा फिर जो है आपके स्टूडियो में हाजिर हुआ हूँ।
0: और हमारी खुशकिस्मती कि आप तशरीफ लाए और हम चाहेंगे कि बार बार आप हमारे प्रोग्रामों में आएँ, क्योंकि आपका जो तजुर्बा है, इतने सालों पर जो ये तजुर्बा आपका फैला हुआ है, इससे हम कुछ हासिल करने की कोशिश करें। आज का जो मौजू है बड़ा हसास है, उस मौजू की तरफ आते हैं, लेकिन मैं अपने तमाम सुनने वालों को ये बता दूँ कि डॉक्टर अब्दुल हफीज शाह मसूदी साहब की आवाज़ माशाल्लाह बहुत है, आप खुशलहन हैं। तो मैं चाहूँगा कि पहले आप अपनी आवाज़ में, खुश लहन आवाज में एक नात या शेर पढ़िए।
1: खुश लहनी का दावा तो खैर मेरा नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि अल्लाह तबारक व ताला ने तमाम इंसानों को जो गुनागुन नियामतें अता की हैं, उनमें एक ज़बान भी है और ज़बान से ही ताल्लुक़ है फिर लहन का भी। मैं बचपन से ही जो है नात गोई का बड़ा शौकीन रहा हूँ और मैं नात लिखता भी रहा हूँ, पढ़ता भी रहा हूँ। स्कूल में मैंने बहसीत मुदर्रस जो है प्रेयर पढ़ाई है और नात पढ़ाई है, लिखाई है, और ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जारी है। मैं मुतअद्दिद मकामात पे जहाँ पे भी अदबी तकारीब हुआ करती हैं वहाँ पे मुझे नात पढ़ने का मौका मिलता है, और आज भी इस एतबार से जो आपने हुक्म किया है मैं उसकी तामील करूँगा। मुतअद्दिद नातें मुझे याद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद लिखी भी हैं और मेरा इंतखाब भी जो नात के हवाले से वो बड़ा मखसूस है। ख़ास तौर पे सलाम जो है जो अबुल असर हफीज जलंदरी ने लिखा है और इसी बहर में फिर माहिरुल कादरी ने भी लिखा है और इसी बहर में जगन्नाथ आज़ाद ने भी लिखा है और इसी बहर में एक और खातून नात गो शायरा हैं मुहतरमा सईदा सरदारा बेगम, उनके दो अशार जो है वो भी इस नात के आखिर में मैं जो है वो ज़रूर पेश करूँगा। तो ये सलाम है अब्बुल हफ़ज़ अब्बुल असर हफीज जलंदरी का।
0: जी सुभान अल्लाह।
1: सलाम ए आमना के लाल ए महबूब सुबहानी, सलाम ए फख्र मौजूदा तो फख्र

0: सरसी है नगर तुम ही दतूलानी।
1: सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इस सलाम के तुफैल हमारे गुनाहों को भी बख्श दे। और आते हैं आज के टॉपिक की जानिब। और यहाँ पर मैं बता दूं कि आपने कई अहदों पे काम किया है। इस वक्त आप स्पेशल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के। और आज जो हमने हफीज साहब टॉपिक चुना है वो है नौजवान नस्ल, सोशल मीडिया और अकदार का बदलता मंजरनामा, यानी द यंगर जनरेशन, सोशल मीडिया एंड चेंजिंग लैंडस्केप ऑफ वैल्यूज़। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब कि सोशल मीडिया ने नौजवान नस्ल की सोच और तर्ज ज़िंदगी को आपकी नज़र में किस हद तक मुतासिर किया है?
0: ज़ाहिर सी बात है कि ये बड़ा हमगीर सवाल है और इसका जवाब भी एक हमगीर और मुफस्सल जवाब का मुतकाजी है, लेकिन

0: जो वक्त की किल्लत है उसको जहन में लेते हुए इस पे गुफ्तगू करने की कोशिश करूँगा। पहली बात तो ये है कि ये ज़ाहिर है कि सोशल मीडिया एक पूरी जो एक खलीज थी उसको इसने बदल के रख दिया। हमारा माशरा एक रवायती माशरा है जिसमें अकदार जो है वो ज़िंदगी की तमाम शोबों में बुनियादी हैसियत रखते हैं।
1: जी
0: हालांकि सोशल मीडिया मशरकी और मगरबी माशरा दोनों को इसने मुतासर किया और दोनों में इसकी शायद ज़रूरत भी थी। ये वक्त का तकाजा है कि इम्तदादे ज़माना के साथ जो माजी की रवायत है वो बदला करती हैं और उनकी जगह नई जो तकनीक है, नई ऐजादात हैं, नई इख्तरात हैं, जो नई चीज़ें हैं वो सामने आती हैं और ये ज़िंदगी के हर शोबे में आती हैं। लेकिन मशरकी माशरे में और ख़ास तौर हमारे कश्मीरी माशरे में जिस तरह से सोशल मीडिया असरअंदाज हुआ है तो कई जहतों से असरअंदाज हुआ है। एक तो ये है कि साहब बहुत सारे नौजवानों को अपनी जहनी और इल्मी सलाहियतों को मंजर आम पे लाने का मौका मिला, तो इस एतबार से सोशल मीडिया ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोवाइड किया जो शायद रिवायती मीडिया नहीं कर सकता था, प्रिंट मीडिया नहीं कर सकता था। लेकिन जहाँ तक इखलाकी अकदार का ताल्लुक है तो सोशल मीडिया के हवाले से दुनिया भर में, दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जो जो तहकीक हुई है वो मंजरे आम में है, मंजरे आम पे है और वो जो है पब्लिक नॉलेज का हिस्सा है, अवामी मालूमात का हिस्सा है। उसमें दो तीन चीज़ें बड़ी हैं। सबसे
1: जी
0: पहली ये है कि साहब सोशल मीडिया में आप कंटेंट क्रिएट करते वक्त आपके सामने तहकीक के बुनियादी जाबते नहीं होते।
1: सही
0: हम जब पीएचडी करते हैं तो हमें उससे पहले एक पर्चा जो है वो उसका इम्तिहान देना पड़ता है कि साहब तहकीक के ये उसूल है, उसूल तहकीक, तो
1: जी
0: इसमें तमाम चीज़ें इन पे आप खरा उतरिएगा तभी जाके आपकी तहकीक आगे बढ़ेगी। लेकिन सोशल मीडिया की बात ये है कि साहब आपके पास दौरानिया बहुत मुख्तसर है, आप एक तवील रिसर्च भले ही ना करें लेकिन कंटेंट को इधर उधर से लाकर जमा करके और एक बार आप सोशल मीडिया पे आ जाएं, अगर आपकी आवाज़ अच्छी है और आप कंटेंट को अगर यानी यू आर एबल टू पुट टुगेदर तो आप एक कंटेंट क्रिएट करके एक सेंसेशन क्रिएट कर देते हैं, फिर आपकी लाइक्स आ जाते हैं, फिर लोग आपको पसंद करना शुरू कर देते हैं। उसके नतीजे पहली बात तो ये है कि सोशल मीडिया पे पेश किया जाने वाला सारा कंटेंट जो है वो तहकीक शुदा 100% नहीं होता।
1: सही
0: नंबर एक, उसके जराए और उसके माखज़ और मसादिर को बयान करने का वक्त जो है वो कंटेंट क्रिएटर के पास नहीं होता,
1: सही
0: लिहाजा उसने कंटेंट बनाया और उसने पेश कर दिया। अगर उसकी आवाज़ अच्छी है, प्रेजेंटेशन अच्छी है, पेशकश अच्छी है तो साहब उसकी जो है वो हाहाकार होगी, उसकी भल्ले भल्ले हो जाएगी और लोग उसको पसंद करना शुरू कर देंगे। और इस पसंद के नतीजे में जो सबसे बुरी बात यह है कि कंटेंट क्रिएटर के जहन में एक रुझान पैदा हो जाता है कि साहब मैं शायद हर्फे आखिर हूँ, शायद मेरी बात को बहुत पसंद किया जाता है
1: सही
0: और मैं प्रॉपर कंटेंट जो है वो क्रिएट करता हूँ। इस हवाले से साहिब जो हैं, एक बहुत मशहूर शायर गुजरे हैं फारसी के, उसका एक शेर जो है वो समाप्त फरमाइएगा। वो कहते हैं कि साहिब दो चीज़ बेशकनद कद्र शेर रा, साहिब दो चीज़ बेशकनद कद्र शेर रा, तहसीन ना शनासो सुकूते सुखुन शनास। कि साहिब इस दौर में शेर व शायरी की और कलाम की जो कदर व मंजिलत है वो इस वजह से कम हो गई है कि तहसीन ना शनास, कि जो लोग कलाम के मुबादियात से आशना ही नहीं होते, जिन्हें कलाम की अबजद का पता ही नहीं होता, जो तकनीकी ज़रूरतों से जो है वो बहरवर होते ही नहीं हैं, लेकिन या वो प्रेजेंटेशन को पसंद करते हैं या
1: सही
0: कंटेंट में क्रिएट किए गए किसी सेंसेशनल एलिमेंट को जिसमें सनसनीखेजी का उनसर जो नुमाया उसको पसंद करते हैं और फिर दाद देते हैं, ताली बजाते हैं। तो इस दाद व तहसीन के नतीजे में और जो लोग जानने वाले हैं उनकी पुरसरार खामोशी, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिसने इस दौर में, यानी साहिब ने आज से 100 साल पहले ये बात
1: बात
0: कही है
1: कही थी
0: कि
1: बिल्कुल
0: शेर शेर व शायरी की और कलाम की
1: सही सही
0: कदर
1: सही
0: कम
1: सही
0: हो गई है।
1: सही सही
0: बिल्कुल यही चीज़ हमारे सोशल मीडिया में है। एक तरफ तो फायदे हैं,
1: बिल्कुल।
0: नुकसान ये है।
1: और जब हम नौजवानों की बात करते हैं, जिस तरह से आपने कहा कि उसको फिर ये महसूस होने लगता है कि मैंने कोई ख़ास काम किया है, मैं कोई ख़ास काम कर रहा हूँ, लाइक्स आ गए, कमेंट्स आ गए। और जब हम तर्ज़ ज़िंदगी की बात करते हैं नौजवानों की, तो इस हद तक भी मुतासिर किया है कि आपका नौजवान आज 2-2 बजे रात तक, 3-3 बजे रात तक सोता नहीं है।
0: जाहिर सी बात है कि ये एक नशा है जो छा गया है اور اس نے کتابوں کی جگہ لے لی ہے، اس نے والدین کی جگہ لے لی ہے، اس نے آرام اور سکون کی

0: ले ली है वो चीज़ें जो ज़िंदगी की, वो ज़िंदगी का बुनियादी हिस्सा हैं, जो ज़िंदगी का नाकाबिल तस्खीर हिस्सा हैं, नाकाबिल तनसीख हिस्सा हैं, कि ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने दिन को जो है वो कामकाज के लिए बनाया, रात को आराम और सुकून के लिए बनाया है, और एक इंसान को औसतन हर रोज़ 8 से 10 घंटे जो है वो नींद करनी चाहिए,
1: सही
0: ये ज़रूरी है ताकि जिस्म तवाना हो और रिफ़्रेश हो के बाकी काम काज में मशगूल हो। लेकिन एक तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि एक तो ये है कि इंसान जो है ऐसे बज़ाम खुद में मुब्तला हो जाता है कि साहब मुझे इतने लाइक्स आ गए, इतने लोगों ने पसंद किया, अब पसंद करने वाले कौन हैं, उनका
1: जी जी
0: मुबलग
1: जी
0: इल्म क्या है, उनका मियार इल्मी क्या है, इस पर तो कोई जाता नहीं। लेकिन जो जो खालिसतन तबीयत की बात है, तादाद की बात है कि भाई क्वांटिटी क्वालिटी कंटेंट भले ही ना हो, लेकिन अगर इसको लाइक करने वाले जो हैं वो ज़्यादा पसंद कर देते हैं, तो कंटेंट क्रिएटर के जहन में एक बात ये चली जाती है कि साहब मैं वाकई कमाल कर चुका हूँ और अब मेरी कमाल के अब शादियाने बज रहे हैं, बड़ी तारीफ़ व तौसीफ़ हो रही है, अब मज़ीद इसलाह की गुंजाइश कम हो जाती है। हम लोग फॉर्मली तहकीक के मैदान में हर रोज़ नई जस्तजू की मुतलाशी होते हैं और अपने फ़न को, अपनी तकनीक को, अपनी मालूमात में इजाफा करने की तगोदों में होते हैं, कोशिश में होते हैं।
1: जी
0: लेकिन सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर जो होते हैं सोशल मीडिया पे, उनके लिए ये चीज़ ज़रूरी है, उनके लिए एक ही चीज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा कंटेंट क्रिएट किया जाए जिससे लोग ज़्यादा हंसें, ज़्यादा महजूज हों,
1: बिल्कुल सही
0: ज़्यादा उनको तफरी पहुँचे, और क्वालिटी जो है उसके पीछे तो नहीं जाएंगे। लिहाजा कमियत के एतबार से जितनी तादाद बढ़ती जाएगी उतना उनके जहन में ये चीज़ आ जाएगी। और आपका वो सवाल कि साहब सोशल मीडिया ने जो सबसे एक इसका जो नुकसानदेह पहलू है वो ये है कि आदमी की ज़िंदगी को एक लिहाज से पूरी तरह से कंट्रोल कर दिया है,
1: बिल्कुल
0: डिक्टेट कर दिया है। अब ये सोशल मीडिया ड्रिवन लाइफ है कि आपका उठना, आपका जागना, आपका सोना, आपका पढ़ना, आपकी तमाम काम, हालांकि बावर्ची खाने में आप जो काम करेंगे तो मोबाइल पे आपका काम जो है वो लगा हुआ होगा,
1: सही, सही।
0: यानी आप बेयक वक्त किसी एक काम पे कंसंट्रेट नहीं कर सकते हैं, मोबाइल जो है वो आपको ड्राइव कर रहा है, बजाय इसके कि आप मोबाइल का इस्तेमाल करें, मोबाइल या सोशल मीडिया आपका इस्तेमाल कर रहा है।
1: बहुत सारे सवाल और भी हैं और दिलचस्प सवाल आते हैं, सुनने वालों के लिए ये कहूँ कि आप महसूस भी होंगे और आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन आज मिलने वाली है डॉक्टर साहब के थ्रू। डॉक्टर साहब यहाँ पर हम एक कलाम आपके लिए पेश करते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है आप फैज़याब भी होंगे, मसरूर भी होंगे और हमारे सुनने वाले भी इसे पसंद फरमाएंगे।

0: जी दोस्तों, आप प्रोग्राम समाप्त करने पाया हमें सुबह, और इस वक्त हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर अब्दुल हफीज शाह मसूदी साहब, जिन्होंने पीएचडी किया है सेंट्रल रिलेशन स्टडीज़ में, केएस किया है 1999 में, इस वक्त हैं स्पेशल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में। डॉक्टर साहब, आपने 6 किताबें लिखी हैं। इससे पहले कि मैं एक और सवाल आज के टॉपिक के हवाले से करूँ, थोड़ा सा मुख्तसरन अपनी उन 6 किताबों के बारे में बोलिए।
1: 6 किताबें जो हैं वो मेरी, उसमें से 4 जो हैं वो शाया हो चुकी हैं
0: जी,
1: और बाकी 2 ज़ेर तरतीब हैं। मेरी इस साल जो आने वाली पहली किताब थी वो है शारदा टू संसद, ये अंग्रेज़ी में है और ये जम्मू कश्मीर में तमाम जबानों और स्क्रिप्ट का एक लिसानी जायज़ा है, एक बशरियाती जायज़ा है, और इसमें ख़ास तौर पर पहाड़ी जबानों, अदब और सकाफ़त का कोई 3000 साल जो तारीख है
0: जी,
1: उसका इहाता ख़ास तौर पर किया गया है। लेकिन जब आप ज़बान की बात करते हैं तो एक ज़बान से बाकी तमाम ज़बानें जुड़ी हुई होती हैं, ज़बान जो भी है किसी खला में नहीं पनपती, वो ज़ाहिर है कि एक माशरे में, एक समाज में, एक सोसाइटी में पनपती है जहाँ पे बाकी ज़बानें होती हैं, तो ला महला आपको तमाम ज़बानों का एक सर्वे जो है वो करना पड़ता है।
0: सही।
1: इसके बाद यहाँ की, जम्मू कश्मीर की एक मारूफ शख्सियत रही हैं नज़ीर अहमद मसूदी साहब
0: जी।
1: वो 1940 में ही रेंजर भर्ती हो गए थे, और कश्मीर SP कॉलेज से पहला जो बैच था BSc का पास आउट, उसके वो उसका हिस्सा थे, द फर्स्ट BSc ग्रेजुएट फ्रॉम SP कॉलेज
0: जी जी,
1: 1939 में किया था उन्होंने। और फिर वो इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर रहे शुमाली कश्मीर के, फिर उनकी चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट रहे, सेक्रेटरी फॉरेस्ट रहे, फिर वो कल्चरल एक्टिविज्म में आ गए, और ही इज़ द फादर ऑफ द सोइल कंजर्वेशन एंड J&K SFC जो है स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन एक्ट, उनकी वजह से ही जो है लागू हुआ और पास किया गया, और मैनेजिंग डायरेक्टर फर्स्ट SFC के वही थे। तो उनकी हमजद शख्सियत पर मेरी किताब आई है, द वॉरियर विद अ कॉज।
0: ओके।
1: और ये जो तीसरी किताब अभी आप देख रहे हैं, ये है क्रिकेट इन द कॉनिफर्स। मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ और ख़ास तौर पर रूरल एरियाज़ में क्रिकेट को प्रमोट करने के

0: ये मैंने अच्छा खासा काम किया, खासतौर पर क्रिकेट को नशा मुक्त भारत के साथ जोड़ के जब देखा जाए, या नशा मुखालिफ मुहिम मुहिम जो है उसके साथ मिला के जब देखा जाए, तो उस हवाले से मैंने अपने तजर्बात जो हैं, मेरे मुशाहदात जो हैं और
1: किताब में
0: जो मेरे कुछ मशवरे और तजावीज़ हैं, बल्कि मैंने एक पूरी पॉलिसी मुरतब की जिसका नाम मैंने रखा है एस फॉर स्पोर्ट्स जी हाँ, तो यानी स्पोर्ट्स फॉर क्रिकेट और क्रिकेट C4S क्रिकेट फॉर स्पोर्ट्स, क्रिकेट फॉर कंजर्वेशन और S4C स्पोर्ट्स फॉर कंजर्वेशन जो है वो इसके आखिर में है। इसी तरीके से मैं अब जो किताब ज़ेर तरतीब है उसमें मेरे वालिद गिरामी जो हैं मौलाना ज़ाहिर अहमद शाह मसूदी साहब एक जईद आलम दीन थे, एक शोला अभियान मुकर्रर थे और उनकी मुतअद्दिद दीनी सियासी जो हैं दीनी और समाजी खिदमात हैं, इल्मी खिदमात हैं, उनके हवाले से उनकी ज़िंदगी के हवाले से उनकी हयात और खिदमात के ताल्लुक से किताब जो तरतीब है शाहीन का जहां और
1: शाहीन का जहां
0: और इसी तरह शुमाली कश्मीर के बल्कि कश्मीर के एक मारूफ कश्मीरी शायर अली मोहम्मद शहबाज साहब मरहूम जो हैं उनकी कश्मीरी गज़लियात पे मुश्तमिल मेरी किताब इस वक्त ज़ेर तरतीब है रहो रस्म शाहबाज़ी। मैंने उनकी 60 मारकतुल आरा कश्मीरी गज़लों का अंग्रेज़ी में तर्जमा किया है और साथ में उस पर तबसरा भी किया है।
1: बहुत अच्छा।
0: और ये किताब 4 जुलाई को रिलीज़ होने वाली है और आपके रेडियो से बहुत सारे उनका कलाम जो है अली मोहम्मद शहबाज साहब का
1: पेश होता रहता है,
0: थोवत खुदाए ललवुन तकदीर ये उन्हीं का कलाम है। इस तरह उनके भी बहुत मुतअद्दिद खूबसूरत कलाम जो हैं वो है। और आखिर पे जो है साल के आखिर तक इंशाल्लाह मुस्तान बियॉन्ड द ब्लेजिंग चिनार मुफक्कर कश्मीर मौलाना मोहम्मद सईद मसूदी की हयात और खिदमात के हवाले से किताब जो है वो ज़ेर तरतीब है जिसका नाम है बियॉन्ड द ब्लेजिंग चिनार। तो ये अभी तक मंजर आम पे कुछ आई हैं, कुछ आने वाली हैं
1: माशाल्लाह,
0: और ये सिलसिला जारी है।
1: बहुत अच्छे बहुत अच्छे, अल्लाह कामयाबी से नवाजे। और आते हैं आज के टॉपिक की जानिब, और मैं एक बार फिर अपने तमाम सुनने वालों को बता दूं कि आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अब्दुल हबीब शाह मसूदी साहब से। आप स्पेशल सेक्रेटरी हैं गारमेंट इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में, और हमारा आज का मौजू है द यंगर जनरेशन सोशल मीडिया और एंड द चेंजिंग लैंडस्केप ऑफ वैल्यूज़, यानी नौजवान नस्ल सोशल मीडिया और अकदार का बदलता मंजरनामा। तो डॉक्टर साहब, मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है, ये कुछ छोटे छोटे सवाल हैं, मैं चाहूँगा कि आप इसका आंसर भी मुख्तसरन ही दें, क्योंकि ये बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है। अगर हम देखें तो ये बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन वक्त हमारे पास उतना ज़्यादा तो होता नहीं, उस लिहाज से भी दूसरा सवाल ये आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आप खुद महसूस करते हैं कि टेक्नोलॉजी ने नौजवान को कहीं कहीं करीब भी किया है और कहीं कहीं दूर भी किया है?
0: बिल्कुल, आपके सवाल में जो है वो जवाब जो है पोशीदा है। मैंने पहली अर्ज़ किया कि हर चीज़ का मस्बत और मनफी दोनों पहलू हुआ करते हैं। एक लिहाज से तो इल्म के, नॉलेज के, मालूमात के करीब किया है टेक्नोलॉजी ने, और वो चीज़ें जो आज से पहले इनएक्सेसिबल थीं, आज वो चीज़ें जो हैं आपके मोबाइल पे, आपकी टीवी स्क्रीन पे, आपकी जो दीगर मालूमात के गैजेट्स हैं वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपके सामने हैं। अब देखने ये कि आप इंतखाब किसका करते हैं। फ़र्क ये हुआ कि पुराने ज़माने में तालीम हासिल करने के लिए जानू अदब तय करना पड़ता था, और एक उस्ताद और शागिर्द का एक जो ताल्लुक है जो बड़ा जज्बाती भी था, और उसके साथ एहतराम और मोहब्बत के जो जज्बे हैं, रिश्ते हैं, वो जुड़े हुए थे। अब वो चीज़ बाकी नहीं रही है। अब आप बराह रास्त, आपका जो रब्ता है तो रब्ता तो हो गया, एक्सेस तो हो गई, पहुंच तो आपको मिल गई, लेकिन वो जो उस्ताद और शागिर्द के दरमियान मोहब्बत का, अखुवत का, प्यार का और अदब एहतराम का रिश्ता था वो ख़त्म हो गया।
1: बिल्कुल सही।
0: दूसरी तरफ जहाँ तक कुर्बत और बोध या दूरी का ताल्लुक है, तो आज की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या आज के सोशल मीडिया ने दो चीज़ें की हैं कि एक तो नौजवान को तफरीह का एक ला मुतनाही सिलसिला दे दिया है, वो जब चाहे तफरीह जो है वो हासिल कर सकता है
1: किसी भी किस्म की,
0: और किसी भी किस्म की, और मनफी भी और मस्बत भी।
1: सही।
0: ठीक है, और ये रुझान है इंसान का कि जब चीज़ें आपको रेडिली एक्सेसिबल हों तो आप उसका, और कोई आप पे कोई रोक ना हो, कोई आप पे किसी की नज़र गुजर ना हो, तो ज़ाहिर है कि आप चीज़ों का मनफी इस्तेमाल भी कर सकते हैं और मनफी रुझानात जो है वो आपके जहन में पनप सकते हैं। चनाचे जो स्टडीज़ हुई हैं, जो तहकीक हुई है, वो ये बताती है
1: और माशरे में जो

0: वक्त हम देख रहे हैं ना, जो तबाही हो रही है खासकर नौजवानों के हाथों, क्या इसका बेशकीमा है?
1: बिल्कुल, इसका पेश कीमत तो यही चीज़ है और एक आने वाले ज़्यादा होलनाक तबाही का पेश कीमत, ये सारी चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। तो जहाँ तक एक तो मैंने उस्ताद साहब की बात की थी, अब फैमिली के अंदर देख लीजिएगा कि अगर पांच लोग हैं, पांच के पांच लोगों के अलग अलग मोबाइल्स हैं, तो वो आपस में इंट्रैक्ट करने के बजाय, आपस में गुफ्तगू शरीद करने के बजाय, हमारे कश्मीरी माशरे में लोग इकट्ठे जो हैं वो बैठा करते थे, जिसे वो वंद रोचन हंस तुम कथा जिसे कहा जाता है कि साहब लंबी लंबी रातें बैठते हैं, गुफ्तगू करते हैं, तो अकदार जो है वो पासान होती हैं, बहुत सारी चीज़ें पासान होती हैं। वो सारी चीज़ें तो ख़त्म हो गई, अब आपके लिए बी ऑल और एंड ऑल जो आपके हाथ में लगा हुआ मोबाइल है, और एक मतलब मोबाइल आपके सामने है तो आपको छोड़ने का दिल नहीं करता। वो जिगर मुरादाबादी ने कहा था कि लगती है ये काफिर अब छूटती नहीं, कि साहब मुंह से लग गई है, शराब के बारे में कहा था,
0: सही,
1: अब छूट नहीं रही है। बिल्कुल वही नशा है कि साहब आप किसी से बात करते हैं तो नजर आपकी कहीं है और कान आपके कहीं और लगे हुए हैं, आप कोई काम कोई कर रहे हैं लेकिन आपके कान और आपकी आंखें मोबाइल पे मरकूज हैं।
0: नौजवान में एतमाद बढ़ा है या बेचैनी बढ़ी है?
1: दोनों चीजें। जहां तक एतमाद का ताल्लुक है, मैं से कहूंगा जरूरत से ज्यादा खुद एतमादी। पूरा एतमाद होना बुरी बात नहीं है, इट्स अ वंडरफुल एसेट, इट्स एन एट्रीब्यूट, कॉन्फिडेंस होना, लेकिन सोशल मीडिया ने नौजवान को ओवर कॉन्फिडेंट कर दिया है। वो ये कि साहब मिसाल के तौर पर आप मुझसे कोई सवाल पूछते हैं, आप किसी चीज़ का इस्तफसार करते हैं, मेरा ये फ़र्ज़ है कि साहब मैं आपके सवाल को गौर से सुनूं, आपको पूरा टाइम दूं और आपके जवाब का तसल्ली बख्श जवाब देने की कोशिश करूं उन मालूमात की बुनियाद पर जो मेरे जहन में हैं या मेरी मालूमात के हाशिए में हैं। लेकिन सोशल मीडिया की वजह से मुझे आपका सवाल तसल्ली से सुनने का मौका ही नहीं। इससे पहले कि आप अपना सवाल पूरा करें, मैं जवाब देने की कोशिश में होता हूं और मेरे पास रेडीमेड फार्मूला है कि धराधन जवाब देते जाओ, बिल्कुल जैसे रैपिड फायर राउंड हुआ करता है ऐसे मैं जवाब देता हूं। यानी अभी अब मैं आपकी बॉडी लैंग्वेज को देख के आप क्या पूछना चाहते हैं, मैंने जहन में पहले ही खाका बना रखा है, मैं इसका ये जवाब दूंगा। यानी जवाब जो है वो सवाल की बुनियाद पे नहीं है, मेरी जहनी इख्तियार की बुनियाद पे कि मुझे इस सवाल का जवाब क्या देना है।
0: यानी आपकी बात सही है कि यानी जहाँ एतमाद बढ़ा है वहाँ बेचैनी भी बढ़ी है।
1: मैं थोड़ा सा इसको इसकी मजीद वजाहत करूँगा कि एतमाद तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन गैर जरूरी एतमाद ओवर कॉन्फिडेंस जो बढ़ा है
0: वो
1: नुकसानदेह है, वो नुकसानदेह। और वो है हर आदमी जिसके पास ये है वो ओवर कॉन्फिडेंट है। कोई बात कही, अरे साहब मैं भी गूगल को सर्च करता हूँ, मैं भी ये देखता हूँ वो देखता हूँ, अरे साहब इसमें जो कंटेंट जिस शख्स ने अपलोड किया है आपके पास क्या इत्तलात हैं कि वो सारा सही का सही है?
0: सही।
1: वो तो गलत भी हो सकता है, वो इनएक्यूरेट भी हो सकता है, वो मिस इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, लेकिन आपका ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो तो देखने से ताल्लुक़ रखता है और आप इसको हर्फ आखिर समझ कर, फैसले कुल समझ कर इस पर जो है आप अमल करने लग जाते हैं। दूसरी चीज़ यह है कि इसने जो फैमिली नॉर्म्स है उसको बुरी तरह से सोशल मीडिया ने मुतासर किया है कि फैमिली अल्लाह ताला का निज़ाम है कि उसने एक इंसान से तमाम इब्न आदम को पैदा किया और फिर रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक किया, फिर ये फैमिली सिस्टम, ये बच्चों का निज़ाम यही है कि आप एक ग्रुप में रहें, इस ग्रुप में रहते हुए आप एक दूसरे को असरअंदाज करते हैं, मुतासर करते हैं अपने इल्म फजल से, अपने चाल ढाल से, अपने अखलाक से, अपने आदात व अतवार से। ये सारी चीज़ें जो आपको माशरे से मिलती हैं ना, सोसाइटी से मिलती हैं और फैमिली से मिलती हैं जो एक इदारा इंस्टीट्यूशन है, तो सोशल मीडिया ने जहाँ मालूमात का ढेर सारा ख़जाना हमारे सामने ला खड़ा कर दिया है, वहीं फैमिली नॉर्म्स को, फैमिली के अकदार को और घर के निज़ाम को, माशरे के निज़ाम को यूँ मुतासर किया है कि साहब क्या कहिएगा, इस पर मुफस्सल गुफ्तगू करने का दिल चाहता है लेकिन आपकी शायद वक्त का तायुन भी है वो भी जहन में रखे हुए
0: वो तो जहन में रखना ही पड़ता है। और एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि आप देखिए आप इस वक्त भी एक किताब कंपाइल कर रहे हैं, आपने कहा कि मैं एडिटिंग के साथ लगा था, मैंने सोचा कि दो दिन छुट्टी है तो ये वक्त ज़ाया ना किया जाए, और आपकी आँखों से भी पता चलता है मुझे कि आप शायद बहुत कम सोए हैं इसी किताब की वजह से, लेकिन नौजवानों में हमने ये रुझान कम देखा पढ़ने का, मुताले का।
1: जाहिर है कि सोशल मीडिया के एक और जो नुकसानदेह नतीजा है और जिसके बड़े दूरस असरात मुरतब हुए हमारे समाज में और उसके साथ हमारी साइकी पर, हमारे सोशल मिलियूज़ पर, ہمارے طرز عمل پہ، ہماری پرسنالٹی، ہماری

0: शख्सियत पे जो असर ये पड़ा है कि साहब आप वो जो किताबी सिलसिला था, हाथ में किताब उठा के पढ़ना, किताबें झांकती हैं बंद अलमारी
1: अलमारी
0: के
1: के शीशों
0: शीशे
1: से।
0: से, तो वो चीज़ तो अब रही नहीं है। कि अब तो यह है कि साहब आप किताब पढ़ना चाहें, कुछ कहना चाहें, बस आप सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, सोशल मीडिया से जो मालूमात आती हैं उसे आप हर्फ आखिर मान के कबूल करते हैं और उसको पास ऑन करते हैं। तो वो जो किताब के साथ ताल्लुक़ था कि भाई किताब को पढ़ना है
1: वो
0: और
1: छूट
0: अपनी
1: गया
0: उंगलियों
1: हमसे।
0: से किताब को छूना है, फिर इसकी वर्क गर्दानी करनी है और वर्क को उलटते जो मज़ा आता है, जो एक ख़ास स्वाद आया करता था, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी। और वो हालांकि किसी ज़माने में हफीज़ जलंधरी ने बल ये भी कहा था कि किताबी दर सही से शाह सवारी आ नहीं सकती, उसूल आएँ तो आएँ पुख्तकारी आ नहीं
1: आ
0: सकती,
1: नहीं सकती
0: और
1: बिल्कुल।
0: बुलंदी पर पहुँचने के लिए हाजत है जीने की, समुंदर पार करने को ज़रूरत है सफ़ीने की, कि बच्चे
1: माशाल्लाह
0: बतने मादर से जवान पैदा नहीं होते, बनाए जाते हैं सभी पहलवान पैदा नहीं होते। कि साहब
1: माशाल्लाह
0: किताबी दर्स तो ज़रूरी है लेकिन साथ साथ प्रैक्टिकलिटीज़ जो हैं
1: बहुत
0: वो भी
1: ज़रूरी है,
0: आपके लिए ज़रूरी हैं, लिहाजा एक
1: बहुत
0: तालिबे इल्म
1: ज़रूरी
0: को दोनों चीज़ें जो मुहैया की जाएँ। लेकिन अब प्रैक्टिकलिटी ऐसी आई है कि इट हैज़ ओवर टेकन द बुक्स और वो कुतुबीनी, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल पस मंज़र में चली गई हैं, और नई नस्ल किताबों से तो दूर भाग रही है। एक
1: हाँ।
0: तरफ तो ये आलम है, दूसरा आलम ये है कि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे नर्सरीज में या केजीज में या प्राइमरी क्लासेस में जाते हैं, उनके कंधों पे हमने किताबों का एक बोझ लाद दिया है, जैसे कि वो पढ़ने ना जा रहे हों, वो बारबर्दारी का काम कर रहे हों,
1: सही
0: बोझ उठाने का काम कर रहे हों।
1: सही।
0: और फिर हमारे निज़ाम तालीम में चार ज़बानें पढ़ाओ, पांच ज़बानें पढ़ाओ, अरे साहब बहुत सारी ज़बान इस माशरे में इंसान चलते फिरते खुद सीख लेता है।
1: सही है,
0: और ये ज़बानें जो हैं ये असरी उलूम की ज़बानें तो हैं नहीं।
1: बिल्कुल सही। अब एक और सवाल यहाँ पे है ना, आप देखिए जहाँ हम बात करते हैं मुताले की कमी है, आजकल नौजवान किताब हाथ में उठाता नहीं है, क्या हमारी नई नस्ल अपनी तहजीब, जबान और रवायात से भी दूर हो रही?
0: ये सवाल जो है मजमूई तौर पे तो मैं ऐसे इसलिए इतफाक नहीं करूँगा कि आज के इस पुराशुभ दौर में भी कुछ इस्तिसनाई सूरत हाल है, कुछ ऐसे लोग हैं जो किताबें पढ़ते हैं, बहुत मुख्तसर तादाद उनकी, लेकिन ये काबिल तहसीन है कि एक ऐसे माहौल में जब कुतुब बीनी में लोगों को अमूमी तौर पर दिलचस्पी ही नहीं रही, और जब टीचिंग मेथडोलॉजी जो है वो भी आईटी ड्रिवन है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, वो दरसी बहुत कम रही है, तो ऐसे में भी कुछ लोग ऐसे हैं। जाहिर है कि अभी हिंदुस्तान में हर साल किताबों के मेले जगह जगह लगते हैं, अभी हमारे श्रीनगर में जो है कल और परसों जो है
1: लिटरेरी फेस्टिवल है,
0: लिटरेरी फेस्टिवल है, जहाँ
1: बिल्कुल
0: पे किताबें जो हैं वहाँ पे रहेंगी, मेरी तीन किताबें भी उस फेस्टिवल में होंगी। तो और पिछली मरतबा जब फेस्टिवल हुआ तो अच्छी खासी तरह लोगों की आई थी और बहुत सारे लोगों ने किताबें ख़रीदी भी थी,
1: जी
0: कितने वो पढ़ पाए लेकिन वो अलग से बात है, लेकिन जिसने किताब ख़रीदी होगी वो कुछ पढ़ेगा भी ज़रूर, और
1: सही बात
0: ये
1: है,
0: भी है कि
1: सही
0: किताब
1: बात है।
0: खरीद कर पढ़िए
1: तो
0: तो
1: ये
0: दिलचस्पी
1: वही
0: बढ़ेगी।
1: मैं मेरा सवाल था कि क्या हमारी नई नस्ल तहजीब, जबान और रवायत से भी दूर हो रही है?
0: जाहिर सी कि आप किताब से दूर होंगे, आप अपने तमद्दन से भी
1: जबान से
0: दूर हो
1: दूर
0: जाएंगे, आप
1: होंगे
0: ज़बान से दूर होंगे, आप अपने
1: बिल्कुल,
0: तमद्दन से दूर होंगे,
1: तो रवायत से भी दूर हो
0: रवायत
1: जाएंगे।
0: से और अपनी अपनी सकाफत और कल्चर है उससे भी एक बोध आपको तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा।
1: बेदी करो तो इसी दिन कथ ठीक है जी। यूसी टॉपिक शुशु सेठा दिलचस्प टॉपिक थे, सेठा वसी टॉपिक थे, तो सेठा जरूरी टॉपिक थे अगिस आम इंसानस खतरे। आज तुम बे अख नजराना अख थोमु तुहदि बापत, मे पूर्व उमेद अ सपदो फैजयाब तो सैन बोजन मिल तो सपदन फैजयाब।

0: जो है वो लोगों को नजर आती है।
1: अच्छा,
0: बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वो इतने अच्छे क्लासरूम
1: चुनीलाल जी,
0: जी चुनीलाल पंडिता, सीएल पंडिता एक रोशनलाल थे लेकिन वो मेरे उस्ताद नहीं रहे हैं। तो ऐसे मुतअद्दिद ऐसे लोग जो हैं, तो ये चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी शख्सियत में, आपकी साइकी में ये चीज़ें सराइत करती हैं और चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं। लेकिन असातिज़ा का मामला ये है कि साहब वो बने बनाए नोट पढ़ के लाएंगे, उनको बच्चों में तकसीम कर लेंगे, अच्छा, या फिर डाउनलोडेड जो मटेरियल है वो उठाएंगे और तकसीम कर लेंगे। देखना यह है कि क्लास रूम में एक उस्ताद और बच्चे के दरमियान जो इंट्रैक्शन है उसमें कितना दौरानिया जो है वो लगता है, कितना वक्त वो बाज़ाब्ता इंटरेक्ट करते हैं पढ़ाने की सूरत में, क्वेश्चन आंसर सेशन में, या बाकी सारी चीज़ें। मेरी मालूमात का जहाँ तक ताल्लुक है कि अब हमारी क्लासेस में भी इंटरटेनमेंट का जो माहौल है वो ज़्यादा होता जा रहा है, वो जो बराह रास्त ताल्लुक है उस्ताद और शागिर्द का वो कम हो रहा है, और उसकी जगह भी या तो सोशल मीडिया ले रहा है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ले रहा है या टेक्नोलॉजी के ताल्लुक से जो

0: बात का जहाँ तक ताल्लुक है कि अब हमारी क्लासेस में भी इंटरटेनमेंट का जो माहौल है वो ज़्यादा होता जा रहा है, वो
1: सही
0: जो बराह रास्त ताल्लुक है उस्ताद और
1: कम
0: शागिर्द
1: हो
0: का
1: रहा है
0: वो कम हो रहा है, और
1: बिल्कुल
0: उसकी जगह भी या तो सोशल मीडिया ले रहा है, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ले रहा है, या टेक्नोलॉजी के ताल्लुक से जो बाकी चीज़ें हैं वो सामने आ गई हैं। तो वो 101 जो इंट्रैक्शन है जिससे मोहब्बत, इखलाक, खलूस, एहतराम, इंसानियत, आदमियत, ये तमाम चीज़ें पनपती हैं जो ज़िंदगी की बुनियादी अकदार हैं,
1: जी
0: तो वो तो ख़त्म हो गई हैं। अब इसके नतीजे में अगर आपके पास वक्त हो तो मैं ये बताता चलूँ कि जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो ये है कि ये सोशल मीडिया हैंडल करने वाला शख्स छोटा है, बच्चा है, जवान है, मुलाजिम है, जो भी है, वो चिड़चिड़ा हो गया है, उसके अंदर कुव्वते बर्दाश्त की
1: कम हो गया
0: इंतहाई
1: है।
0: कमी
1: बिल्कुल
0: आ गई है,
1: बिल्कुल सही हो।
0: वो किसी भी बात को तसल्ली से सुनने की मूड में नहीं है, और अगर बात सुन ली तो उसका फौरी जवाब देना है सोचे समझे बगैर,
1: सही सही सही
0: यानी ये कोशिश नहीं है कि साहब अगले के सवाल की तशफी हो जाए, बस जस्ट मेरे सर से जिम्मेदारी उतर जाए, सवाल पूछा है और मैं धड़ाधड़ जो है इसका जवाब दे दूं एकदम। तो ये जो तू तड़ाक वाली बात है, जो रैपिड फायर वाली बात है, ये जो है इससे समाजी अकदार बहुत बुरी तरह से मुतासर हुई है।
1: डॉक्टर साहब, मेरे सवाल का दूसरा हिस्सा था कि आपकी नज़र में सोशल मीडिया को मस्बत अंदाज में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है?
0: जाहिर सी बात है कि ये जो आमिल है, जो हैंडलर है, ये उसके हाथ में है। वो कुरान पाक ने एक जगह बता दिया था कि इन्ना हदैना हुस्सबीला इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा, कि हमने तुम्हें सीधा रास्ता बता दिया है, अब तुम्हारी मर्जी, तुम रीत सीधा रास्ता अख्तियार करके कामयाबी की मंजिल की तरफ गामजन हो जाओ, या तुम टेढ़ा रास्ता जो है वो चुनकर अपनी दुनिया और आखिरत में बर्बादी का सौदा करो। बिल्कुल सोशल मीडिया में भी यही है कि सोशल मीडिया हो या सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले जो इस्तेमाल में मुख्तलिफ गैजेट्स या आलात आते हैं, हर एक में मस्बत और मनफी दोनों पहलू मौजूद है। आपने अपने जहन से, और इसमें वालदैन और असातिज़ा का ज़्यादा रोल है, कि वो उन प्रोग्राम्स को, उन एप्लीकेशंस को जो अखलाकियात से ताल्लुक़ रखती हूँ, जो ठोस साइंसी मालूमात से ताल्लुक़ रखती हूँ, उनको प्रमोट करने की ज़्यादा कोशिश करें, और बच्चे की सवाबदीद पे ना छोड़ें कि साहब ये आपके सामने है, अब आप जो चाहो सो करो। ऐसा नहीं है कि मैंने सरेंडर करके, हैंड्स अप करके ये आपको दे दिया है कि साहब नाउ यूज़ इट द वे यू वांट टू नो। ये मेरी बहसीत वालिद और बहसीत उस्ताद ये ज़िम्मेदारी है कि मैं वो एप्लीकेशन जो अखलाकियात से, समाजियात से, और जो रूहानी चीज़ें हैं जिससे हमारा माशरा जो है, जिससे इबारत है, वो चीज़ें इंट्रोड्यूस करें। मैं आपसे ये बताता चलूँ कि जब मैं हिफ्स कर रहा था
1: जी जी
0: 2000 यानी 7-8 के आसपास, अल्लाह का शुक्र है कि मैं 35 साल की उम्र में मैंने हिफ्स किया है, तो मैंने मोबाइल से, सोशल मीडिया से पूरा पूरा फ़ायदा उठाया। और बसा औकात बिकॉज आपके पास अगर वजू नहीं भी होता है तो आप मोबाइल को ऑपरेट करके वो चीज़ देख लेते थे, और जहाँ पे आपको भूल हो जाती थी वहाँ पे आप उसे आप रिकूप कर लेते थे। तो लिहाजा यही नहीं है, मैं ये कहूँगा कि खुद आज इस यानी उम्र में भी मैं मोबाइल से या सोशल मीडिया से मुफीद मालूम हासिल करता हूँ, और लोग भी कर सकते हैं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं आप, लेकिन देखना है कि आपके जहन में क्या है। असल में किसी चीज़ को इस्तेमाल करने से पहले आपके जहन के अंदर एक सांचा जो है वो किस तरह से ढला है वो इम्पोर्टेंट है, और उसके लिए असातिज़ा का और वालदेन का रोल है। अगर आपने पहले ये जहन में बना लिया कि साहब नहीं, मुझे इस मीडिया को इस्तेमाल करके समाज में अफरा तफरी मचानी है, लोगों के अंदर टेंशन क्रिएट करनी है, और मेरे तर्ज अमल से, मेरे चिड़चिड़ेपन से, और मेरे जिसे कहते हैं फिलबदी बरजस्ता जवाबदही के अमल से, घर वाले, ऑफिस वाले, दफ्तर वाले, बरादरी, हर जगह क्या होगा। हाँ, बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, इजाज़त दीजिएगा, कि आज की नस्ल छोटी है या बड़ी, नौजवान नस्ल हो या छोटे बच्चे हों या इवन बुज़ुर्ग हों, सोशल मीडिया और मोबाइल गैजेट्स के एक्सेसिव इस्तेमाल से आर्गुमेंटेटिव हो गए हैं।
1: सही,
0: अपने रिस्पांस में, अपने बिहेवियर में, अपने डिमीनर में। वो क्या है कि लिखा था जो नोबल इनाम याफ्ता जो थे डॉक्टर अमर्त्य सेन, माहिर इक्तसादियात, उन्होंने लिखा था, उन्होंने किताब लिखी थी द आर्गुमेंटेटिव इंडियंस।
1: ओके,
0: ये तब लिखी थी जब अभी सोशल मीडिया इतना मंजर यहाँ पे नहीं आया था। और अगर इस तनाजुर में आज देखा जाए तो एवरी सिंगल इंडिविजुअल रेंजिंग फ्रॉम अ चाइल्ड टू एन اڈولس

0: to an adult and to the old age persons, from teachers to students to doctors to patients, every single person is argumentative. आप हर बात में एक आर्गुमेंट लेकर आते हैं, आर्गुमेंट देना चाहते हैं, आर्गुमेंट पास ऑन
1: ये
0: करना
1: इसी ने
0: चाहते
1: किया ना
0: हैं
1: मोबाइल की वजह से ही
0: जी, और आप तमाम मसाइल का हल आपके पास,
1: बिल्कुल
0: आपके पास वक्त नहीं है। देखिए, इस दुनिया में हर चीज के लिए एक निजाम है ना। ये मैंने जो शेर पढ़ा था कि बच्चे बतने मादर से जवां पैदा नहीं होते, बनाए जाते हैं सभी पहलवान पैदा नहीं होते, हर चीज मरहलावार तय होती है ना। लेकिन आज की नौजवान नस्ल को, जिसके हाथ में मोबाइल है, उसे अपने तमाम मसाइल का हल चुटकी में चाहिए।
1: सही,
0: मोबाइल ऑन किया, या तो हल दो, दिस वे और दैट वे, माय वे और द हाई वे, या जो मेरे जहन में जो मैं चाहता हूँ, मेरा जवाब जो है वो मेरे एतबार से, मेरी स्पीड के मुताबिक, मेरी मर्जी के मुताबिक मुझे दिया जाए। आपकी क्या मजबूरियाँ हैं, आपके क्या लवाजमात हैं, आपके क्या तकाजे हैं, आपका कितना टाइम है और आपकी स्पीड कैसे आगे बढ़ेगी, मुझे इससे कोई दिलचस्पी
1: नहीं।
0: इट्स नन ऑफ माय बिजनेस।
1: ठीक है,
0: मुझे चाहिए जो मेरे जहन में, बिकॉज इस एक्सेसिव यूज ने जो चिड़चिड़ापन, जो उजलत पसंदी, जो ताजील है, हालांकि हमने शेख सादी ने कहा था कि दरकारे ताजील करदम जायज नीस्त, कि काम काज में जरूरत से ज्यादा ताजील करना शैतान का काम है, फटाफट हो जाए काम नहीं। हर एक चीज का एक वक्त है और हर चीज में वक्त लगना चाहिए, मुनासिब वक्त लगेगा तो चीज या नतीजा सही अंदाज में बाहर आएगी।
1: चूंकि डॉक्टर साहब आपको गजलें बहुत पसंद हैं, हमने एक गजल क्यों करके रखी है आपके लिए।
0: बहुत शुक्रिया।
1: एक दो शेर सुनते हैं, उसके बाद और बात करते हैं।

0: और आज के इस प्रोग्राम में अब आखिरी पायदान पर हम पहुंचने वाले हैं, जहां पर हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अब्दुल हफीज शाह मसूदी साहब से, स्पेशल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। बात हो रही है नौजवान नस्ल, सोशल मीडिया और अकदार के बदलते हुए मंजरनामे पर। तो डॉक्टर साहब, हम कहते हैं, लोग कहते हैं, बाहर वाले कहते हैं, अंदर वाले कहते हैं कि कश्मीर में बहुत टैलेंट है, यहाँ का यूथ टैलेंटेड है। अगर यूथ टैलेंटेड है तो कौन सी मस्बत चीज़ें आप देख रहे हैं यहाँ के नौजवानों में?
1: मुझे इस बात से इत्तेफाक है कि यहाँ पे टैलेंट मौजूद है। ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी, मुझे इससे पूरा पूरा इत्तेफाक है। और इसके इसका जो उदाहरण है वो इस एतबार से है कि देखिए, एक तरफ तो हम बड़े पूरा अशुभ हालात से गुजरे, पूरा अशुभ दौर से गुजरे, लेकिन उसने हमारी नौजवानों के अंदर एक, जिसे कहते हैं कि लेटरल एनर्जी जो है, उसको ट्रिगर किया। नतीजे यह है कि अब एक तरफ एक बहुत बड़ा तबका हमारी नस्ल का, चाहे नौजवान है चाहे छोटे हैं, वो सोशल मीडिया की नज़र हो गए हैं। दूसरी तरफ एक जज्बा खुदी, जज्बा खुददारी जो है वो भी पनप रहा है, और लोग मेहनत कर रहे हैं, बच्चे मेहनत कर रहे हैं, और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो हैं, मसाबकती इम्तहानात जो हैं, उसमें आपने देखा होगा कि हमारे बच्चे जो हैं वो न सिर्फ हिस्सा ले रहे हैं बल्कि कामयाबियाँ हासिल कर रहे हैं, और मुख्तलिफ शोबा है हयात में वो आगे बढ़ रहे हैं। तो एक तरफ ये कि तालीमी मैदान का जो मंजरनामा है वो मजमूई तौर पर जो है वो हौसला शिकन नहीं है, उसमें हौसला अफजाई के इम्कान मौजूद
0: हैं,
1: और उसको लेकर मैं काफ़ी मुतमिन हूँ कि ये चीज़ हो रही है। उसके साथ साथ खेलों का जहाँ तक ताल्लुक है, तो आपने महसूस किया होगा कि पिछले कई सालों में खेलों के ताल्लुक से, खेलों के हवाले से हमारे नौजवानों में दिलचस्पी जो पहले के मुकाबले में बढ़ी हैं। और मैं ख़ुद स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, ये मेरी ताज़ा किताब जो है क्रिकेट इन द कॉनिफर्स इसी पे मुश्तमिल है कि रूरल एरियाज़ में ख़ास तौर पर नौजवानों के अंदर कितना ज़बरदस्त क्रिकेट टैलेंट है, और उसी टैलेंट को मैंने इस किताब में जो है समोने की कोशिश की है। तो स्पोर्ट्स के हवाले से अच्छा, और ये भी है जाते जाते कि जम्मू कश्मीर की क्रिकेट टीम जो है वो पहली मर्तबा
0: रणजी ट्रॉफी जीती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, चैंपियन बन गए,
1: उस चैंपियन बन गए, और वो पूरा चैप्टर
0: जीता जागता, और ये तो हमारे पसरूर थे कि टैलेंट का है ना। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमारे लिसनर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने सामने के साथ बात की और एक अच्छे टॉपिक पर बात की, और कुछ बातें जो आपने कही इन बातों को जहन में रखने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच। हम कोशिश करेंगे कि अगले प्रोग्रामों में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। एक बार फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और अपने तमाम सुनने वालों से ये कहता हूं कि अब अपने मेज़बान, अपने होस्ट, अपने दोस्त रशीद निज़ामी को पयाम सुबह से दीजिए इजाज़त। अगली आवाज़ सुहेला की होगी।
2: बहुत बहुत शुक्रिया रशीद निज़ामी साहब। ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है, हमारा अगला ऐलान सुनिए। आकाशवाणी श्रीनगर कह बजित त्रह मिनट सपद वलु समाइन छकर तोबुजो सदाकार अली मोहम्मद शेख तिहन सथी इमन बुजो इस कलाम असद मीर।

0: समय मुथरम दसव छकत रह बोजान सदाकारस अली मोहम्मद शेख तिहन सती इमन नश बुजु तय कलाम असद मीर ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। दिन के 12 बजने वाले हैं। थोड़ी देर बाद आकाशवाणी दिल्ली से अंग्रेजी और हिंदी खबरों का बुलेटिन नशर होगा।
1: चार के साथ मैं लवलीन निगम। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति के रूप में उनकी ये पहली भारत यात्रा है। म्यांमार के राष्ट्रपति ने गया में महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद वे नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनका आज शाम विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात का कार्यक्रम है। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में भाग लेंगे। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस संबंध में जानकारी दी।
2: म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है, जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
1: सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा के बीच सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में कहा कि

0: देश में एलपीजी की कमी की कोई सूचना नहीं है। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रहे हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज शाम विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धरमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। उन्हें नए नेता के चुने जाने तक कार्यभार मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने के निर्देश दिए हैं। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू हो रहा है। 1 महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। मंत्रालय द्वारा यह सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
1: मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
0: लेफ्टिनेंट जनरल NS राजासुब्रमणि उनका स्थान लेंगे। गुजरात टाइटंस IPL क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि गोवा न केवल अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शानदार आतिथ्य सत्कार के लिए प्रसिद्ध है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह अवसर उन सभी को याद करने का है जिन्होंने राज्य की प्रगति और पहचान के लिए अथक परिश्रम किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने पत्रकारों, लेखकों और हिंदी भाषा के समर्पित प्रबुद्ध व्यक्तियों को हिंदी पत्रकारिता दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों के निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचों और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, The News, read by Shagun Chopra. Myanmar President U Min Aung Hlaing arrived in Bodh Gaya today as part of his 5-day visit to India. During the visit, he offered prayers at the world-renowned Mahabodhi Temple and the historic Sujata Temple. The president will also visit various Myanmar Buddhist monasteries in Bodh Gaya. Earlier, Bihar Agriculture Minister Vinay Kumar Sinha accorded a warm welcome to President U Min Aung Hlaing at Gaya Airport. The Karnataka Congress Legislature Party is scheduled to meet in Bangalore at 4 p.m. today to elect its new leader to succeed the outgoing Chief Minister, Mr. Siddaramaiah. Governor Thavarchand Gehlot has already accepted the resignation of Mr. Siddaramaiah, asking him to act as a caretaker until a new incumbent is chosen. Our correspondent reports that Mr. D.K. Shivkumar is likely to be formally elected as the new leader of the Congress Legislature Party. The 136 Congress MLAs have been asked to attend the CLP meeting. AICC General Secretary and Karnataka in charge, Randeep Singh Surjewala, will be the observer. Once the CLP chooses its new leader, he will meet the governor to seek permission to form the new government and finalize the date for the swearing-in of the Council of Ministers. Chief of Defence Staff General Anil Chauhan today bid farewell to military service after receiving a ceremonial Tri-Services Guard of Honour at the National War Memorial in New Delhi. The ceremony

कुमार शानू की आवाज़ में आपने फिल्म साथी से ही नगमा सुना। जिस समय मैंने आपको बताते चले, फिल्मी नगमे आप इस वक्त आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से समाप्त कर रहे हैं। अब आइए आखिर पे रंग फिल्म से ही नगमा सुनते हैं। आवाज़ें हैं अलका याग्निक और कुमार शानू की।

0: आप सुनात कर रहे थे फिल्मी नगमे, आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज़ मीडियम वे 268.81 मीटर और FM 103.5 MHz पर। बराबर 30 मिनट हो रहे हैं। समाप्त कीजिए खबरें पहले उर्दू और उसके फौरन बाद कश्मीरी में।
1: आकाशवाणी श्रीनगर है, 12:30 हुए हैं। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं बसारत गुल। म्यांमार के सदर यू मिन ऑंग हाइंग का भारत के 5 रोज़ा सरकारी दौरा आज से शुरू हो रहा है। उनके हमरा कई काबिनी वुजरा, सीनियर अफसरान और ताजर लीडरों का एक वफद भी है। ये उनका बहसीते सदर भारत का पहला दौरा होगा। वो आज सुबह बोधगया बिहार पहुंच गए और आज शाम वो वजीर खारजा डॉक्टर एस जय शंकर के साथ मुलाकात करेंगे। सरकार ने तेल मार्केटिंग कंपनियों से कहा है कि वो मगरबी एशिया की सूरत हाल के चलते मुल्क में 30 दिनों के लिए LPG का एक रिजर्व स्टॉक कायम करें। पेट्रोलियम और कुदरती गैस वजारत की जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में बैन वजारती प्रेस ब्रीफिंग के दौरान मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि भारत खाम तेल स्टोरेज की सलाहियत को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि पिछले 4 दिनों के दौरान मुल्क में मुख्तलिफ कंपनियों की तरफ से 1,80,00,000 गैस सिलेंडर तकसीम किए गए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने गोवा के स्टेटहुड डे पर वहां के लोगों को मुबारकबाद दी है। एक पैगाम में LG ने कहा कि कुदरती खूबसूरती और गोनागु सकाफती विरसे से माला माल इस रियासत ने बहुत सारे शोबों में अपनी एक मुनफरद शिनाख्त कायम की है। उन्होंने लोगों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए दुआ की कि गोवा दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। जम्मू कश्मीर को मनशियात की बिद्दत से छुटकारा दिलाने के लिए नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत सरगर्मियां शिद्दत से जारी हैं और मनशियात के बुनियादी ढांचे को खत्म करने नीज इस धंधे में मुलविस लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में कोई भी दकीक फरोगुजाश नहीं किया जा रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जाती तौर पर इन सरगर्मियों की निगरानी कर रहे हैं और मुख्तलिफ अजला में पदयात्राओं और बेदारी प्रोग्रामों की क्यादत करते हैं। इसी सिलसिले की एक कड़ी के तहत लेफ्टिनेंट गवर्नर यकुम जून को कुलगाम में एक पदयात्रा की क्यादत कर रहे हैं। हमारे कुलगाम के नुमाइंदे ने खबर दी है कि पदयात्रा के लिए इंतजामिया की तरफ से तमाम इंतजाम मुकम्मल किए गए हैं। वाजह है कि मनोज सिन्हा ने पिछले महीने की 11 तारीख को जम्मू से नशा मुक्त अभियान की शुरुआत

0: पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, उसका आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा। और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा, एनडीपीएस एक्ट के तहत उसकी चलाचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
1: भारतस मे स्विट्जरलैंड सफीर माया तिसाफीन को रात श्रीनगर वजीर आला उमर अब्दुल्ला सत मुलाकात दशवी शख्सियतों कर पोशवन सियाहत बागबानी तो दौमें मुनसलिक सेक्टर सान बाहमी दिलचस्पी हंदन वाडियन मामलन पर तफसील ख्याल बावत सैन नुमाइंद खुर्शीद पडरून पुलिस वसीलन हंद हवाल दिवान खबर दिसमें जम पे श्रीनगर यवान चून सत भरत अख ट्रक गई आज सुबह रामबन जिले में गांगरू जाये सड़क डुल यम कि तथ नार लोग अत हादस मे जो नफर आज जान सपदम आला तलीम हंद महकम सरकारी डिग्री कॉलेजन में अंडर ग्रेजुएट दाखिल हंद बा ऑनलाइन दरख्वास फार्म जमा कर कॉलेज तरजीहत अपडेट कर आखिरी तारीखस मे तवसी कर्मुत आला तलीम हंद महकम मुताबिक हकन उम्मीदवार वन आज यानि 3 मई शाम 5 बजे तमाम दाखिल पोर्टल jkadmissions.in पे पे दरख्वास जमा या अपडेट कर अम हवाल वन डायरेक्टर कॉलेज प्रोफेसर शेख एजाज बशीर आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर सत कर
2: जो लास्ट डेट था सबमिशन ऑफ फॉर्म वो 27 5 बजे तक था, अभी हमने उसको एक्सटेंड कर दिया है। हमारे पास सिविल सोसाइटी और स्टूडेंट्स की तरफ से बहुत रिप्रेजेंटेशन आई थी तो हमने उसको एक्सटेंड कर दिया है, अब 30 तारीख 5 बजे तक लिंक खुली रहेगी। हमने जो उनका टेंटेटिव मेरिट लिस्ट भी निकाल दिया है तो उसको भी देखकर वो अपनी चॉइसेस बढ़ा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं कॉलेज वाइज और प्रोग्राम वाइज। तो ये प्रोसेस सारा अभी 30 तारीख तक स्टूडेंट कर सकता है, तो 5 बजे लिंक बंद हो जाएगी, फिर बाकी जो शेड्यूल है वो उसी शेड्यूल के हिसाब से लिस्ट निकलेगा और फिर राउंड 2 हो जाएगा और स्पॉट राउंड हो जाएगा।
1: जम्मू कश्मीर तो लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस अरुण पल्ली तुल रात जिले कोर्ट कम्प्लेक्स जम्मू अकिस क्रैश फैसलिटी हंद दस यह क्रैश सहूलत अत अदालत मम कर वाले वालदेन खास पे जनान वकीलन कोर्ट के अमलस तो जिले कोर्ट कम्प्लेक्स अफसर हंदन बचन हंद बा नवीन सहूलत सैस कर आम जम्मू कश्मीर बैंक जम्मू कश्मीर कें मुख्तलिफ सेक्टरन पोचर दिन तो लूकन आला मयार बैंकिंग सहूलत बहम थान बा प्रथ मुमकिन इकदाम कर बैंक तरफ खदश समाजी तो इकतदी तरक्की हज कम तमल अत बारस मे वदार मैनेजिंग डायरेक्टर तो सीईओ डॉक्टर अमिताभ चटर्जी आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर सत कर।
3: देखिए जम्मू एंड कश्मीर बैंक तो 1938 से यही काम कर रहा है जम्मू एंड कश्मीर के लिए। हम कुछ भी करते हैं हमारा मेन कमिटमेंट है जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, जो कुछ भी कर सके हम करते हैं। हमारा कमर्शियल एंगल जरूर रहता है, बैंक है, प्रॉफिट नहीं करेंगे तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते, लेकिन हमारा एम यही रहता है कि जिस तरह का भी स्कीम आए, आप किसी भी तरह का स्कीम ले ले, जैसे पिछले साल ये बहुत अच्छा एक स्कीम आया था मिशन युवा, उस स्कीम के अंदर भी हम सोल बैंकर हैं जो हमने 25,000 से ज्यादा लोगों को उसका लाभ पहुंचाया।
1: खबर बुलेटिन आकाशवाणी श्रीनगर पे सपद ब्या खबर नाम दिग्रह 3 बजे 15 मिनट पे उर्दू पे नशर इजाजत खुदा हाफिज।
4: سانی دوما لانو کرو ہنا انتظار
5: کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے تو دیر کس بات کی رابطہ کرے کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان ایک نئی پہچان
6: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
7: जी,
6: ये KYC अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
7: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर KYC अपडेट करवाना चाहिए।
6: पर ये होगा कैसे?
7: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
6: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
7: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर KYC अपडेट करवा सकते हैं।
6: बस
7: बस
6: समझ गया।
7: अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
8: RBI कहता है
9: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
10: बज़्म-ए-निस्वास

0: दुकानदार होते हैं अपनी दुकानात पे वो ऐसी चीजें रखते हैं, उनको ऐसी चीजें नहीं रखनी चाहिए,
1: उनको परहेज करना चाहिए।
0: जी, उनको परहेज करना चाहिए हर मोड़ पे।
1: इनके हालांकि इनके बहुत सारे नुकसान भी
0: हैं। जी जी,
1: जैसे कि सेहत का सबसे बड़ा नुकसान होता है, सेहत खराब हो जाती है इंसान की, फेफड़ों का कैंसर हो जाता है,
0: अल्लाह ना करे,
1: दिल की बीमारियां हो जाती है, सांस लेने में भी तकलीफ
0: होती है। लेकिन पता है आपको फरकान, ये ऐसी चीजें या ऐसी बातें कब होती हैं, जब इंसान छोटा होता है, बचपन होता है, उस समय उसकी समझ में कुछ नहीं आता है। जब आहिस्ता आहिस्ता एक एक आजा जवाब देने लगता है, जिस्म का एक एक अंग जवाब देने लगता है, तब इंसान को लगता है हाँ मैंने कुछ किया है। क्या किया था? मैंने कभी कोई गलती की हुई है जिसकी वजह से मुझे ये नुकसान भुगतना पड़ता है?
1: बिल्कुल बिल्कुल, मुंह और गले का भी कैंसर हो जाए, कमजोरी।
0: हालांकि सिगरेट पे लिखा होता है बाहर से ही
1: जी,
0: लेकिन इसके बावजूद भी हम ऐसी गलतियां करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए।
1: जी, कमजोर मदाफाती निजाम, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है इंसान का,
0: जिसकी वजह से फिर मतलब हमारी सेहत तो बिगड़ ही जाती है, इम्यून सिस्टम खत्म हो जाता है, फिर इंसान कुछ खा नहीं पाता है, जिसकी वजह से फिर कमजोरी हो जाती है और हम आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होते हैं, फिर उस मोड़ पे पहुंच जाते हैं जहां हमें अभी नहीं पहुंचना था।
1: जी, दूसरों पर भी इसके नुकसान आते हैं।
0: जी जी जी जी,
1: तंबाकू नोशी सिर्फ पीने वाले शख्स को ही नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि उसके आसपास मौजूद लोगों को भी पहुंचाती है। इससे सांस की बीमारियां और दीगर मसाइल पैदा होते हैं।
0: सांसें, देखिए जब आपने बात छेड़ी कि सांसें, मान लीजिए सिगरेट ले लिया हमने, एक तो खुद पे असर हो गया, दूसरा जो पैसिव स्मोकर बन गया, जो आपके साथ है, जो पीता नहीं, जो स्मोकिंग नहीं करता, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी जिंदगी पे, उसकी सेहत पे ऐसा असर पड़ता है, बहुत बुरा। लेकिन हमें उनका भी ख्याल रखना चाहिए। एक बदबू आती है, मतलब दूर से ही लगता है कि हाँ इसने, अगर इसने सिगरेट पिया है तो हमें उसके सामने नहीं जाना चाहिए, अच्छा नहीं लगता।
1: जी बिल्कुल, तंबाकू नोशी से दांत पीले हो जाते हैं और मुंह से बदबू आ जाती है और जल्द खराब हो जाती
0: है। सही बात है, सही बात है, जिसकी बात अभी हम कर रहे थे।
1: जी जी, नौजवान नस्ल और तंबाकू नोशी, आज की नौजवान नस्ल तेजी से तंबाकू नोशी की तरफ मायल हो रही है। इसकी बड़ी वजह दोस्तों का दबाव, सोशल मीडिया और गलत फैशन है।
0: तो ये दोस्तों के दबाव में क्यों आते हैं बच्चे? देखिए, हम कहते हैं ना कि बुरी सोहबत का असर बहुत जल्द होता है, तो क्यों रहे, क्यों करते हैं बच्चे ऐसा? क्या वो समझते नहीं?
1: जी वो तो समझते हैं, लेकिन वो
0: क्या दोस्तों के दबाव में क्यों आते हैं इस तरह बच्चे? वो क्यों नहीं समझते? जिस्म तो मेरा है, सेहत तो मेरी बिगड़ जाती है, लेकिन क्यों नहीं मैं समझ रही हूँ कि इससे मेरा ये मसला जो है, ये
1: वो मुतासिर हो जाते हैं उनसे, दोस्तों से मुतासिर, ये वो कर रहे, वो चीज कर रहे, हम भी यही करेंगे, वो इख्तियार कर लेते हैं वही रास्ता, उन्हीं का रास्ता।
0: तो कितना जरूरी है कि जो आपके दोस्त हैं, हमारे जो दोस्त हैं, हम कैसे मतलब इंतखाब कैसे करें, हम बच्चों का, दोस्तों का इंतखाब हम कैसे करेंगे?
1: हमें बहुत अच्छे दोस्तों का
0: इंतखाब करना चाहिए ताकि हमारी जिंदगी संवर जाए।
1: जी, इसलिए जरूरी है कि वालदैन, असातिज़ा और माशरा नौजवानों की सही रहनुमाई करें और उन्हें तंबाकू नोशी के नुकसानात से आगाह करें। तंबाकू नोशी के माशी नुकसानात,
0: अब हम देखेंगे कि माशी नुकसानात क्या है इसके, तंबाकू नोशी के। जी,
1: तंबाकू नोशी सिर्फ सेहत ही नहीं बल्कि मईशत को भी नुकसान पहुंचाती है।
0: सही बात है, सही बात है, बहुत नुकसान हो जाता है इससे।
1: एक शख्स रोजाना सिगरेट पर काफी पैसा खर्च करता है, अगर वही रकम तालीम, खुराक या किसी अच्छे काम पर खर्च की जाए तो फायदा हो सकता है।
0: बिल्कुल,
1: इसके अलावा तंबाकू से पैदा होने वाली बीमारियों के इलाज पर भी बहुत ज्यादा खर्च आता है।
0: सही बात है,
1: गरीब खानदानों के लिए ये एक बहुत बड़ा बोझ बन जाता है।
0: सही बात है, क्योंकि जो गरीब लोग होते हैं वो पैसे कहाँ से लाएं फिर इसके लिए, इलाज के लिए। इससे बेहतर था अगर वो इस आदत को तरक ही करें तो एक सेहतमंद माशरा वजूद में आएगा।
1: जी जी,
0: सेहतमंद लोग वजूद में आएंगे, सेहतमंद मतलब हर जगह अच्छी सोच होगी। बुराई आपने पहले ही डाली, जब पहले ही स्मोक में डाल दिया हमने अपने जहन में, तो वहाँ उगेगा क्या? हम सोचने के काबिल भी नहीं रहेंगे।
1: जी,
0: इन बातों का खास ख्याल रखना है।
1: इस्लाम और तंबाकू नोशी, इस्लाम हमें हर उस चीज से बचने की तालीम देता है जो इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह हो।
0: सही बात है,
1: तंबाकू नोशी इंसान की जान और सेहत को नुकसान पहुंचाती है, इसलिए बहुत से उलमा इसे नापसंदीदा या हराम करार देते हैं।
0: ये तो है ही हराम।
1: कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, और अपने आप को हलाकत में न डालो। इस आयत से मालूम होता है कि हमें हर उस अमल से बचना चाहिए जो हमारी सेहत और जिंदगी के लिए नुकसानदेह हो।
0: सही बात है, सही बात है, हमें इन बातों का खास ख्याल रखना है।
1: आलमी यौम तंबाकू नोशी की अहमियत,
0: हाँ जी, ये जो दिन, खास दिन मना

0: जाता है।
1: तंबाकू नोशी से बचाव के तरीके,
0: किस तरह से हम बचा सकते हैं, मतलब तरीका कौन सा है?
1: अच्छी सोहबत इख्तियार करें।
0: इससे पहले भी हमने इस बात का जिक्र छेड़ा है कि अच्छी सोहबत इख्तियार करना बहुत जरूरी है
1: जी।
0: अपने दोस्तों को, ऐसे दोस्तों को चुनना है जो मतलब पाक हों
1: जी, बिल्कुल, जो हर मर्ज से दूर हो।
0: जी जी जी, बुराइयों से दूर हों, हर मर्ज से पाक हों, उन्हीं दोस्तों का इंतखाब करना है, क्योंकि सभी बच्चे जानते हैं कि हमारे दोस्त कैसे हैं।
1: जी बिल्कुल। खेलकूद और वर्जिश,
0: ये तो बहुत जरूरी है, खेल कूद और वर्जिश बहुत जरूरी है। सुबह उठना, जागना, ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप मॉर्निंग में उठते हैं एक नींद से, आप जाग जाते हैं, एक अजां आपको जगाती है, आप उठो उठो, आप फिर अपना अपने अपने तरीके से सभी ऊपर वाले को पूछते हैं
1: जी।
0: तो उसके बाद आप जाएं, आप वर्जिश करें
1: जी, जी,
0: आप दौड़ लगाएं
1: जी,
0: आप वॉक पे जाएं। वो मेरे लिए नहीं है, वो आपको अपने लिए है
1: जी, बिल्कुल,
0: क्योंकि उसके रिजल्ट्स आगे जाके आते ही हैं
1: जी,
0: उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं।
1: आगाही पैदा करना,
0: आगाही पैदा करना इसी हवाले से कि हम किस तरह से अपनी जिंदगी को इन बुरी चीजों से, बुरी बातों से दूर रख सकते हैं।
1: खानदानी ताउन, अगर कोई शख्स सिगरेट छोड़ना चाहता हो तो खानदान को इसकी मदद करनी चाहिए।
0: सही बात है, क्योंकि जो सपोर्ट है, सपोर्ट पैरेंटल सपोर्ट हो, सपोर्ट भाई बहनों का सपोर्ट हो,
1: सोसाइटी का,
0: सपोर्ट दोस्तों का हो, सपोर्ट सोसाइटी को हो, जब ये सब आपको सपोर्ट करेंगे, ये सब ही हमें सपोर्ट करेंगे, कोई ऐसी आदत नहीं है जो ना छूटे। हर कोई आदत छूट सकती है, लेकिन पैरेंटल सपोर्ट, सपोर्ट लाजमी है, दोस्तों का, अपने जो हमसाइयों का, अपने समाज का, हर चीज का, हर बात का, हर बंदे बंदे का सपोर्ट लाजमी है। अपने दोस्तों का सपोर्ट बहुत जरूरी है।
1: हुकूमती इकदामात
0: जी,
1: हुकूमत को चाहिए कि तंबाकू की तशहीर पर पाबंदी लगाए और आवामी मकामात पर सिगरेट नोशी रोकने के कानून सख्त करे।
0: सही बात है।
1: सिगरेट छोड़ने के फवायद,
0: अब हम फवायद पे आते हैं
1: जी। अगर कोई शख्स तंबाकू नोशी छोड़ दे तो उसकी जिंदगी बेहतर हो सकती है।
0: बिल्कुल सही है, अच्छी बात है।
1: सेहत भी बेहतर हो सकती है, सांस लेने में भी आसानी हो सकती है, दिल की बीमारियों का खतरा भी कम हो सकता है,
0: जो कि आजकल हार्ट अटैक्स आप सुनते रहते हैं कि बंदा सो गया था, सुबह उठा ही नहीं, क्यों, ऐसी क्या बात हुई, ऐसा ये हुआ कि हार्ट अटैक हो गया, क्यों हुआ, कैसे हुआ। हमें उन बातों की तरफ ध्यान देना है, गौर करना है, ऐसा क्यों हो रहा है हमारी जिंदगी के साथ। छोटे छोटे बच्चे, बहुत बहुत कम उम्र के बच्चे हार्ट अटैक के शिकार हो जाते हैं। जहां भी नजर दौड़ाएं हम देखते हैं कि एक स्टेंट लगा हुआ है, इधर नजर दौड़ाएं तो दो स्टेंट लगे हुए हैं, हर जगह ऐसा है, हर बात पे, हर मोड़ पे। क्यों ऐसा होता है, क्यों हमारे जो बच्चे हैं क्यों नहीं समझ सकते, क्यों नहीं समझ पाते ऐसी बातों को जो उनकी सेहत के लिए बहुत बहुत बुरा है, जो बुरी चीज है, उनकी सेहत को बनाने के बजाय बिगाड़ ही देती है।
1: जी बिल्कुल। इसी तरह पैसे की बचत हो सकती है, अगर हम सिगरेट छोड़ देंगे तो पैसे की बचत भी हो सकती है। इंसान लंबी और सेहतमंद जिंदगी गुजार सकता है।
0: बिल्कुल, और आसान जिंदगी
1: जी।
0: कहते हैं ना कि लोगों, जो लोग होते हैं उनके लिए आसानियां पैदा करो, आसानियां पैदा करो कि इस हवाले से जहां कहीं भी आपकी मदद जरूरत हो तो आप उनकी मदद करें।
1: जी बिल्कुल। तंबाकू नोशी एक खतरनाक आदत है जो इंसान की सेहत, दौलत और जिंदगी को तबाह कर देती है। आलमी यौम तंबाकू नोशी हमें ये पैगाम देता है कि हमें खुद भी इस बुरी आदत से बचना चाहिए और दूसरों को भी इससे दूर रखने की तलकीन करनी चाहिए।
0: सही बात है।
1: नौजवान नस्ल हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है, इसलिए इन्हें तंबाकू नोशी जैसे नशों से बचना बहुत जरूरी है। अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो एक सेहतमंद और खुशहाल माशरा कायम किया जा सकता है।
0: बिल्कुल सही।
1: आखिर में हमें ये अहद करना चाहिए कि हम न सिर्फ खुद को तंबाकू नोशी से दूर रखें, बल्कि अपने दोस्तों, खानदान और माशरे को भी इसके नुकसान से आगाह करें, ताकि एक बेहतर और सेहतमंद दुनिया बनाई जा सके।
0: हाँ फुरकान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने किस तरह से हमारी जिंदगी आसान बन सकती है, किस तरह से हम अपनी जिंदगी को आसान बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, सेहतमंद बना सकते हैं। आपने जो इसका जिक्र छेड़ा कि तंबाकू नोशी से हम तबाह हो सकते हैं, हमें छोड़ना चाहिए, लेकिन उसके लिए वाकई एक अहद करना चाहिए हमें कि ऐसी बुरी चीजें हमारी जिंदगी में नहीं होनी चाहिए।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: ہمیں اچھے کاموں کی طرف راغب ہونا ہے.
1: بالکل.
0: جو بچے ہیں ان میں اویئرنیس پیدا کرنا ہے,
1: نہ
0: صرف بچوں کے لیے, یہ ہماری جو سوسائٹی میں رہنے والے لوگ ہیں, بڑے ہیں, بوڑھے ہیں, بزرگ ہیں, چھوٹے ہیں, لڑکے ہیں, لڑکیاں ہیں, ان تک یہ پیغام ضروری پہنچانا ہے کہ اپنی زندگی کو بچانے کی کوشش کریں ہمیشہ.
1: جی جی.
0: کیونکہ اس کے بغیر اوپر والے نے یہ بہت بڑی جو نعمت بخشی ہے ہمیں, زندگی عطا کی ہے ہمارے لیے, اس کو

आप समाप्त कर रहे थे प्रोग्राम बजमनिस्वा, पेशकश समीना शाह। यह आवाज़ है आकाशवाणी श्रीनगर की। दिन का एक बजा चाहता है, थोड़ी देर बाद आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी और अंग्रेजी खबरों का बुलेटिन नष्ट होगा। खबरों का जरा सा इंतज़ार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति के रूप में उनकी ये पहली भारत यात्रा है। म्यांमार के राष्ट्रपति ने गया में महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद वे नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनका आज शाम विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात का कार्यक्रम है। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में भाग लेंगे। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस संबंध में जानकारी दी।
1: He'll be meeting our Prime Minister and where both leaders...
2: म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है, जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
1: This is official visit.
0: कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया आज शाम विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धरमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। उन्हें नए नेता के चुने जाने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने का निर्देश दिया है। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू हो गया है। 1 महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की यह प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून

0: से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों के उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। मंत्रालय द्वारा ये सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया है। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि यह उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
1: मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
0: लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि उनका स्थान लेंगे। सिंगापुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान के शांग्रीला संवाद के दौरान रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने नीदरलैंड की रक्षा मंत्री दिलेन येसिलगो जेगेरियस के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वार्ता में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ाने, सैन्य संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये भारत और नीदरलैंड्स के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों में निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचों और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और तेलंगाना में आज लू चल सकती है। उधर बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया है और परिजनों को 4 लाख रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है। गुजरात टाइटंस आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच कल अहमदाबाद में फाइनल मैच 7:30 से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Chief of Army Staff General Upendra Dwivedi today said that Indian Armed Forces remain on high operational alert and are prepared for Operation Sindoor 2.0 if the situation warrants further military action. Addressing the passing out parade of the 150th course at the National Defence Academy in Kharagwasla, Pune, General Dwivedi said that Operation Sindoor demonstrated India's ability to respond to provocation with precision and resolve, setting a benchmark for the country's response to emerging security challenges.
3: As far as Operation Sindoor is concerned, firstly, it is still continuing. There is temporary cessation of hostilities. So the Indian Army or all the three services are preparing well for Operation Sindoor 2.0 if it takes place. Presently, we are looking at enhancing our synergy within the three services. We are looking at equipping ourselves for the next warfare. As I have told you, the next warfare will not be limited to the land, maritime and air alone. The new entries, that is the space, cyber and cognitive warfare, will play a very important role.
2: Myanmar President U Min Aung Hlaing arrived in Bodh Gaya today as part of his 5-day visit to India. During the visit, he offered prayers at the world-renowned Mahabodhi Temple and the historic Sujata Temple. The president is also scheduled to visit various Myanmar Buddhist monasteries in Bodh Gaya. Earlier, Bihar Agriculture Minister Vijay Kumar Sinha accorded a warm welcome to President U Min Aung Hlaing at Gaya Airport. The Karnataka Congress Legislature Party is scheduled to meet in Bangalore at 4 p.m. today to elect its new leader to succeed the outgoing Chief Minister, Mr. Siddaramaiah. Governor Thavarchand Gehlot has already accepted the resignation of Mr. Siddaramaiah, asking him to act as a caretaker until a new incumbent is chosen. The 136 Congress MLAs have been asked to attend the CLP meeting.

जय हिंद फौजी बाजू। फौजी बाजू फिल्म गीतों का प्रोग्राम लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं रिफ्यूजी फिल्म के इस नगमे से, जिसे गाया है सोनू निगम और अलका याग्निक ने।

जी दोस्तों, अब आइए सुनते हैं उदित नारायण, अलका याग्निक और मनप्रीत कौर को। यह फिल्म कुछ कुछ होता है।

जी दोस्तों, आपको बताते चले फिल्मी नगमे आप इस वक्त आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से समाप्त कर रहे हैं। अब आइए लता मंगेशकर और उदित नारायण को सुनते हैं, यह फिल्म दिल तो पागल है।

0: जी दोस्तों, फिल्मी नग भी जारी है। पहले ही वक्फा।
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच, आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।

जी दोस्तों, प्रोग्राम के आखिर पे अब आइए अनुराधा पौडवाल और हरिहरन को सुनते हैं, यह फिल्म सिर्फ तुम।

आप समाप्त कर रहे थे फिल्मी नगमे। यह आकाशवाणी श्रीनगर है। 1:50 हो रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद आकाशवाणी दिल्ली से उर्दू और अंग्रेजी खबरों का बुलेटिन नेश होगा। खबरों का जरा सा इंतजार।

आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं माजिद अली। फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो भारतीय फौज ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे मरहले के लिए तैयार है। म्यांमार के सदर ऊ मिन आउ लाइन ने बोधगया में महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना के साथ अपना 5 दिन का भारत का दौरा शुरू कर दिया है। कर्नाटक कांग्रेस कानून साज पार्टी अपना नया लीडर मुंतखब करने के लिए आज मीटिंग करेगी। बिहार में तूफानी हवाओं, शदीद बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग वाकयात में कम से कम 7 अफराद हलाक हुए हैं। और अमरीका के वजीर दिफा पीट हेक्सेट ने कहा है कि ईरान के साथ कोई मुआहदा ना होने की सूरत में अमरीका ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। अब खबरें तफसील से। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज कहा है कि अगर हालात का तकाजा हुआ तो भारतीय फौज कार्रवाई के लिए हाई अलर्ट पर और ऑपरेशन सिंदूर 2 के लिए तैयार है। पुणे के खड़कवासला नेशनल डिफेंस एकेडमी में 150वें कोर के पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुरुस्तगी और अजम के साथ इश्तआल अंगेजी का जवाब देने में भारत की सलाहियतों का मुजाहरा किया है और उभरती हुई सिक्योरिटी चैलेंजों से निपटने में मुल्क के लिए एक मेयार कायम किया है। जनरल द्विवेदी ने मजीद कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने मुल्क के मुस्तहकम अज़्म और मुसल्लह अफवाज के दरमियान हम आहंगी की अहमियत का मुजाहरा किया है। जनरल द्विवेदी ने ग्रेजुएट कैडेट से अपील की कि वो प्रोफेशनलिज्म के आला मेयार, क़यादत और मुल्क की खिदमत के जज्बे को कायम रखें। उन्होंने उभरती हुई सिक्योरिटी की सूरत हाल में मुस्बत नुक्ता नज़र अपनाने और सीखने के अमल को जारी रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने मजीद कहा कि जवानों के एतमाद और भरोसे पर मौसर क़यादत की तामीर होती है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली के कौमी जंगी यादगार में तीनों फौजों का यादगार गार्ड ऑफ ऑनर हासिल करने के बाद कौमी खिदमात को अलविदा कहा। इस तकरीब में मुल्क में आला फौजी अफसर के तौर पर उनकी मुमताज खिदमात को याद किया गया। जंगी यादगार में गुलदायरा पेश करने के बाद जनरल चौहान ने कहा कि तीनों फौजों का गार्ड ऑफ ऑनर हासिल करना उनके लिए बड़े फख्र की बात है। 4 दहाइयों से ज़्यादा मुश्तमिल खिदमात के बाद एक आम शहरी के तौर पर तब्दीली को बयान करते हुए जनाब चौहान ने अपनी खिदमात को इत्मीनान बख्श बताया। 1981 में भारतीय फौज में शामिल होने के बाद जनाब चौहान ने मुल्क की 40 साल से ज़्यादा खिदमत की और अपने पुरकशिश

0: करियर के दौरान कई अहम ओहदों पर फायज रहे। उन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से नवाजा गया। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी जनरल चौहान की जगह लेंगे। पनाजी की कला एकेडमी में आज गोवा का 40वां योम तासीस मनाया गया। तकरीब से खिताब करते हुए नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन ने गोवा को एक मिसाली रियासत बताया, जहां तरक्की के साथ साथ उसकी मालामाल सकाफती विरसे में तवाजुन बरकरार रखा गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि गोवा इस बात की एक अच्छी मिसाल है कि किस तरह अपनी पहचान और तरक्की एक साथ चल सकती है। उन्होंने कहा कि गोवा ने जदीद तरक्की हासिल करते हुए अपनी सकाफती बुनियादों को भी कायम रखा है। नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि गोवा एक सियाहती मकाम से कहीं बढ़कर जगह है। उन्होंने गोवा को एक जिंदा तहजीब बताया, जहां सकाफती तबादला, समाजी हमाहंगी और खुला जहन पाया जाता है। उन्होंने खानदगी, सेहत, खिदमात और माहौल के बारे में बेदारी और इंसानी तरक्की के शोबों में रियासत की हौसूलियाबी की तारीफ की। पनाजी से महेश की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम।
0: इम्तहानात से मुतालिक कौमी एजेंसी NTA ने कहा है कि उसकी तकनीकी शरीककार TCS की फनी खराबी की वजह से आज उसके कुछ इम्तहानी मराकज में कॉमन यूनिवर्सिटी दाखिला टेस्ट CUET UG 2026 के शुरू होने में ताखीर हुई। NTA ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि इस मसले को हल कर लिया गया है और इम्तहानात जारी हैं और उम्मीदवारों को पूरा वक्त दिया जाएगा ताकि उन्हें कोई नुकसान न उठाना पड़े। एजेंसी ने यह भी बताया है कि बाद दोपहर शुरू होने वाले इम्तहानात के वक्त में रद्दोबदल किया गया है। उम्मीदवारों को 2:30 बजे से दाखिले की इजाज़त दी जाएगी, जबकि इम्तहान 3 बजे के बजाय 4 बजे शुरू होगा। NTA ने मजीद कहा है कि सुबह के इम्तहान में बैठने वाले उम्मीदवारों को पूरा वक्त दिया जाएगा और उन्हें पेपर मुकम्मल होने के बाद ही जाने की इजाज़त दी जाएगी। एजेंसी ने तलबा और वालदेन को परेशानी होने के लिए अफसोस का इजहार किया है। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने खानदानी सेहत का 6वां कौमी जायजा जारी किया है, जिसमें आदादशुमार से माँ और बच्चे की सेहत, तगजिए और माली सेहत तहफ्फुज के मैदान में भारत की खातिरखा तरक्की का पता चलता है। यह 6वां कौमी जायजा सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत के जरिए 2023-24 के दौरान किया गया था। इस जायजे में 715 अजला पर मुश्तमिल 6,79,000 घरानों को शामिल किया गया था। जम्मू कश्मीर में बैनुल अक्वामी सरहद के पास रह रहे लोगों ने मरकज के उस फैसले का खैर मकदम किया है, जिसमें सरहद से 15 किलोमीटर के अंदर गैर कानूनी तामीरात और गैर कानूनी कार्रवाइयां हटाए जाने की बात कही गई है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने हाल ही में एक आला सतह की सिक्योरिटी जायजा मीटिंग के दौरान यह फैसला किया था। अरनिया, आरएसपुरा और सुचेतगढ़ समेत सरहदी इलाके के लोगों ने इस अमल में अपनी हिमायत का इजहार किया और कहा है कि ऐसी कोई भी कार्रवाई जो मुल्क की सिक्योरिटी के लिए खतरा हो, उसके साथ सख्ती से पेश आना चाहिए। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। म्यांमार के सदर ऊ मिन आउ लाइन आज बोधगया में महाबोधि मंदिर गए और वहां पूजा अर्चना की। उन्होंने उस बोधि पेड़ के नीचे मराकबा किया, जिस पेड़ के बारे में मशहूर है कि भगवान बुद्ध ने निर्वाण हासिल किया था। अपने दौरे के दौरान म्यांमार के सदर तारीखी बकरोर के सुजाता मंदिर गए और बोधगया की बर्मी मोनेस्ट्री का भी दौरा किया। उनके हमराह एक आला सतह का वफद भी है, जो बहुत से काबीना वजीरों, सीनियर अफसरों और सरकर्दा ताजिरों पर मुश्तमिल है। सदर ऊ मिन का उनकी मौजूदा हैसियत से भारत का ये पहला दौरा है। कर्नाटक कांग्रेस कानून साज पार्टी की आज से पहर 4 बजे मीटिंग होना मुतवक्के है, जिसमें सुबुकदोश होने वाले वजीर आला जनाब सिद्धरमैया के बाद नए लीडर का इंतखाब किया जाएगा। गवर्नर थावरचंद गहलोत ने जनाब सिद्धरमैया का इस्तीफा पहले ही कबूल कर लिया है और उनसे नए लीडर के इंतखाब तक कारगुजार वजीर आला के तौर पर काम करने को कहा है। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि जनाब DK शिव कुमार को बाजाब्ता तौर पर कांग्रेस कानून साज पार्टी का नया लीडर बनाए जाने की तवक्को है। कांग्रेस के 136 मेंबरान असेंबली से CLP मीटिंग में शिरकत करने को कहा गया है। बिहार में गरज चमक, शदीद बारिश और बिजली गिरने के कई वाकयात में कम से कम 7 अफराद हलाक हो गए हैं। हमारे नामानिगार से मौसूला रिपोर्ट के मुताबिक बिजली गिरने के वाकयात में गया में 3 अमवात हुई हैं, जबकि औरंगाबाद

0: बाद से दो अमवात की खबर मौसूल हुई है। दरियासना, सरन और खगड़िया जिला से एक एक मौत की रिपोर्ट मौसूल हुई है। गरज चमक और बिजली गिरने के वाकयात में हुई अमवात पर अफसोस का इजहार करते हुए वजीर आला सम्राट चौधरी ने मरने वालों के लवाहिकीन के लिए 4-4 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान किया है। अकलियतों के उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने आज बताया कि भारतीय हज मिशन को सऊदी अरब की हज और उमरा की वजारत की तरफ से पहली मरतबा दो बावकार लब्बैतुम अवार्ड्स हासिल हुए हैं। ये अवार्ड्स हज के प्रोग्राम को खुश असलूबी के साथ कराए जाने पर दिए गए हैं। अमरीका के वजीर दिफा पीट हेक्सेट ने कहा है कि ईरान के साथ कोई मुआहदा न होने की सूरत में अमरीका फिर से फौजी कार्रवाई शुरू करेगा। एशिया की अहम सिक्योरिटी फोरम शेंगरीला डायलॉग से खिताब करते हुए जनाब हेक्सेट ने कहा कि अमरीका के खित्ते में और पूरी दुनिया में फौजी मौजूदगी है और वो ज़रूरत पड़ने पर इस तरह की कार्रवाइयां अंजाम दे सकता है। उन्होंने कहा कि अमरीका किसी भी नागहानी सूरत का जवाब देने की अच्छी पोजिशन में है। अमरीका के वजीर दिफा ने इस बात पर भी जोर दिया कि ईरान के साथ तनाज़े के बावजूद अमरीका एशिया बहरुलकाहिल खित्ते के लिए पाबंद अहद है। और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो भारतीय फौज ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे मरहले के लिए तैयार है। म्यांमार के सदर उमिनाउ लाइन ने बोधगया में महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना के साथ अपना 5 दिन का भारत का दौरा शुरू कर दिया है। कर्नाटक कांग्रेस कानून साज पार्टी अपना नया लीडर मुंतखब करने के लिए आज मीटिंग करेगी। बिहार में तूफानी हवाओं, शदीद बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग वाकयात में कम 7 अफराद हलाक हुए हैं। और अमरीका के वजीर दिफा पीट हेक्सेट ने कहा है कि ईरान के साथ कोई मुआहदा ना होने की सूरत में अमरीका ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम शगुन चोपड़ा विद द मिड डे न्यूज। The headlines. Indian Army prepared for Operation Sindoor 2.0 if the situation warrants, says Chief of Army Staff General Upendra Dwivedi. Myanmar President U Min Aung Hlaing begins his 5-day India visit with prayers at Mahabodhi Temple in Bodh Gaya, Bihar. Karnataka Congress Legislature Party to meet in Bangalore this afternoon to elect its new leader. At least 7 people killed in separate incidents of thunderstorms, rain and lightning across Bihar. US Defense Secretary Pete Hegseth says Washington is prepared to resume military action against Iran if efforts to reach a deal fail. And in women's cricket, India to take on hosts England in second T20 international 3-match series in Bristol today. And now the news in detail. Chief of Army Staff General Upendra Dwivedi today said that the Indian Armed Forces remain on high operational alert and are prepared for Operation Sindoor 2.0 if the situation warrants further military action. Addressing the passing out parade of the 150th Corps at the National Defence Academy in Kharakwasla, Pune, General Dwivedi said that Operation Sindoor demonstrated India's ability to respond to provocation with precision and resolve, setting a benchmark for the country's response to emerging security challenges. General Dwivedi said Operation Sindoor reflected the nation's resolve and underscored the importance of synergy among the armed forces.
2: As far as Operation Sindoor is concerned, firstly, it is still continuing. There is temporary cessation of hostilities. So the Indian Army or all the three services are preparing well for Operation Sindoor 2.0 if it takes place. Presently, we are looking at enhancing our synergy within the three services. We are looking at equipping ourselves for the next warfare. As I have told you, the next warfare will not be limited to the land, maritime and air alone. The new entries, that is the space, cyber and cognitive warfare, will play a very important role.
1: President of Myanmar U Min Aung Hlaing arrived today at Gaya in Bihar on a 5-day visit to India. He visited the world-renowned Mahabodhi Temple in Bodh Gaya and offered prayers at the sacred Buddhist site. He also meditated under the revered Bodhi tree where Lord Buddha is believed to have attained enlightenment. During his visit, the Myanmar president paid obeisance at the historic Sujata Temple in Bakaror and visited the Burmese monastery in Bodh Gaya. President U Min Aung Hlaing will arrive in

तारों में चमक, फूलों में रंगत ना रहेगी। अरे कुछ भी ना रहेगा अगर मोहब्बत ना रहेगी।

जी समीन, आपने कुमार शानू, अलका याग्निक और साथियों को सुना। फिल्म का नाम था हम हैं राही प्यार के। अब आइए एक बार फिर कुमार शानू को सुनते हैं। यह है फिल्म चाहत।

हाय हमें यूं देखना, ऐसा ना हो बदनाम हो जाए, ये मुमकिन है इसी का कल

आप समाप्त कर रहे थे फिल्मी नगमी। यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। हमारा अगला ऐलान सुनिए।

Samuel mutrum tuzva chakrtir hubozam, sadakaras, Ali Muhammad Sheikh tihin sathi, imanish buzutai kalami Ahmed Dar. Ishakashwani Srinagar, Sanya Dumalanu Kuruhana Intasar. ये आवाज है आकाशवाणी श्रीनगर की मीडियम वे 268.8 मीटर और एफएम 203.5 मेगाहर्ट्ज पर सफर के 3 बज चुके हैं। पेशकश है फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत का प्रोग्राम।

जी दोस्तों, अब आइए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की मौसिकी में आनंद बख्शी का लिखा नगमा सुनते हैं। यह है फिल्म आसपास, आवाज़ लता मंगेशकर की।

जी दोस्तों, आपको बताते चले, फिल्मी नगमे आप इस वक्त आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से समाप्त कर रहे हैं आपके अपने प्रोग्राम में, यानी फौजी भाइयों के प्रोग्राम में।

जी दोस्तों, अब आइए मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर को सुनते हैं। यह है फिल्म सूरज। इस गीत को तहरीर किया है हसरत जयपुरी ने और सुरू से सजाया है शंकर जैक्सन ने।

0: साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
1: अरे माँ देखो एक्सीडेंट, रुकना पड़ेगा, मैं मदद करके आता हूँ।
2: रहने दे बेटा, इतनी झंझट में क्यों फंसना? पुलिस केस हो गया तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने पड़ेंगे।
1: नहीं माँ, अब ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट की पीएम राहत स्कीम आ गई है, ये गोल्डन आर है माँ, अभी मदद मिल जाएगी तो इसकी जान बच जाएगी।
2: पर बेटा, हॉस्पिटल जाते ही वो एडवांस पैसे मांगेंगे, कहाँ से आएंगे इतने पैसे?
1: माँ इसमें कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है, 1.5 लाख तक का इलाज और 7 दिन का खर्चा सरकार देगी, 1 रुपया एडवांस नहीं देना पड़ेगा।
2: और वो पुलिस, वो तो तुझे तंग करेंगे ना कि कैसे हुआ, कहाँ से लाया।
1: माँ अब 7 रूल्स हैं, नो हरासमेंट, मदद करने वाले को राहवीर माना जाता है, मुजरिम नहीं, पुलिस परेशान नहीं कर सकती।
2: सच में? फिर तो बेटा देरी मत कर, जल्दी जा।
1: हाँ माँ, आप बस 112 डायल करके एम्बुलेंस बुला लो, पेपर वर्क अब सिस्टम हैंडल करेगा, हमें बस इंसानियत दिखानी है।
2: शुक्र है, अब डर या पैसे की वजह से किसी की जान नहीं जाएगी।
1: वही तो माँ, पीएम राहत, इलाज पहले पैसे बाद में, 112 डायल करें, जिंदगी बचाएं।
3: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू एंड कश्मीर।
4: जी दोस्तों, प्रोग्राम में आपका फिर से खैर मकदम है।

जी दोस्तों, अब आइए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की मौसिकी में आनंद बख्शी का लिखा ये नगमा सुनते हैं। आवाज़ें हैं अनुराधा पौडवाल, मनहर और सुखविंदर सिंह की। फिल्म का नाम है कर्मा।

जिन दोस्तों ने अभी अभी अपने रेडियो सेट्स ऑन किए हैं उनको बताते चले, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन। इसके अलावा आप हमें डीटीएच या एआर लाइव मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। प्रोग्राम का अगला नगमा हमने लिया है फन चोर मचाए शोर फिल्म से, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने।

जी दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के गाए इस नगमे के साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी मुकम्मल हुआ जाता है। इजाज़त दीजिए। जय हिंद।

0: ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। सफर के 3:50 हो रहे हैं। आइए अब उर्दू खबरों का बुलेटिन समाप्त करते हैं।
1: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। सपहर के 3:50 हुए हैं। खबरनामा लेकर मैं सैयद तजम्मुल कादरी। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। श्रीनगर में दो रोजा कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने किया इफ्तिताह। भारतीय फौज किसी भी सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए तैयार, एनडीए पासिंग आउट परेड से फौज के सरबराह का खिताब। मरकज में एनडीए सरकार के 12 साल मुकम्मल, कई शोबों में वाज़ह तरक्की दर्ज। और वज़ीर आज़म कल करेंगे मन की बात प्रोग्राम में कई मौजूदात पर इजहार ख्याल। अब खबरें तफसील के साथ। SKICC श्रीनगर में आज से दो रोजा कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल के तीसरे शुमारे का आगाज हुआ। फेस्टिवल का इफ्तिताह लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया। उन्होंने अदीबों और कलमकारों से ताकीद की कि वो अपनी तख्लीकात के जरिए मस्बत सोच और रवादारी को फरोग दें। उन्होंने कहा कि हमें अपनी तारीख का तहफ्फुज़ यकीनी बनाना चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस मौके पर पद्मश्री प्रोफेसर शफी शौक और दीगर कई शख्सियात की इज्जत अफजाई भी की। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने गोवा के स्टेटहुड डे पर वहां के लोगों को मुबारकबाद दी है। एक पैगाम में एलजी ने कहा कि कुदरती खूबसूरती और गुनागुन सकाफती विरसे से मालामाल इस रियासत ने बहुत सारे शोबों में अपनी एक मुनफरिद शिनाख्त कायम की है। भारतीय फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि मुल्क के अफवाज इंतहाई चौकस और मुस्तैद हैं और जरूरत पड़ने की सूरत में ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा मरहला अंजाम देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे की 150वीं पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले मरहले से भारतीय अफवाज के नज्म जब्त और आपसी तालमेल का मुजाहरा हुआ। उन्होंने तरबियत मुकम्मल करने वाले फौजी जवानों से तलकीन की कि वो अपने फराइज लगन और तनदेही के साथ अंजाम दें।
2: As far as Operation Sindoor is concerned, firstly, it is still continuing. There is temporary cessation of hostilities. So the Indian Army or all the three services are preparing well for Operation Sindoor 2.0 if it takes place. Presently, we are looking at enhancing our synergy within the three services. We are looking at equipping ourselves for the next warfare. As I have told you, the next warfare will not be limited to the land, maritime and air alone. The new entries, that is the space, cyber and cognitive warfare, will play a very important role.
1: मरकज में एनडीए सरकार के 12 साल मुकम्मल होने के बाद मुल्क के बेशतर हिस्सों में तामीर और तरक्की के समरात साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। 12 साल के इस अरसे में भारत ने सियासी, समाजी, मईशत, बुनियादी ढांचे और आलमी सतह के महाज पर मुख्तलिफ शोबों में कामयाबियों के कई पायदान तय किए हैं। इस सिलसिले में प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान भारत नाम की योजना काबिल जिक्र है, जिसकी अमलावरी के आम लोग काफी मुतमईन नजर आ रहे हैं। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर से बात करते हुए ये है एक शहरी के तासुरात।
3: मैं फैयाज़ अहमद बारामूला से। मैं एनडीए सरकार और मोदी जी का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत सारी जो स्कीमें चलाई, जिसमें पहली बार एक गरीब को सीधा बरह रास्त फायदा पहुंचा डिजिटलाइजेशन के जरिए। जब से आयुष्मान भारत स्कीम को मोदी जी ने लॉन्च करा है, जब कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको भरपूर और आला मयारी इलाज बेहतरीन अस्पताल में मिलता है और राइट टाइम पर मिलता है, कोई क्यू में रहना नहीं पड़ता। तो इस तरीके से मुल्क के करोड़ों लोगों को फायदा पहुंचा है। डिजिटलाइजेशन ने मुल्क के अंदर इनकलाब किया और ट्रांसपेरेंसी को आसमान तक पहुंचाया। मैं कहूंगा मोदी जी तो अपने आवाम का एक बेहतरीन कस्टमर।

0: ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। सफर के 4 बज चुके हैं। एक वक्फे के बाद पेश है आज का पहाड़ी प्रोग्राम।
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।

आकाशवाणी केंद्र श्रीनगर तू अज दा पाड़ी प्रोग्राम केनका मैं हाँ तुस्ती मेजबान गजाला मुमताज सामीन तुसा सारियां को प्रोग्राम भी जी आया को आखती हाँ हर कदे आओ ते प्रोग्राम दी शान बधाओ। सामीन असी अजकल देख रहे हैं कि असते निके बच्चे जड़े हैं वह मनशियातदार ज़्यादा उनका खिंचाव आ। उसकी एक वजह यह भी आ कि असी अपने बच्चों को चंगी तरह चैक नहीं करते, दिखते नहीं असते बच्चे कुथा उठते हैं, कुथा बिजते हैं, कड़ी कंपनी बिच उठते हैं, और नाले कुछ घर के अंदर के जड़े टेंशन सन जड़े असी बच्चों सामने कुछ चीज़ा डिस्कस करते हैं या कुछ चीज़ा बच्चों सामने आनते हैं उस दी वजह नाल भी बच्चे दा तवाजुन जड़ा आ जहनी तौर वह गुम गेंदा, जिस दी वजह नाल बच्चा इन्हां चीज़ां दा ज़्यादा खिंचे गेंदा या उसका खिंचाव इन्हां चीज़ां दा रोंदा कि मैं कोई ऐसा नशा करा जिस दी वजह नाल जहन जड़ा आ वह सुकून पावा। सामीन असां को ये चीज़ां जड़ियां हैं इस बीच काफ़ी ज़्यादा सोचे की जरूरत आ, क्योंकि ये सिर्फ गल इत्थां तों ही नहीं कि असदा बच्चा सिगरेट या बीड़ी पीना स्टार्ट कर सीगा। अजकल दी दौर बिच सिगरेट बीड़ी काफ़ी निक्कियां चीज़ां हैं, असदा बच्चा जड़ा आ वह इस तो काफ़ी अगा निकल का ड्रग्स दे इन्फ्लुएंस बिच गज सकता, ड्रग्स यूज़ कर सकता। लिहाजा असां को चाहिदा कि असी अपने बच्चे को एक साफ शफाफ माहौल घर दे अंदर देवा और एक ऐसा माहौल देवा जड़ा बच्चे को टेंशन ना देवा, और नाले अपने बच्चे पर नज़र भी रखा। जरूरी नहीं कि टेंशन कार दे अंदर नहीं तस्ता बच्चा जड़ा है इन्हां गंदियां आदतों बिच नहीं पे सकता, बिल्कुल पे सकता वो इस वास्ते कि वो जिन्हां नाल उठता बिजदा है उन्हां दी संगत दा उन दी सोबत दा असर भी इस बच्चे पर पे सकता। लिहाजा एज वालदेन असां को चाहिदा कि असी काफ़ी ज़्यादा विजिलेंट रहवा और असी अपने बच्चे की कोई भी ऐसी हरकत अगर दिखते हैं तो असी उस पर फौरन एक्शन करा। तो सामीन आओ प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं इस गज़ल नाल आवाज़ अनायतुल्ला खान होरां दी ते कलाम अब्दुल रूफ कुरैशी होरां दा।

0: गरीब को सीधा बरह रास्त फायदा पहुंचा डिजिटलाइजेशन के जरिए। जब से आयुष्मान भारत स्कीम को मोदी जी ने लॉन्च करा है, जब कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको भरपूर और आला मयारी इलाज बेहतरीन अस्पताल में मिलता है और राइट टाइम पे मिलता है, कोई क्यू में रहना नहीं पड़ता। तो इस तरीके से मुल्क के करोड़ों लोगों को फायदा पहुंचा है। डिजिटलाइजेशन ने मुल्क के अंदर इनकलाब किया और ट्रांसपेरेंसी को आसमान तक पहुंचाया। मैं कहूंगा मोदी जी तो अपने आवाम का एक बेहतरीन कस्टोडियन है।
1: तालीम दे मरकजी वजीर धर्मिंदर प्रधान सुन आखिया है जी नीट पेपर लीक दा हालिया मामला मुची अफसोसनाक है। डीडी न्यूज दे नाल एक खसूसी इंटरव्यू बिच उन्हें सुन यकीन दिता जे एना वाले त्याड़ियां बिच आना वाले नवे इम्तिहान दा अमल मुनासिब और मुनाजम अंदाज बिच बगैर किसी खामी दे मुकम्मल कीते जुलसी।
2: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है और री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
1: ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ ਆਨ AIR ਔਰ DTH ਉਤਾ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਹਿਕਮਾ ਤਾਲੀਮ ਸੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ UG ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦਰਖਾਸਤ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਲਨੇ ਔਰ ਕਾਲਜ ਤਰਜੀਹਾਤ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਤੋਸੀਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਹਿਕਮਾ ਆਲਾ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅੱਜ ਨੁਮਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਣੀ ਦਾਖਲਾ ਪੋਰਟਲ JKAdmissions.in ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਾਲਜਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ੇਖ ਏਜਾਜ਼ ਬਸ਼ੀਰ ਸੁਣ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਨਿਊਜ਼ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਆਖਿਆ।
3: जो लास्ट डेट था सबमिशन ऑफ फॉर्म वो 27 5 बजे तक था, अभी हमने उसको एक्सटेंड कर दिया है। हमारे पास सिविल सोसाइटी और स्टूडेंट्स की तरफ से बहुत रिप्रेजेंटेशन आई थी तो हमने उसको एक्सटेंड कर दिया है। अब 30 तारीख 5 बजे तक लिंक खुली रहेगी। हमने जो उनका टेंटेटिव मेरिट लिस्ट भी निकाल दिया है तो उसको भी देखकर वो अपनी चॉइसेस बढ़ा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं कॉलेज वाइज और प्रोग्राम वाइज। तो ये प्रोसेस सारा अभी 30 तारीख तक स्टूडेंट कर सकता है। तो 5 बजे लिंक बंद हो जाएगी, फिर बाकी जो शेड्यूल है वो उसी शेड्यूल के हिसाब से लिस्ट निकलेगा और फिर राउंड 2 हो जाएगा और स्पॉट राउंड हो जाएगा।
1: ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੋ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਦੀ ਲਾਨਤ ਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਆਲਨੇ ਵਾਸਤੇ 100 ਤਿਆੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮੁਸ਼ਤਮਿਲ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ਦੋ ਮਦ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹਨ ਔਰ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਕੋ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਬਾਦਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਰ ਮੁਮਕਿਨ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕੀਤੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। LG ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੁਣਿਆ।
4: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार्ड आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
1: ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਾਜੀ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਹਿਰ ਤਿਬ ਡਾਕਟਰ ਸਰਵਤ ਹਿਲਾਲ ਸੁਣ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਨਿਊਜ਼ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ।
5: बदकिस्मती से हम देख रहे हैं आजकल के जो टीनएजर्स हैं ये गलत कामों में मुलव्वस हो रहे हैं, खासकर जो ये ड्रग्स हैं इसमें ये बहुत ज्यादा आजकल मुलव्वस हो रहे हैं। अगर हम देखेंगे गवर्नमेंट का डेटा उठा के देखेंगे, कम से कम 13 से 14 लाख जो बच्चे हमारे इस टाइम वो इस ड्रग्स के शिकार हुए हैं जो पुलिस डिपार्टमेंट है। हम चाहते कि जो आज तक उन्होंने कार्रवाई की है वो अच्छी कार्रवाई कर रहे हैं इस टाइम, लेकिन हम चाहते कि और वो एग्रेसिवली इसमें और ज्यादा इसमें कार्रवाई करें ताकि ड्रग्स की जो ये फितना खड़ा हुआ है को जड़ से खत्म किया जाए।
1: इस दौरान जनूबी कश्मीर दे जिला कुलगाम बिच 1 जून को एक नशा मुखालिफ पद यात्रा दा इनकाद हो रहा है। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशल गर्ग सुन अज पहलगाम दा दौरा करके उतै श्री अमरनाथ जी यात्रा दे सिलसिले बिच कीते गए इंतजाम दा जायजा कैदा। अस्ते नुमाइंदे तसदुक रशीद सुन खबर दिती है जे डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग ڈاکٹر بلال محدین بٹ سن انہاں کو اس بارے بھی تفصیلی جانکاری دیتی۔ آکاشوانی نیوز دے نال گل کردے ہویا ڈویژنل کشمیر سن یاترا واسطے کیتے گئے انتظامات اور سیلانیاں دی آمد بچ بعدے اتے اطمینان دا اظہار کیتا۔
6: मैं समझता हूँ बड़ा खुशकिस्मत मौका है हमारे लिए कि टूरिस्ट की चहल पहल हमें पहलगाम में वापस से देखने को मिल रही है। और जैसे मैं आ रहा था, मैं देख रहा था कि ट्रैफिक एक प्रॉब्लम बन गया, जो मैं समझता हूँ अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है। अच्छी बात इसलिए कि टूरिस्ट का फुटफॉल बढ़ रहा है, और एक चैलेंज जरूर है हमारे लिए कि किस तरीके

0: हम बेहतर इसको मैनेज करें वही।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल यानि 31 मई को अपने महाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात बिच मुख्तलिफ मौजूआत उत अपने ख्याल का इजहार कर सन। ए प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नैटवर्क उत नशर किया गया। इस दे अलावा ए प्रोग्राम न्यूज़ ऑन AIR, DD न्यूज़, PMO के यूट्यूब चैनल उत भी नशर हो सी। इस दे नाल ही ए खबरनामा मुक गया। आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन थी अगला खबरनामा 5:50 तक गोजरी जबान भी नशर किया गया। देव इजाजत, अल्लाह वेली।

मी सोचे वास्तव में शिश की मस वैस प्रमोट न थे मी कोशिश न था इसके सोशल मीडिया वो मस हाईलाइट थे हालांकि तमाम न्यूज़ चैनल से थे बाकी पेज से थे अलबत्त मस को यसु गुरु एस एच ओ हों सर सलूट थे मस यकीन पहली बार मट मी कोई गिदार मन जिंदगी मस सच आगे न थे मस अलबत्त पहली बार मट दिला जी पशुल की अगर मोटे कफ सर एट और थोगी अगर हमें सलूट थी उन पसई ससर के माल वे उन पसई सो हसो गुरु एस एच ओ किसी एक बेहतरीन कोशिश तो एक बड़ कामयाबी हासिल तो मनुम एटिंग जी गलश भेजो कि ससी कोई शराब रटो उस सो एक बड़ो दशका मट पशल वसी गुरे टूरिज्म ही कारी पे कि मैं बेसकी फकोन स्क्वायर सोशल मीडिया से भेजों को तो कोई ऐसी गुराई दलेल ही जो कश्मीर जी एक सेफ एरिया मन जो सेफ डेस्टिनेशन मट यकीन मुसदाय महफल जी गिव फकम हसकून कुत गुराई चलक प्रायोरिटी है जी टूरिज्म ही कारी ओडोरिन हाँ समीन बस नदी नो प्रोग्राम मसू जारी दान नदी एक कलामक पर जन सस पत्नों ने वैसे मसूज बड़ा मुफ्त होन

चरण पे कि कोई गदा शर पसंद अनासर हो, कोई सुबह एक्टिविटी अथन थी हूँ सिने खिलाफ एकदम गवर्नमेंट एजेंसी वोट रिपोर्ट भजन थे ताकि अदा वाकई दोबारा वे पेश न भजन उन कि वसी नलामी चढ़ाई रमस वसी असी नौजवान रोजगार जी हूँ असू अलाको रोजगार हूँ अगर असू बाल सदु वजी क्वालिफाइड बाल न तो वजी अगर होटल क्रम थे हूँ या न तो वजी टूरिस्ट उसी क्रम थे हूँ अगर सुस गो बेई अदी गो उधर कजी टूरिज्म असी नला क्रम थे हूँ ससर सद फायदा हूँ न तो फायदा हूँ फायदा ससर सद हूँ इसलिए वह कोई अनासर यहाँ कोई सब चीज़ कोशिश थे न कि अदा चीज़ भजन थे वन या कि कुछ हुकूमत से बस पति दे फकून हंस कि एक नशा मुख कोई प्रोग्राम ये जा रही है सच हुकूमत मेन मकसद वही हुकूमत से कोशिश थी कि नौजवान को एक पानी जोन बस पाई हुई फैशन व नशा कचा कहूँ वो एक अफसोसनाक कहानी है कि अगर असू एक पुलिस हो एक बेल्टू नफर से अगर अदा वाकत हो वैसे भी सख्त साबित तहकीकत भी उनकी पंजली भी होता जिस जेक वैली छोरे ना वो एक नफर से हारे ने वैसे पता बड़ी कहते थे गेंगास और बदकिस्मती ही वो कोनों वाजल कोनों वटाई असल वो चीज़ पूरी तहकीकत बुझ भी होने ताकि पाई फैचे बड़ा सो एक चीज़ हो लासबर तहमल इजहार थे बस हर चीज़ कोशिश तो नस तो हम गुराई उमेज न फके चंद व्यूज़ों कारी चंद फॉलोवर कारी या जे मुझे समझ नहीं हूँ कि बे अचा के गिरा जो बस हर चीज़ सोशल मीडिया ही जहनत बनाओ खाली वगट निश असर सुन चुन अदा कोई गट वीडियो बिल वैसी असी घुराई जो फ़र्क कई असू घुराई तले घुराई तले कोई हूँ विनो टूरिज्म नुकसान बे अदा चीज़ बिल गट बेशक विनो रटियन बेशक विनो अटे पुलिस हवाला थे विनो खिलाफ़ सख्त कार्रवाई थी अलबत जो एक चीज़ थोड़ा सोशल मीडिया है कि खुदा ने पुछन अगर असी एक बार गलत इमेज अगर बनाओ जल कि घुराई इमेज को तो कोई बस फकून कश्तर जी या पूरे मुल्क कोई ही एक असल इमेज ही बुटोट पाई ही कि घुराई एक बेहतरीन दिश ही एक सेफ दिश ही एक असल इलाका हूँ वो उन्होंने चाहे ना वो वेस कोई खूबसूरती ही फकियों चाहे ना तो असर पजे से नहीं हर मुमकिन मदद थी न कि असर कोई खास करके गुजारिश हमेशा था हर इंसान मोबाइल वक़्त हूँ हर एक को तुम इंसान से कोई हूँ बस कोशिश नहीं हूँ कि वो मीडिया है बस रोल अदा थे अल्लाह ताला हर इंसान अटैक अलग अलग रोल लग दिया मीडिया अटैक अलग रोल हूँ हर चीज़ है एक चीज़ उस पर्दापोशी एक ज़रूरी आसी थी उन्होंने मुस्नर से मुस्की सही साहब ही पर्दापोशी की बस विनों बेनकाम है तुम बिल्कुल विनो खिलाफ सख्त से सक मई मुस्बत ही गुजारिश था हुकूमत उठ या किसी को लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की अदा सख्त भोजन कार्रवाई थी ताकि वो पति न उठे वरदार कोई ऐसे बाकी जगह वैसे फके नसल साहब ही और ऐसे नौजवान उठ खुदा ने पशन वो नौजवान सब अच्छा कचाक नौजवान कचाक गोभी तो बात हो बस अगर वैसे मतलब कि वैसे कचाक टैम्बल क्रम थे अदा वो मार्केट या जा रख तो वैसे जी हुकूमत से बच वैसे जड़ू डंखारी फोन कोई है विनो खिलाफ़ खाली सख्त कार्रवाई बच होना अदा वाकई असू इलाके पेश हो बड़ो एक शर्मनाक दिशी ऐसी कोई गुराई है अगर बस वैसे हिस्ट्री का लेकून अगर ऐसी प्रोण कोई बुजुर्गी हाँ या ऐसे कोई जख हाँ वो बस फकून फिर ला बड़ा सादा जख बड़ा नेक जख पूर मेहमान नवाजी जसी घुराई रहा दुनिया से मुड़ पछे छूँ कोई दिशे कदा या कौन वद कोई मेहमान नवाजी थे ना वो जग कदा हाँ मुड़ पछे छूँ कि आशंक होटल ना असद नस गो वजटे रटे मुड़ पाई गई कि धर्म सचा ख्याल ना असि घुराई जी एक मशतोज बेटा आसन या दरू बेटा आसन या दरू ये हथ फैला भी आसन हमेशा असि गो गरो जग से ताउन थी हाँ तल्लू जग से गो वज दिशते बड़ी कुर्बानी दी तो अश सियाँ कुर्बानी अगर नतीजे जी पतनों बस अदा कोशिश थोन तो शायद मुठ पशे जो समाज बे बुटो जो बड़ा दुश्मनी आसन समीन वट उम्मीद ही नदी बस बड़ा एक फणा कलामक पर जो सस पतनों प्रोग्राम बड़ा मुश्त थोन।

जी सजनो, तम प्रोग्राम का शुरू में समाज फरमा रहा था यो खूबसूरत जोगीत मास्टर करतार चंद ते उनका संगिया की आवाज में। सजनो, नज्म सब्त जेन पर हुक्मरानी को ना है, यानी के तमना अपना जेन को अपने दिल को गुलाम नहीं बनना, बल्कि अपना दस्तूर के नाल, अपना बनाया गया तरतीब शुदा डिसिप्लिन के नाल तमना कोई जड़ो है वो कंप्रोमाइज नहीं कर रहा। जिंदगी कदे भी ताकत ना खाली तख्त नहीं छोड़ती, जे तम अपना जेन तैजुस्सा पर किसी शहजादा की तरह हुक्मरानी नहीं करन लगा, तो थारो डर, खौफ, ख्वाहिशात ते कमजोरियां पर जाबर हो जाएगो। इत कोई बिचलो रस्तो नहीं। दूजी गल यह है, जे तम शहजादा नालों जिंदगी का तख्त पर बैठ गए राज करेंगा, या फिर ख्वाहिशां का कैदी बन गए गुलामी की जिंदगी कटेंगा, फैसलो अपने हाथ है। ते अगे ऐ थारी खिदमत मां पेश कर दें रंजीत थॉमस की आवाज़ मां या सौगात।

जी सजनो, अब्दुल गफूर की आवाज़ में तम समात फरमा रहा था एक खूबसूरत जी सौगात। तो सजनो, जो डिसिप्लिन है ये जज्बात को मोहताज बनने की लोड़ नहीं होती, बल्कि हिकमत अमली के तहत चलनो लोड़िए। क्योंकि डिसिप्लिन जज्बात या जिस्मानी थकन ना भुल गए असूलों पर अमल करन को ना है। डिसिप्लिन भी हिकमत अमली को संगी होवे, इस गलों उनको लिहाज जरूरी है। तो डिसिप्लिन तो हिकमत अमली यो वो रस्तो है जिस पर चल गया इंसान बड़ी ते बड़ी कामयाबी हासिल कर सके। ते नाकामी इंसान वास्ते तकलीफ दे होनी चाहिए, उसना उसते सीखनी चाहिए, और ताजे मुस्तकबिल में या मुस्तकबिल करीब में वे दोबारा उसते गलती सरजद ना हुई उन्होंने सीख के बेहतरीन राह तश्कील देनी चाहिए। हकीकी डिसिप्लिन वास्ते जरूरी है जे उसकी खिलाफ वर्जी का वाजिया नतज जड़ाई वे नाकामी तो तकलीफ बख्श हो सके। जब इंसान अपना असूलों से पिछे हट जाए तद उस गल का मंदा असरात जड़ाई वे दिसन लग पोवी। यो ही दर्दनाक एहसास इंसान ना अगे गलतियां ते महफूज रखे। दिमागी नज्म जब्त कामयाबी वास्ते मुझ जरूरी है। तय लोकगीत पेश है इकबाल मलनगामी की आवाज़ में।

जी सजनो, मोहम्मद यूसुफ की आवाज़ मातम बैत से मात फरमा रहा था। तो सजनो, डिसिप्लिन ज़बरदस्ती नहीं आतो किसे माँ, बल्कि इसना अपने अंदर पैदा करनो पे। यो खुददारी नाले खुद एहतसाबी को ना है, लिहाजा मारा वास्ते ज़रूरी हो जाए जे हम अपनी हर रोज़ की जिंदगी माँ डिसिप्लिन शामिल करा, वेला की कदर करा और अपने संग की योग्य वादो जड़ो वो निभावा, दूजा का हक हकूक को ख्याल रखा। सजनों, डिसिप्लिन वह लोह है जिड़ी हमना अंधेरा ते कढ़ गए मंजिल आली बखी ले चल है। लिहाजा हर फर्द ना अपने संग डिसिप्लिन ना अपनी जिंदगी को हिस्सों बना लेना चाहिए और इस चीज़ को ऐद भी करना चाहिए, ते फिर ताजे एक चंगा बेहतर निज़ाम, एक बेहतर माशरा, ते एक बेहतर अफराद की तामीर और तश्कील जड़ी है वह मुमकिन बन सके। तो सजनों, अगर सुन लिया गीत अनीसा करीम की आवाज़ में।

आपने अपने रेडियो सेट्स पे ट्यून किया आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन मीडियम वेव 268.8 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। 5:50 हो रहे हैं। अब हमारे यहाँ से गोजरी खबरों का बुलेटिन नष्ट होगा। गोजरी खबरों के फौरन बाद आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी खबरों का बुलेटिन भी नष्ट होगा। पहली खबरें गोजरी में।

आदाब यू आकाशवाणी श्रीनगर है। 5:55 आई खबर नाम उल्ली गए चौधरी इरशाद पहना अहम खबरों की सुर्खी। श्रीनगर माह दो रोजा कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल को आगाज लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कियो इफ्तिताह। भारतीय फौज किसी भी सूरत हाल को मुकाबलो करने वास्ते तैयार। एनडीए पासिंग आउट परेड नाल फौज का सर

0: ये हैं, जो पुलिस डिपार्टमेंट है, हम चाहते हैं कि जो आज तक उन्होंने कार्रवाई की है वो अच्छी कार्रवाई कर रहे हैं इस टाइम, लेकिन हम चाहते हैं कि और वो एग्रेसिवली इसमें और ज्यादा इसमें कार्रवाई करें ताकि ड्रग्स की जो ये फितना खड़ा हुआ है को जड़ से खत्म किया जाए।
1: इस दौरान जनूबी कश्मीर का जिला कुलगाम में 1 जून में एक नशा मुक्त पद यात्रा को इनका हो रहा है। जनूबी कश्मीर का DIG पुलिस जावेद इकबाल मत्तू ने आज पुलिस का आला सुरंग नाल कुलगाम को दौरा करके उत्तर 1 जून मुनक्कद होने वाली मंशियात मुखालिफ पद यात्रा वास्ते किया जा रहे इकदाम को जायजो लियो है। मंशियात का कारोबार के खिलाफ कार्रवाई जारी रखता में पुलिस ने शुपियां जिला का इमाम साहब इलाका में गुलाम रसूल डार नामी एक मंशियात फरोश की 22,35,000 रुपया मालियत की जायदाद अटैच की है। गांधरबल में पुलिस ने सालम अहमद भट्ट नामी ड्रग्स स्मगलर न गिरफ्तार किया है। हिंदवाड़ा में दाऊद अहमद डार नामी मंशियात फरोश की गिरफ्तारी अमल में आनी गई है। अनंतनाग में पुलिस ने पांगी काश्त न तबाह कर छुड़े है। ये खबर तम आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबर तम आकाशवाणी का मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR ते DTH पर भी सुन सकें। जम्मू कश्मीर बैंक UT का मुख्तलिफ सैक्टर न फरोग देन ते लोगों ना आला मियार की बैंकिंग सहूलियात दस्तियाब कराने वास्ते हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। बैंक की तरफों कारपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के तहत भी कई सारा काम अंजाम दिता जा रहा है। इस बारे में इदारा का मैनेजिंग डायरेक्टर ते CEO डॉक्टर अमिताभ चटर्जी ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के नाल गल करता वा क्यों
2: अभी हमारा जो प्रॉफिट है उसका तो 2% हम यूज करते हैं CSR में, वो मैंडेटेड है कंपनीज एक्ट के तहत। हर साल हम 50-55 करोड़ रुपया हम CSR के तहत डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे, एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, इनके लिए हम खर्च करते हैं और करीब एंटायर अमाउंट जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ही होता है और हम आगे भी करते रहेंगे। जितना प्रॉफिट हमारा बढ़ेगा उतना ज्यादा हम स्पेंड कर पाएंगे।
1: अकलियती अमूर का वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि भारत हज मिशन ना सऊदी अरब के हज उमरा की वजारत की तरफों पहली मरतबा 2 बावकार लबयतम अवार्ड हासिल हुए हैं। ये अवार्ड हज का प्रोग्राम ना खुशसलूबी के नाल कराए जान पर दिता गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर किरण रिजिजू ने दस्यो कि हज 2026 का अहम रुकन को कामयाबी के नाल मुकम्मल होनू इस गल ना जाहिर करे कि अकलियतियों का अमूर की वजारत भारत की हज कमेटी ते सऊदी अरब का भारत का सफीर ते जद्दा में भारतीय कौंसल खाना के बिष्कार हम एंगी पाई जे। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने आज पहलगाम को दौरा कर गए। उत्तर श्री अमरनाथ जी यात्रा का सिलसिला में किया गया इंतजाम को जायजो लियो। हमारा नुमाइंदा तसद्दुक रशीद ने खबर दी है कि डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर बिलाल महीउद्दीन भट्ट ने 19-12 में तफसीली जानकारी दी थी। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के नाल गल करता हुआ डिविजनल कमिश्नर ने यात्रा वास्ते किए गए इंतजाम ते सियाहों की आमद पर इत्मीनान को इजहार करता हुआ।
3: मैं समझता हूँ बड़ा खुशकिस्मत मौका है हमारे लिए कि टूरिस्ट की चहल पहल हमें पहलगाम में वापस से देखने को मिल रही है और जैसे मैं आ रहा था मैं देख रहा था कि ट्रैफिक एक प्रॉब्लम बन गया, जो मैं समझता हूँ अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है। अच्छी बात इसलिए कि टूरिस्ट का फुटफॉल बढ़ रहा है और एक चैलेंज जरूर है हमारे लिए कि किस तरीके से हम बेहतर इसको मैनेज करें, वही हमारा मुद्दा भी है आज आने का कि बेहतरीन इंतजाम रहे हमारे आने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए। सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग हुई है, हमारी सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ मीटिंग हुई है, बड़े अच्छे फीडबैक और सुझाव लोगों ने दिए हैं और हमारी यही कोशिश रहेगी कि सभी सुझावों को कंसिडरेशन लेकर के बेहतर सर्विसेज के लिए हम काम।
1: वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी पालकी ने 31 मई ना अपना माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में मुख्तलिफ मौजूआत पर अपना ख्याल को इजहार करेंगा। यह प्रोग्राम आकाशवाणी ते दूरदर्शन का पूरा नेटवर्क पर नशर किया जाएगा। इसके अलावा यह प्रोग्राम न्यूज़ ऑन AIR DD न्यूज़ ते PMO का यूट्यूब चैनल पर भी सुनियो जा सके। प्रोग्राम सुबह 11 बजे नशर होगा जिस तू फौरन बाद इसको इलाकई जबाना में तर्जमा भी नशर किया जाएगा। इस माहाना प्रोग्राम की यह 174वीं किस्त होगी। आज पूरा मुल्क में हिंदी सहावत को तैड़ो मनाया जा रहा है। यह तैड़ो भारत में हिंदी जबान सहाफत का आगाज की याद में मनायो जाए। 1826 में आज के तैड़े कोलकाता तो हिंदी रोजनामा अरुण मातंद को पहलो शुमारो शाया कियो गयो। इस अखबार का बानी मुदीर आंजानी पंडित जुगल किशोर शुक्ला था जिन्हें भारत में हिंदी सहाफत को मेमार समझो जाए। जम्मू सूबा में बैन अवी सरहद के कोले रह रहे लोगों ने मरकज का इस फैसला को हैरमकदम किया है जिसमें सरहद तो 15 किलोमीटर के अंदर गैर कानूनी तमीरत हटाए जाने की गल की गई है। इसके नाल ही खबरों को यू बुलेटिन मुक्यो। आकाशवाणी तो 6:25 पर अगलो बुलेटिन कश्मीरी जबान में सुनो ना भूलियो। आमना दियो इजाजत। खुदा हाफिज।
4: ये आकाशवाणी है। अब आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है

0: एक खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग को न्यूनतम करना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। 30 जून तक चलने वाले अभियान के लिए 1600 से अधिक दल गठित किए गए हैं। इसके अलावा उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग करने वाले जिलों के लिए 500 दल बनाए गए हैं। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम आईटीआई क्लस्टर के लिए आर्सेलर मित्तल निपोन स्टील इंडिया नामक एक निजी कंपनी के निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश इस योजना के अंतर्गत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। मंत्रालय ने कहा है कि ये उपलब्धि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उद्योग प्रबंधित परिणाम उन्मुख संस्थानों में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
1: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहां से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीनें जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीनें जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि लिथियम बैटरी और स्थायी चुंबक कई आधुनिक तकनीकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना है कि इनका निर्माण भारत में होना चाहिए और इनकी तकनीक का विकास स्वदेशी स्तर पर होना चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण के लिए तैयार हैं। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड में जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि यह अभियान अब भी जारी है। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ नाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले म्यांमा के राष्ट्रपति बिहार में गया गए, जहां महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राजस्व आसूचना निदेशालय ने केरलम में मादक पदार्थों के खिलाफ समन्वित अभियान के अंतर्गत 24 किलो से अधिक मादक पदार्थ जब्त किए हैं। चक्रव्यूह अभियान के अंतर्गत कोच्चि, मलप्पुरम और तिरुवनंतपुरम में मेथक्वालोन, मेथमफेटामाइन और हशीश का तेल सहित कई मादक पदार्थ जब्त किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल पर किया जाएगा। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सीओ से उंग जाए और किम बॉन हो को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज मीडियम वे 268.1 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। समीन शाम के 6:05 हो चुके हैं। हमारा अगला ऐलान सुनिए। ये आकाशवाणी हुंद श्रीनगर स्टेशन शबजत 5 मिनट सप्रीत पेश प्रोग्राम सुबह गमी बाइन हिंदी खतरे।

ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً

0: आकाशवाणी श्रीनगर अपनी घड़ियां मिलाइए शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे
1: प्रोग्राम शेरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट अपनी तामीरात दिल से बनाइए।
0: शेरबीन के सामईन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौजूदात हैं कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल का इफ्तिताह जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने किया।

0: رامسو میں سڑک حادثہ، دو افراد جان بحق۔ حجاج کی واپسی 2 جون سے شروع، تاہم شیڈیول سے متعلق حجاج کے تحفظات۔ اور ڈوڈا میں کل شام پھر ژالہ باری ہوئی، فصلیں نقصان زدہ۔ موضوعات کی تفصیل ذرا دیر بعد۔
1: محبت وہی جو دل سے ہو، بات وہی جو دل سے کہی جائے، دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔
2: سنو نا، سوچ رہا ہوں اپنا بزنس کیوں نہ بڑھا لوں۔
3: تو روکا کس نے؟
2: روکا تو کسی نے نہیں، پر سمجھ نہیں آ رہا کہ مدد کس سے مانگوں۔
3: مجھ سے؟
2: تم سے؟ تو اچھا بتاؤ پھر۔
3: آکاش وانی ہے نا، میں نے سنا ہے اس کا نیٹورک دیش بھر میں پھیلا ہے۔
2: پر اس سے میرا کیا فائدہ؟
3: دیکھو فائدہ ہے، جس شہر میں چاہو وگیاپن کی مدد سے اپبھوکتاؤں تک پہنچ جاؤ۔
2: پر اب یہ بھی تو بتا دو کہ آکاش وانی سے سمپرک کیسے کروں۔
3: بہت آسان ہے، میں بتاتی ہوں۔ نمبر نوٹ کرو،
4: 9018074333।
5: होली का ना अलग ही मजा है। लोरी ना मिठाई खाओ।
6: वाह, इसका स्वाद तो बड़ा ही अच्छा है। नहीं, मैं जो मिठाई लेके आई उसमें ऐसा स्वाद क्यों नहीं आ रहा?
5: सावधान रहना रीना, त्योहारों के समय मिठाइयों में मिलावट की संभावना बहुत अधिक होती है। इससे हमारी और हमारी फैमिली की सेहत खराब हो सकती है।
6: अच्छा भाभी,
5: और हाँ, मिठाई खरीदने से पहले ये जरूर जांच ले कि दुकानदार के पास फूड लाइसेंस हो। अगर किसी भी खाद्य पदार्थ में मिलावट की शंका हो तो राज्य खाद्य संरक्षा आयुक्त के कार्यालय में शिकायत कर सकती हो। और अधिक जानकारी के लिए www.fssai.gov.in पे लॉग इन कर सकती हो। और हाँ, अगर आप चाहती हो तो वेबसाइट पर खाद्य मिलावट की जाँच के आसान तरीकों की जानकारी भी ले सकती हो।
6: थैंक यू भाभी, आपने तो मेरी आँखें खोल दी।
7: याद रहे, सुरक्षित आहार स्वास्थ्य का आधार। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K।
8: अरे माँ देखो एक्सीडेंट, रुकना पड़ेगा, मैं मदद करके आता हूँ।
9: रहने दे बेटा, इतनी झंझट में क्यों फंसना? पुलिस केस हो गया तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने पड़ेंगे।
8: नहीं माँ, अब ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट की PM राहत स्कीम आ गई है, ये गोल्डन आर है ना, अभी मदद मिल जाएगी तो इसकी जान बच जाएगी।
9: पर बेटा, हॉस्पिटल जाते ही वो एडवांस पैसे मांगेंगे, कहाँ से आएंगे इतने पैसे?
8: माँ इसमें कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है, 1.5 लाख तक का इलाज और 7 दिन का खर्चा सरकार देगी, 1 रुपया एडवांस नहीं देना पड़ेगा।
9: और वो पुलिस, वो तो तुझे तंग करेंगे ना कि कैसे हुआ, कहाँ से लाया।
8: माँ अब 7 रूल्स हैं, नो हरासमेंट, मदद करने वाले को राहवीर माना जाता है, मुजरिम नहीं, पुलिस परेशान नहीं कर सकती।
9: सच में? फिर तो बेटा देरी मत कर, जल्दी जा।
8: हाँ माँ, आप बस 112 डायल करके एम्बुलेंस बुला लो, पेपर वर्क अब सिस्टम हैंडल करेगा, हमें बस इंसानियत दिखानी है।
9: शुक्र है, अब डर या पैसे की वजह से किसी की जान नहीं जाएगी।
8: वही तो माँ, PM राहत, इलाज पहले पैसे बाद में, 112 डायल करें जिंदगी बचाएं।
7: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू एंड कश्मीर।
0: शर्वीन, आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर सुन रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में आज कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल के 3rd एडिशन का इफ्तिताह करते हुए कहा कि नौ आबादियाती जहनीत के तमाम आसार मिटाने और भारत की दुरुस्त तारीख दुनिया तक पहुंचाने की अशद जरूरत है। उन्होंने कहा कि अदीब और दानिश्वर अफसानवी या गैर अफसानवी तहरीरों के जरिए मुस्बत बयान या तश्कील दें और तारीखी हकायक को आलमी कारायन तक पहुंचाएं। एलडी मौसूफ ने मजीद कहा कि भारत की कदीम इल्मी साइंसी और सकाफती खिदमात को उजागर करना वक्त की अहम जरूरत है। समय श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर आज सुबह रामसू में पेश आए एक हादसे में 2 अफराद मौके पर ही जान बहक हुए। बताया जाता है कि चूने की बोरियों से लदा एक ट्रक रामसू में ड्राइवर के काबू से बाहर होकर गहरी खाई में जा गिरा, जिसके नतीजे में ट्रक का ड्राइवर और कंडक्टर झुलस कर हलाक हुए। उधर चिनैनी उधमपुर में कल शाम पेश आए सड़क हादसे में एक मियां बीवी के जख्मी होने की इत्तला है। तफसीलात के साथ मोहम्मद अस्कीन।
10: आज अलग सुबह जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर रामसू के गांगरू इलाके में पेश आए सड़क के दिलदोज हादसे में 2 अफराद हलाक हुए हैं और शाहरा से नीचे खाई में गिरे ट्रक ने आग पकड़ ली और अपने दोनों सवारों समेत जल गया। पुलिस हुकाम ने शहरबीन को

0: बताया कि चूने की बोरियों से लदा ये ट्रक नंबर JK16A0693 जम्मू से श्रीनगर की तरफ आ रहा था कि गांगू के मुकाम ये ट्रक ड्राइवर के काबू से बाहर होकर नीचे खाई में जा गिरा। उन्होंने कहा कि खाई में गिरते ही ट्रक ने फौरन आग पकड़ ली और ट्रक मुकम्मल तौर से खाकस्तर हो गया है। पुलिस का कहना है कि नजदीकी तामीराती कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड की तरफ से इतला मौसूल होते ही पुलिस स्टेशन रामसू की टीम, हिमालयन क्योर की रामसू के रजाकार, CRPF और फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के अहलकार मौके पर पहुंच गए और बचाव कार्रवाइयों का शुरू किया गया। उन्होंने कहा कि बचाव टीमें जब मौके पर पहुंच गई उस वक्त ट्रक मुकम्मल तौर पर आग की लपेट में आ चुका था और बुरी तरह से जले ट्रक में फंसे अपराध को निकालने की कार्रवाई शुरू की गई। पुलिस ने बताया कि कई घंटों तक जारी रहने वाले रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ट्रक के जले हुए कैबिन से ड्राइवर और कंडक्टर की अधजली लाशें बरामद की गई और वो दोनों अपराध मौके पर ही जहांबाग हो चुके थे और उनकी लाशें जुजवी तौर पर झुलसी हुई हालत में पाई गई। पुलिस ने इस हादसे में लुकमा अजल बने अफराद की शिनाख्त शाकिर अहमद मनहास वलद लियाकत अहमद मनहास साखना वनत्राग गोपालपुरा अनंतनाग और कंडक्टर मोहम्मद इकबाल वानी साखना किहरी बल अनंतनाग के तौर पर की गई है। रामसू पुलिस ने एक केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है और हादसे की वजूहात का पता लगाया जा रहा है। इस दौरान कल शाम जिला उधमपुर में चिनानी पत्नी टॉप की सबका शारा पर पेश आए सड़क के एक हादसे में एक आल्टो कार में सवार मियां बीवी उस वक्त जख्मी हो गए जब एक बाहरी बरकम इंडियन ऑयल टैंकर ने इस आल्टो कार को टक्कर मार दी। इस तसादम के नतीजे में टैंकर सड़क पर उलट गया जिसके बाईस चिनानी पत्नी टॉप सड़क कई घंटों तक बंद रहने के बाद दोबारा बहाल कर दी गई। हादसे में जख्मी होने वाले मियां बीवी को फौरी तौर पर इलाज के लिए चिनानी के अस्पताल मुंतकिल किया गया और उनकी हालत बेहतर है।
1: मोहम्मद तस्कीन की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर कुलगाम से फारूक राथर की तलह के काजीगुंड के गोजर बस्ती लिम्बर इलाके में आज एक रीछ के हमले में एक खातून और उसका बेटा शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों की शनाख्त रुकैया और उसके बेटे साकिब अहमद के तौर पे हुई है। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया जबकि रुकैया की हालत ज्यादा नाजुक होने के पेश नजर उसे GMC अनंतनाग रेफर किया गया है। इधर चाडूरा के कुलत्रह इलाके में नामालूम अफराद ने कल दौरान शब सैकड़ों सेब के दरख्त और हाई डेंसिटी पौधे काट डाले। बाग मालकान के मुताबिक इस वाकये से लाखों रुपए का नुकसान हुआ। पुलिस ने मामले में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू की है। समन जम्मू कश्मीर के हुजाज किराम की वापसी का सिलसिला 2 जून मंगलवार से शुरू हो रहा है। ताहम हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हुजाज की वापसी का जो शेड्यूल मुश्तहर किया है उससे हुजाज को फिक्र तशवीश लाहिक हुई है। बताया जाता है कि जम्मू कश्मीर के हुजाज की परवाजें अब की बार बराह रास्त श्रीनगर पहुंचने के बजाय पहले अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचेंगी और वहीं पर कस्टम्स और इमिग्रेशन वगैरह का अमल अंजाम दिया जाएगा जिसके बाद हुजाज श्रीनगर पहुंच पाएंगे। यही नहीं, हुजाज को अब की बार सिर्फ 5 किलो चेक इन बैगेज और 7 किलो हैंड बैगेज की इजाजत होगी और ये कि 5 किलो से ज्यादा का चेक इन बैगेज अहमदाबाद से सड़क के रास्ते श्रीनगर पहुंचाया जाएगा और चेक इन बैगेज की हद भी 30 किलो होगी। इस सिलसिले में सऊदी अरब से हुजाज अपनी रुदाद कुछ यूं बयां करते हैं।
2: हम हुजाजुल कश्मीर सऊदी अरबिया से शहरबीन के जरिए से रियासती हज कमेटी को इत्तला कर देते हैं। जो भी हुक्मनामा उन्होंने कल जब हम मशगूल थे जमरात में हमारे लिए निकाल दिया और हमारे जहन को मुंतशिर कर दिया है, जहनी कोप्त करके हमें तबाह कर दिया है। उनसे उस हुक्मनामे को वापस ले जाने की पुरजोर अपील करते हैं और हमारे साथ किया हुआ वादा जो 20-20 और 7 kg का किया गया है उसको अमली तौर जमा पहनाने की कोशिश नहीं, यकीन दिलाने करके हमारे सामान के और हमारे हकूक के तहफ़ करके हमें श्रीनगर एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन हो। जब भी कोई हमें इमिग्रेशन में कोई फीस भरनी होगी वो हम अपने सामने अपने अदा करेंगे। इसके बरक्स हमें किसी भी जुमरे में न लाया जाए और सिर्फ ये हुक्मनामा रियासती जम्मू कश्मीर के लिए है, बाकी किसी भी रियासत के हज्जाज के लिए ऐसा कोई कानून नहीं है। इसलिए हम हज्जाजुल कश्मीर रियासती हज कमेटी को मुकम्मल तौर हमारा दिफा करके हमारा सामान और हमें मुकम्मल तौर श्रीनगर एयरपोर्ट पे جو بھی کام ہوگا وہاں ہی سر انجام دیا جائے اور ہمارے سامان کا

अपील की है कि अहरबल को भी दीगर सियाहती मकामात की तरह दोबारा खोल लिया जाए ताकि इलाका नूराबाद की मकामी आबादी को माकूल रोजगार मयसर हो सके और साथ ही वादी आने वाले सयाहों को अहरबल की खूबसूरती का लुत्फ लेने का मौका मिल सके। मोहम्मद अयूब मत्तू के बकौल अहरबल को जब से सयाहों के लिए बंद कर दिया गया है तब से नूराबाद के नौजवान रोजगार के हुसूल में तरह तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इधर पीडीपी के जिला कोऑर्डिनेटर बारामुल्ला अल्ताफ अहमद मलिक ने आज रफियाबाद के बारा इलाका जात खामू ब्रंदुब ब्रमन शालकोट और मुल्हिका देहात का दौरा किया और वहां हालिया जालाबारी से होने वाले नुकसान का जायजा लिया। अलावा उन्होंने कितरनाड़ीबल में आग की हालिया वारदात में हुए नुकसान का जायजा लिया और मुतासरीन को माकूल मुआवजा दिए जाने का हुकाम से मुतालबा किया। इस साल श्री अमरनाथ जी यात्रा 3 जुलाई को शुरू होगी और 28 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा के मौके पर इख्तिताम को पहुंचेगी। याद रहे कि इस साल यात्रा की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए 670 नीम फौजी दस्तों की कंपनियां तैनात की जा रही हैं जो अब तक की सबसे बड़ी तैनाती होगी।

0: इस साल श्री अमरनाथ जी यात्रा 3 जुलाई को शुरू होगी और 28 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा के मौके पर इख्तिताम को पहुंचेगी। याद रहे कि इस साल यात्रा की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए 670 नीम फौजी दस्तों की कंपनियां तैनात की जा रही हैं, जो अब तक की सबसे बड़ी तैनाती होगी। उधर यात्रा से जुड़े मुख्तलिफ सर्विस प्रोवाइडर्स मसलन मरकबानों, पालकी वालों और छोटे दुकानदारों के रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो चुका है और यह अमल 20 जून को मुकम्मल होगा। ताहम अब की बार रजिस्ट्रेशन का काम खासा आसान कर दिया गया है। यही नहीं, यात्रा में इस्तेमाल किए जाने वाले खच्चरों और घोड़ों को टीके लगाने में भी गैर मामूली संजीदगी का मुजाहिरा किया जा रहा है। एक रिपोर्ट के साथ रहीम रिजवान।
1: इस साल 57 रोज जारी रहने वाली सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के दौरान बालतल की तरफ से अपनी खदमात मैसर रखने वाले मरकबानों, पालकी वाले, पिथू वाले और दीगर मजदूरों की रजिस्ट्रेशन IGMEX पोर्टल पर की जाती है और ये पोर्टल 20 जून तक खुला रहेगा। वाजह रहे, सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा इस साल 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त श्रावण पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन के मौके पर इख्तिताम पजीर होगी। यात्रा को इस साल खुश असलूबी और अहसन तरीके पर मनकद कराने के लिए जहां जिला इंतजामिया गांधरबल की जानिब से खातिर खा इंतजाम किए जा रहे हैं, वहीं यात्रा के दौरान मुख्तलिफ तरीकों से अपनी खदमात मैसर रखने वाले मजदूरों, मरकबानों, पिथू वाले और पालकी वालों की रजिस्ट्रेशन पहले ही की जाती है ताकि इन लोगों को वक्त पर शिनाख्ती कार्ड और यात्रा के दौरान फराहम किए जाने वाले खसूसी पास फराहम किए जाए। अगरचि महकमा एनिमल हस्बेंड्री गांधरबल और लेबर डिपार्टमेंट गांधरबल पहले पहल रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ 2 काउंटर खोलते थे जहां काफी भीड़ भाड़ रहती थी, जिसकी वजह से सभी सर्विस प्रोवाइडर्स को वक्त पर खसूसी पास फराहम नहीं हो पाते थे। तहम इस साल दोनों महकमों ने एक तो घर घर जाकर इन सर्विस प्रोवाइडर्स को जानकारी फराहम की और दूसरा मुख्तलिफ मकाम पर बहुत सारे काउंटर खोले गए जहां इन सर्विस प्रोवाइडर्स की रजिस्ट्रेशन मुफ्त में की जाती है। इलावा अजी यात्रा के दौरान इस्तेमाल में लाने वाले गोदू का बाजाबा तौर मेडिकल चेकअप किया जाता है, उन्हें टेटनिस लगाए जाते हैं और साथ ही फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी दी जाती है। इस दौरान इन गोदू की टैगिंग की जाती है, चारों अतराफ इनकी तस्वीरें खींची जाती है, इनका मुफ्त इंश्योरेंस भी किया जाता है। सर्विस प्रोवाइडर्स ने जिला इंतजामिया, महकमा एनिमल हस्बेंड्री गांधरबल और लेबर डिपार्टमेंट गांधरबल का शुक्रिया अदा किया क्योंकि उन्हें इस साल पहली बार बिना तवालत उनकी दहलीज पर जाकर रजिस्ट्रेशन की जाती है और उन्हें खसूसी पास फराहम किए जाएंगे। चीफ एनिमल हस्बेंड्री अफसर गांधरबल डॉक्टर एजाज अहमद भट्ट और असिस्टेंट लेबर कमिश्नर गांधरबल हफ्सा कुयूम ने तमाम सर्विस प्रोवाइडर से अपील की है कि वो GMEX पोर्टल पर अपनी और अपने मरकबानों की रजिस्ट्रेशन 20 जून से पहले ही करवाएं क्योंकि 20 जून के बाद ये पोर्टल बंद किया जाएगा और बिना रजिस्ट्रेशन किसी भी शख्स को यात्रा के दौरान अपनी खदमात मैस रखने की इजाजत नहीं।
0: रहीम रिजवान की रिपोर्ट आपने सुनी और ये रिपोर्ट नष्ट किए जाने के दौरान हमें कुपवाड़ा से फैयाज हमीद ने इतला दी है कि कुपवाड़ा और हंदवाड़ा के कुछ इलाकों में अभी भारी झालाबारी हो रही है। समनपेट मकामा बीरवा के आबादी इलाके में मौजूद PM श्री हाई स्कूल को मकामी मिडिल स्कूल में मुंतकिल किए जाने पर सरापा एहतजाज है। आबादी का कहना है कि हाई स्कूल को एक छोटे स्कूल की इमारत में मुंतकिल करना कि जहां कमरों की तादाद कम है और दीगर सहूलियात भी गैर तसल्ली बख्श हैं, मंतक से बाहर है।
2: بہس پٹھ مقامی پہ گزارش یہ مطلب اس یہ PM شری سکول ہائی سکول شفٹ کر گرلز مڈل سکولس مزہ بوڑھ بربر سہ سائڈ گسان بچہ تور ہیکان وات تمہر دور گسان اس زن یہ ہائی سکول یہ سینٹرس مزہ اتر تہ لوکیشن ات برہ رڈ بک واٹ دان ہوکہ سائڈ گسان گام یہ وجہ بنیا تر مڈل سکولس ون تنس ییم سات سہ چالو گا تر زیاد بچہ مطلب موقع پہ ونکس ترہ بچہ وجہ سے یہ دور تو بیس ون سائڈ گامس گسان
3: اس پٹھ مقامک روزن ول کہ پرابلم یہ ستوہ بائیز PM شری سکول بنیاو پہ مطلب گڈ اس مڈل سکول یوت ون بنیاو سہ PM شری ہائی سکول تو سہ نیو امو بیس جائے کورک سہ شفٹ اس زن بالکل گراؤنڈس ست یت پرون پرون اس ام برو گرلز مڈل سکول اس تمیک تو یت زن بی پرائمری سکول ایڈ کرنا آئے مگر وجہ گو تمیک کہ اس زن تمچ خستہ حلی گئی بچن ہن یعنی کہ تت بچہ ونکس ٹوٹل لاسٹ ترین سکولن ہند ونکس تیتر بچہ تک تر گراؤنڈ ستھ یم سات تر ڈے کرکٹ گند

0: हस्पतालों में मिलता है और राइट टाइम पे मिलता है, कोई क्यू में रहना नहीं पड़ता। तो इस तरीके से मुल्क के करोड़ों लोगों को फायदा पहुंचा है। डिजिटलाइजेशन ने मुल्क के अंदर इंकलाब किया और ट्रांसपेरेंसी को आसमान तक पहुंचाया। मैं कहूंगा मोदी जी तो अपने आवाम का एक बेहतरीन कस्टोडियन है।
1: जम्मू कश्मीर बैंक यूटी के मुख्तलिफ सेक्टरों को फरोग देने और लोगों को आला मयार की बैंकिंग सहूलियात दस्तियाब कराने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहा है। बैंक की तरफ से कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत भी कई सारे काम अंजाम दिए जा रहे हैं। इस बारे में इदारे के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO डॉ अमिताभ चटर्जी ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर से बात करते हुए कहा,
2: अभी हमारा जो प्रॉफिट है उसका तो 2% हम यूज करते हैं CSR में, वो मैंडेटेड है कंपनीज एक्ट के तहत। हर साल हम 50-55 करोड़ रुपया हम CSR के तहत डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे, एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, इनके लिए हम खर्च करते हैं और करीब करीब इंटायर अमाउंट जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ही होता है और हम आगे भी करते रहेंगे। जितना प्रॉफिट हमारा बढ़ेगा उतना ज्यादा हम स्पेंड कर पाएंगे।
1: ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान को मुल्क भर में एक जामे मुहिम की शक्ल दी जानी चाहिए ताकि देहात खेतों और किसानों के दरमियान एक मुस्तहकम रब्त पैदा किया जा सके। खेत बचाओ अभियान के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा लेने के लिए तलब की गई एक मीटिंग के दौरान उन्होंने कहा कि इस मुहिम के दौरान खादों के मुनसिफाना इस्तेमाल और किसानों को जानकारी फराहम करने पर खसूसी तवज्जो मरकूज की जाएगी। काबिल जिक्र है कि मुल्क भर में खेत बचाओ अभियान 1 जून से 30 जून तक चलाया जाएगा। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। हमारी खबरों के बुलेटिन और न्यूज रूम के प्रोग्रामों, डिस्ट्रिक्ट न्यूज लेटर, नई मंजिलें और शहर शहर मंजर के बारे में आप अपना फीडबैक हमारे ईमेल एड्रेस radiokashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। जम्मू कश्मीर को मनुष्यात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त अभियान के तहत सरगर्मियां शद्दोमद से जारी और मनुष्यात के ढांचे को खत्म करने नीज इस लत में फंसे नौजवानों की बाजाबादकारी के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। LG मनोज सिन्हा का पैगाम।
3: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
1: जम्मू कश्मीर में इस सामाजिक बुराई से बचने के इकदाम के बारे में एक माहिर तिब डॉक्टर सरवत हिलाल ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर से बात करते हुए कहा,
4: बदकिस्मती से हम देख रहे हैं आजकल के जो टीन एजर्स हैं ये गलत कामों में मुलवस हो रहे हैं, खासकर जो ड्रग्स हैं इसमें ये बहुत ज्यादा आजकल मुलवस हो रहे हैं। अगर हम देखेंगे गवर्नमेंट का डेटा उठा के देखेंगे कम से कम 13-14 लाख जो बच्चे हमारे इस टाइम वो इस ड्रग्स के शिकार हुए हैं जो पुलिस डिपार्टमेंट है। हम चाहते कि जो आज तक उन्होंने कार्रवाई की है वो अच्छी कार्रवाई कर रहे हैं इस टाइम, लेकिन हम चाहते कि और वो एग्रेसिवली इसमें और ज्यादा इसमें कार्रवाई करे ताकि ड्रग्स की जो ये फितना खड़ा हुआ है को जड़ से खत्म किया जाए।
1: इस दौरान जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम में 1 जून को एक नशा मुखालिफ पदयात्रा का इनेकाद हो रहा है। जनूबी कश्मीर के DIG पुलिस जावेद इकबाल मत्तू ने आज पुलिस के आला अफसरान के हमरा कुलगाम का दौरा करके वहां 1 जून को मुनक्कद होने वाली मनुष्यात मुखालिफ पदयात्रा के लिए किए जा रहे इंतजाम का जायजा लिया। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत श्रीनगर पुलिस ने मनुष्यात के कारोबार में मुलविस बेमिना श्रीनगर के मुदस्सिर अहमद पीर नामी ड्रग स्मगलर की 1.5 करोड़ रुपए मालियत की जायदाद अटैच की है। इसी तरह की एक और कार्रवाई में करना कुपवाड़ा के शफीक अहमद ख्वाजा नामी मनुष्यात फरोश की 50 लाख रुपए मालियत की जायदाद कुर्क की गई। मनुष्यात के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई जारी रखते हुए पुलिस ने शुपियां जिले के इमाम साहब इलाके में गुलाम रसूल डार नामी एक मनुष्यात फरोश की 22,35,000 रुपए मालियत की जायदाद अटैच की है। कुलगाम जिले में पुलिस ने यारीपोरा के इम्तियाज अहमद मीर नामी ड्रग स्मगलर की 50 लाख रुपए और फिरोज अहमद खान की 52 लाख रुपए मालियत की जायदाद अटैच की है। गांधरबल में पुलिस ने सालिम अहमद भट्ट नामी ड्रग स्मगलर को गिरफ्तार किया। हंदवाड़ा में दाऊद अहमद डार नामी मनुष्यात फरोश की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। गांधरबल में पुलिस ने आबिद अहमद डार नामी ड्रग स्मगलर को गिरफ्तार किया है। सोपोर में पुलिस ने नशा मुक्त अभियान के तहत अद्वियात फरोशों की दुकानों का मुआयना किया। अनंतनाग में पुलिस ने भंग की काश्त को तबाह कर दिया। अकलेती अमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा है कि भारतीय हज मिशन को सऊदी अरब की हज और उमरा के वजारत की तरफ से पहली मरतबा 2 बावकार लब्बैतुम अवार्ड्स हासिल हुए हैं। ये अवार्ड्स हज के प्रोग्राम को खुश असलूबी के साथ कराए जाने पर दिए गए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर किरण रिजिजू ने बताया कि हज 2026 के अहम रुकन का कामयाबी के साथ मुकम्मल होना इस बात को जाहिर करता है कि अकलियतों के अमूर की वजारत, भारत की हज कमेटी और सऊदी अरब में भारत के सफीर और जिद्दा में भारतीय कौंसल खाने के दरमियान हम आहंगी पाई जाती है।

0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल यानी 31 मई को अपने महाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में मुख्तलिफ मौजूदात पर अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। यह प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर नशर किया जाएगा। इसके अलावा यह प्रोग्राम न्यूज़ ऑन एआईआर, डीडी न्यूज़ और पीएमओ के यूट्यूब चैनल्स पर भी सुना जा सकेगा। प्रोग्राम सुबह 11 बजे नशर होगा, जिसके फौरन बाद इसका इलाकाई जुबानों में तर्जुमा भी नशर किया जाएगा। इस महाना प्रोग्राम की यह 134वीं किस्त होगी। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने आज पहलगाम का दौरा करके वहां श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में किए गए इंतजाम का जायजा लिया। हमारे नुमाइंदे तसदुक रशीद ने खबर दी है कि डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर बिलाल महीदीन भट्ट ने उन्हें इस बारे में तफसीली जानकारी फराहम की। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए डिविजनल कमिश्नर ने यात्रा के लिए किए गए इंतजाम और सयाहों की आमद में इजाफे पर इत्मीनान का इजहार किया।
1: मैं समझता हूँ बड़ा खुशकिस्मत मौका है हमारे लिए कि टूरिस्ट की चहल पहल हमें पहलगाम में वापस से देखने को मिल रही है। और जैसे मैं आ रहा था, मैं देख रहा था कि ट्रैफिक एक प्रॉब्लम बन गया, जो मैं समझता हूँ अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है। अच्छी बात इसलिए कि टूरिस्ट का फुटफॉल बढ़ रहा है और एक चैलेंज जरूर है हमारे लिए कि किस तरीके से हम बेहतर इसको मैनेज करें। वही हमारा मुद्दा भी है आज आने का कि बेहतरीन इंतजाम रहे हमारे आने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए। सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग हुई है, हमारी सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ मीटिंग हुई है, बड़े अच्छे फीडबैक और सुझाव लोगों ने दिए हैं और हमारी यही कोशिश रहेगी कि सभी सुझावों को कंसिडरेशन में लेकर के बेहतर सर्विसेज के लिए हम काम।
0: वली कामिल हजरत मुल्ला आखून तय्यूब साहब रहमतुल्लाह और हजरत ताज बीबी रहमतुल्लाह के उर्स नहायत अकीदत और एहतराम के साथ मनाए गए। इस सिलसिले में उनके आस्थान आलिया कनी मजार श्रीनगर और फतेह कदल श्रीनगर में खत्मातुल मुअज्जमात और दुरूद अज़कार के मजालिस का इनेकाद हुआ, जिनमें अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। आज इंटरनेशनल पोटैटो डे है। इस दिन को मनाने का मकसद ज़राअत के शोबे में आलू की काश्त की अहमियत को उजागर करना है। इस बरस इस दिन का मौजू वेयर पोटैटोज ग्रो लाइवलीहुड्स फ्लारिश है। आज के दिन की अहमियत के बारे में श्री कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर को बताया।
2: आलू दुनिया के अहम तरीन गिजाई फसलों में से एक फसल है। ये कम मुदत में ज्यादा पैदावार देने वाला और निस्बतन कम पानी इस्तेमाल करने वाला फसल है, जो गिजाई तहफ़ और किसानों की आमदनी में अहम किरदार अदा कर सकता है। आलू की मुख्तलिफ अकसाम मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं, ज्यादातर टेबल पर चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि बाद अकसाम चिप्स फ्रेंच फ्राइज और दीगर प्रोसेसर मसवाद के लिए खास तौर पर मौजूद है। कश्मीर के मकामी लैंड रेसेस खसूस हिरपुरा आलू अपनी बेहतरीन जायके और तवील अरसे तक महफूज रहने की सलाहियत के लिए मशहूर है। हिंदुस्तान दुनिया का दूसरा बड़ा आलू पैदा करने वाला मुल्क है। अगर हम मयारी जदीद टेक्नोलॉजी कोल्ड स्टोरेज और वैल्यू एडिशन को फरोग दें तो आलू किसानों की खुशहाली और जरिए तरक्की का एक अहम मजबूत जरिया बन सकता है।
0: आज पूरे मुल्क में हिंदी सहाफत का दिन मनाया जा रहा है। ये दिन भारत में हिंदी जुबान में सहाफत के आगाज की याद में मनाया जाता है। 1826 में आज ही के दिन कोलकाता से हिंदी रोजनामा उड़ंत मारतंड का पहला शुमारा शाया किया गया था। इस अखबार के बानी मुदीर अनजानी पंडित जुगल किशोर शुक्ला थे, जिन्हें भारत में हिंदी सहाफत का मैमार समझा जाता है। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर सत शर्मा ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के तहत के सिलसिले में मुनक़द एक बयान से खिताब किया। पार्टी के अकलियती मोर्चे के सदर एस रंजोत सिंह नलवा की सरबराही में एक मीटिंग मुनक़द हुई, जिसमें एनडीए सरकार की 12 साल के हुसूलियाबियों को उजागर किया गया। इसी सिलसिले में पार्टी की जानिब से स्टेट सेक्रेटरी पवन शर्मा की सदारत में एक प्रोग्राम मुनक़द हुआ। बीजेपी महिला मोर्चे के अहतमाम से अम्फला जम्मू में एक मीटिंग मुनक़द हुई, जिस दौरान पार्टी के बुनियादी ढांचे को मजीद मजबूत बनाने पर गौरखोज किया गया। रुकने असेंबली खानियार अली मोहम्मद सागर ने आज अपने हल्के इंतखाब के ब्रेन और बाबा डैम इलाकों का दौरा करके मकामी लोगों के मसाइल और मुश्किलात का जायजा लिया। उन्होंने यकीन दिलाया कि बुलवार्ड रोड की फोर लैनिंग का काम दोबारा शुरू करने, निशात और ब्रेन इलाकों में खेल के मैदानों का क्याम और गौसिया अस्पताल खानियार की तौसी के मामलात मुतलिक हुकाम के साथ उठाए जाएंगे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक वजीर सैयद बशारत बुखारी की सदारत में डोडा में पार्टी कारकुनों की एक मीटिंग मुनक्कद हुई। उन्होंने वर्करों से तलकीन की कि वह आने वाले पंचायत और म्यूनिसिपल इंतखाबात के लिए तैयारियां शुरू करें। सैयद बशारत बुखारी ने सीनियर केएएस अफसर खालिद जहांगीर के घर जाकर उनकी वालिदा के इंतकाल पर सोगवार कुंबे के साथ ताजियत का इजहार किया। अब रेल खिदमात से मुतल्लिक यह खबर। जम्मू सूबे के कठुआ और पंजाब के माधोपुर को मिलाने वाले रेल ब्रिज नंबर 17 पर तजदीद का काम मुकम्मल किया गया है। शुमाली रेलवे के कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी दिनेश चंद देशवाल ने आज जम्मू डिवीजन के कई रेलवे अफसरान के हमराह मजकूरा ब्रिज का मुआयना किया। इस रेलवे ब्रिज पर रेल सर्विस चलाए जाने की इजाजत दी गई है। जम्मू सूबे में बैनल अक्वामी सरहद के पास रह रहे

0: लोगों ने मरकज के उस फैसले का खैर मकदम किया है जिसमें सरहद से 15 किलोमीटर के अंदर गैर कानूनी तामीरात हटाए जाने की बात कही गई है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने हाल ही में एक आला सतह की सिक्योरिटी जायजा मीटिंग के दौरान यह फैसला किया था। अरनिया, आरएसपुरा और सुचेतगढ़ समेत सरहदी इलाके के लोगों ने इस अमल में अपनी हिमायत का इजहार किया है। सरकार ने तेल मार्केटिंग कंपनियों से कहा है कि वो मगरबी एशिया की सूरत हाल के चलते मुल्क में 30 दिनों के लिए एलपीजी का एक रिजर्व स्टॉक कायम करें। पेट्रोलियम और कुदरती गैस वजारत की ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में बैन वजारती प्रेस ब्रीफिंग के दौरान मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि भारत खाम तेल स्टोरेज की सलाहियत को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि पिछले 4 दिनों के दौरान मुल्क में मुख्तलिफ कंपनियों की तरफ से 1,80,00,000 गैस सिलेंडर तकसीम किए गए। मौसम, महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 28.4 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 11.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में दिन का ज्यादा से ज्यादा 30.9 डिग्री सेल्सियस और कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में कल तुलुए आफ्ताब सुबह 5:21 पर और गरूब आफ्ताब शाम 7:37 पर होगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ। अगला खबरनामा कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नशर होगा। हमें इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
1: आदाब, आज का तबसरा लेकर मैं महमूद अहमद। हमारा मुल्क हिंदुस्तान अब नए दौर के बुनियादी ढांचे में हैरान कुन पेशरफ्त कर रहा है। डिजिटल इंडिया ने हिंदुस्तान को दुनिया के नुमायां डिजिटल ममालिक की फहरिस्त में शामिल किया है। इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस की जानिब से जारी करदा स्टेट ऑफ इंडेक्स डिजिटल इकोनॉमी 2026 रिपोर्ट के मुताबिक आलमी डिजिटल मंजरनामे में बड़ी तब्दीली देखने को मिल रही है जिसमें भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी डिजिटल मईशत बनकर उभरा है और AI इंडेक्स में 4थे मकाम पर पहुँच गया है। 71 ममालिक और आलमी GDP के 90% हिस्से को शामिल करने वाले इस जामिया मुताले से जाहिर होता है कि डिजिटल कारकर्दगी के मामले में हमारा मुल्क जर्मनी, फ्रांस, जापान और कनाडा जैसी बड़ी तरक्याती मईशतों से आगे निकल गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अब AI का इस्तेमाल करने वाले 72% तरक्की पजीर ममालिक हैं जबकि भारत और चीन मिलकर दुनिया में AI अपनाने का तकरीबन बराबर हिस्सा रखते हैं। AI तारीख के किसी भी साबिका टेक्नोलॉजी के मुकाबले में सबसे तेजी से अपनाए जाने वाली टेक्नोलॉजी बन गई है और लॉन्च होने के फौरन बाद ही ये तरक्की पजीर ममालिक में तेजी से मकबूल हो गई है। दुनिया की सरफहरिस्त 5 डिजिटल मईशतों में अब 3 ममालिक यानी चीन, सिंगापुर और भारत इंडो पैसिफिक खित्ते से हैं जो रिवायती शुमाली अटलांटिक ममालिक के साथ एक नए डिजिटल निजाम के उभरने का इशारा देता है। हमारा मुल्क तेजी से तरक्की कर रहा है। हालिया बरसों के दौरान हुई तरक्की ने पूरी दुनिया को भारत की जानिब मुतवज्जा किया है। तबसरा खत्म हुआ। शब्बा खैर।
2: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
3: वादी की आवाज, पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में सुनने वालों के लिए ये प्रोग्राम हर रोज हमारे वक्त के मुताबिक 8 बजे और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे शाम नश होता है।

दोस्तों प्रोग्राम के नाम अगली फरमाइश आई है पटेल नगर मलोट पंजाब से। आप हैं डॉक्टर रमेश कुमार जजूरिया, गीता रानी जजूरिया, गगनदीप जजूरिया, बेबी

आरजू जजूरिया और गुड्डू। आपने लता मंगेशकर की आवाज़ में नगमा सुनना चाहा है, फिल्म का नाम है मनमौजी। इसी नगमे को आप सब दोस्त भी सुनना चाहते हैं। आप हैं फाजिल का पंजाब से भूषण खेरा, लाडी खेरा, शालिनी खेरा, विशाल खेरा, विशु खेरा, टिवानसी खेरा, वानी खेरा, आर बी खेरा और जीवन बुक। जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष सोनी, मोहिनी ऋतिक और बलवीर सिंह। बद्रवा से मेल आया है पुरुषोत्तम का। वार्डिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोरा। निसार सलमानी ने मेल भेजा है दनोरी तेलीवाला उत्तराखंड से। आपके साथ है नौशाद, बेबी आलिया और आयान बाबू। पांडर कुआड़ा से मेल आया है अनिल बुरांडे की जानिब से। आपके साथ हैं उषा बुरांडे, अनुश्री और धनश्री। बलारशाह से सूरज, प्राची और एकलव्य। और एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोत, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोत ने मेल भेजा है। पेश है आप सभी दोस्तों की फरमाइश पर लता मंगेशकर की आवाज़ में नगमा फिल्म मनमौजी से।

ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। आप इस वक्त समाप्त कर रहे हैं प्रोग्राम वादी की आवाज़, और वादी की आवाज़ के आज के शुमारे में हम आपको सुनवाते हैं आप ही के पसंद के हुए नगमे। दोस्तों, अब पेश है फिल्म कर्ज से नगमा, किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ों में। सुनना चाहते हैं सल्लर पहलगाम से पीरजादा मेराजुद्दीन, निज़ामुद्दीन और कैसरुद्दीन, चंद्रनगर सहारनपुर से।

मेल आया है सुरेश डोम, देवशंकर डोम, सोनाली डोम और आशा डोमिन की जानिब से। इंदिरा चौक दिल्ली से अजीम वकार, माहिरा अजीम और नगमा अजीम ने मेल भेजा है। बेबी अंसारी, निशा अंसारी और डब्लू अंसारी का मेल हमें मौसूल हुआ है। इंदिरा विहार दिल्ली से, बक्सर बिहार से राज वली अंसारी, एस डी राज और आपके साथ आपके बहुत सारे दोस्त। जिला खरगोन सनावत एमपी से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र, शेख मूसा और राजकुमार बोड़ाना। सुदामा नगर खंडवा से मेल आया है लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, रितु और मुकेश जगताप की जानिब से। और गोविंदपुर सीकर राजस्थान से मेल आया है दातार सिंह, संगीता कंवर, तुषार सिंह और रिंकी शेखावत की जानिब से। सुनिए अपनी पसंद पर किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ों में नगमा। फिल्म का नाम है कर्ज़।

दोस्तों ये मेल हमें मौसूल हुआ है ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से। आप हैं श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत, संचित, प्रथमेश देशमुख, स्वरत देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, कुड़ी सेक्टर 5 सूर्यनगर जोधपुर से मेल आया है रमेश चंद्र चौहान की जानिब से। आपके साथ है मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गार्बी और हिमाक्ष। छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा। जूली जगदीश, प्राची और प्रवीण पुजारी ने मेल भेजा है स्वराष्ट्र राजकोट से। ग्रीन चौक मोरबी से कुंदन, रंजन और आपके साथ आपके बहुत सारे दोस्त। राज पैलेस माओनाथ बंजन, उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा। शिव मंदिर हकीकतपुरा माओ से ये मेल हमें मौसूल हुआ है मुन्ना बाई, पिंकी, आर्यन, कृष्णा और पीहू सरनकर की जानिब से। जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मेल आया है मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून की जानिब से। आप सभी दोस्त सुनना चाहते हैं आशा भोसले की आवाज़ में नगमा फिल्म अंगूर से। सुनिए अपनी पसंद।

जी दोस्तों, अब पेश है मुकेश की आवाज में नगमा। फिल्म का नाम है हिमालय की गोद में और सुनने के ख्वाहिशमंद है संबलपुर कोंकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव, ग्राम जसवाड़ी, जिला खंडवा एमपी से दुर्गेश नागनपुरे, वंदना बाबू, दिव्यांश और सूरज कुमार डकसे, नागचुंडूर संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफार, अब्दुल हक, जियाउल हक, मोहम्मद उमर और राजेंद्र कटारे, बाटापारा छत्तीसगढ़ से मेल आया है सोहन जोशी जी और पायल जोशी जी की जानिब से, बापू कॉलोनी अब्दुल्ला मस्जिद खंडवा एमपी से शालिया डावर, बेबी हलीमा डावर, जिक्रा डावर और आयशा खत्री, जिला दार धर्मपुरी से मेल आया है मूसा जी खत्री, ईशा जी खत्री और जाकिर खत्री की जानिब से, दिनेश वर्मा ने मेल भेजा है रिंगनी छत्तीसगढ़ से, आपके साथ हैं करुणा वर्मा, दतरेंगी से भगवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा ने मेल भेजा है। सुनिए अपनी फरमाइश पर मुकेश की आवाज में नगमा। फिल्म का नाम है हिमालय की गोद में।

0: दोस्तों, इसके साथ ही अब आज के प्रोग्राम का जो वक्त है वो मुकम्मल हुआ चाहता है। अगले प्रोग्राम में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज।
1: वादे की आवाज। पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में सुनने वालों के लिए ये प्रोग्राम हर रोज हमारे वक्त के मुताबिक 8 बजे और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे शाम नश्र होता है।

0: आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज मीडियम में 268.1 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर।
1: कशिर छे नंदरिश्त लल्दिनी जबान पचेशने वो कशिर बोलून तो समझून कशिर छे सठा मीर

0: यह आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज है। मीडियम में 268.8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर 8:30 हो रहे हैं। अब आप समाप्त करेंगे प्रोग्राम जिल्लानामा एक मुख्तसर वक्फे के फौरन बाद।
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
2: डिस्ट्रिक्ट न्यूज लेटर, मुख्तलिफ अजला में जारी तरक्याती मंसूबों से मुतलिक जामिया रिपोर्ट्स पर मबनी आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर की पेशकश। डिस्ट्रिक्ट न्यूज लेटर।
3: जिला नामा का ताज़ा शुमारा लेकर आपका मेजबान शेख तजम्मुल हाजिर है। आज के जिला नामा में हम जनूबी कश्मीर के शोपियान जिले में खांचा फरोशों के लिए मरकजी सरकार की जानिब से चलाई जा रही पीएम स्वनिधि और दीगर बाकी फलाही स्कीमों से मुतल्लिक बात करेंगे। सभी कस्बों और शहरों के अंदर सड़क किनारे या फिर मखसूस मकामात पर रेडी लगाकर जरूरत की मुख्तलिफ नवा चीजें बेचकर गुजर बसर करने वाले हमारे मेहनतकशों के समाजी और मुआशी रुतबे को बढ़ाने की गरज से मरकजी सरकार ने कुछ उर्सा कबल पीएम स्वनिधि स्कीम मुरतब करके मुल्क भर में इसको अमलाने का सिलसिला शुरू किया। हमारे खांचा फरोश चूंकि अक्सर बेशतर मुआशी एतबार से पसमांदा पस मंजर से वाबस्ता होते हैं, लिहाजा रेडी पर साजो सामान रखकर बेचने के लिए भी कभी कभार उनके पास पैसा नहीं होता। हुकूमत ने इसी सूरत हाल का इदराक करते हुए इन लोगों के लिए पीएम स्वनिधि स्कीम मुअर्रज़ वजूद में लाई। इस स्कीम के तहत इन लोगों को बगैर सूद वाले कर्जे फराहम किए जाते हैं ताकि वो अपना कारोबार बगैर मुश्किल के चला सकें। शोपियान जिले में इस स्कीम की अमलावरी का क्या मंजरनामा है, इस सिलसिले में जब हमारे नुमाइंदे जानिसार अहमद ने म्यूनिसिपल काउंसिल शोपियान के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुहेल मलिक से बात की तो उन्होंने तफसीलात फराहम करते हुए कहा,
4: पीएम स्वनिधि प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की सदारत में 27 अगस्त 2025 को पीएम स्वनिधि स्कीम की रिस्ट्रक्चरिंग और एक्सटेंशन को मंजूरी दी गई। ये स्कीम पहले 2020 में पेंडेमिक के दौरान स्ट्रीट वेंडर्स को रिलीफ देने के लिए लॉन्च की गई थी।

0: अब इसका फोकस जो है वो होलिस्टिक सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ और फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ शिफ्ट कर दिया गया, खासतौर पर स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। अच्छा, अगर हम देखें तो की स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या है इसमें जो की चेंजेस हैं वो ये है कि स्कीम का जो लेंडिंग पीरियड है अब 31 मार्च 2030 तक एक्सटेंड किया गया है। इसका जो लोन लिमिट है यानी जो रिवैम्प्ड स्कीम है इसके तहत इनिशियल लोन ट्रांश की रकम जो है उसमें अब इजाफा किया गया है। फर्स्ट ट्रांश में पहले 10,000 दिए जाते थे, अब 15,000 दिए जाते हैं। सेकंड ट्रांश में 20,000 का लोन फराहम किया जाता था, अब 25,000 का। और इसी तरीके से थर्ड ट्रांश में 50,000 जो है का अमाउंट जो है वो फराहम किया जाता है। जो बेनिफिशियरीज अपना दूसरा लोन रिपे करते हैं वो यूपीआई लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड्स के लिए भी एलिजिबल होंगे, तो ये एक एक्स्ट्रा फीचर है जो पीएम स्वनिधि 2.0 है, और स्पेशली उन लोगों के लिए जिसने फॉर्मल क्रेडिट हिस्ट्री जो है वो जो उसकी मजबूत होगी उन्हीं के लिए जो है ये क्रेडिट कार्ड फराहम किया जाएगा। और इस स्कीम का अगर और एक फीचर देखें वो ये है कि अब एक्सपेंडेड कवरेज है, जैसे कि स्कीम जो है इसका सिटी रीजन अप्रोच जो है जिसमें पहले स्टेटूटरी टाउन्स के लिए ये एप्लीकेबल थी, लेकिन अब ये उसके अलावा सेंसस टाउन्स और जो पेरी अर्बन एरियाज हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। अगर हम देखें तो इंसेंटिव्स और बेनिफिट्स क्या है इसके, इसमें ये है कि लाइक टाइम पर रिपेमेंट करने पर वेंडर्स को 7% इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी जो क्वार्टरली बेसिस पर डायरेक्ट उनके अकाउंट्स में क्रेडिट हो जाएगी, और जो डिजिटल ट्रांजेक्शन है को फरोग देने के लिए डिजिटल कैशबैक प्रोवाइड किया जाएगा। अगर रेगुलर रिटेल सेल्स हों तो उसमें 1200 रुपए तक हर साल तक कैशबैक आएगा, और जो होलसेलर परचेजेस हैं उन पर एडिशनल इंसेंटिव्स मिलेंगे। और अगर कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करें तो FSSAI जैसे पार्टनर्स के जरिए वेंडर्स को फूड सेफ्टी, डिजिटल स्किल्स और फाइनेंशियल लिटरेसी की ट्रेनिंग दी जाती है। और एक और कंपोनेंट जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा वो है स्वनिधि से समृद्धि, जिसमें एक अहम चीज है वो है सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइलिंग। ये एक ऐसा कंपोनेंट है जिसके तहत वेंडर्स और उनके खानदान को 8 मुख्तलिफ वेलफेयर स्कीम से लिंक किया जाता है जिसमें इंश्योरेंस और पेंशन स्कीम्स भी शामिल हैं। अगर इन स्कीम्स की जो जानकारी है वो ये है, जैसे 8 स्कीमें हैं, जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जिसमें लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलता है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर मिलता है, या प्रधानमंत्री जनधन योजना जिसमें बैंकिंग सर्विसेज और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है, BOCW एक्ट रजिस्ट्रेशन जिसमें कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए सेफ्टी और सोशल सिक्योरिटी फराहम की जाती है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना बुढ़ापे के लिए पेंशन स्कीम है जिसमें डिफरेंट एजेस जो है और डिफरेंट सब्सक्रिप्शन को लेकर डिफरेंट पेंशन प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि बुढ़ापे में इनको हेल्प मिले, और वन नेशन वन राशन कार्ड जिसमें फूड ग्रेन्स तक रसाई का फायदा है, जनानी सुरक्षा योजना जिसमें हामला औरतों के लिए मैटरनल हेल्थ सेफ्टी है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जिसमें जो एक मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम है और मैटरनिटी के लिहाज से जिसमें फायदा मिलता है। अगर डिस्ट्रिक्ट शोपियान की बात करें अभी तक 250 बेनिफिशियरी जो है वो शामिल है पीएम स्वनिधि में, और जो उनके लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन है उनके पास सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग जरूरी है, सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग COW और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो है वो जरूरी है। और अप्लाई कैसे करना है, एप्लीकेंट जो है वो सिंपली जो ऑफिशियल पोर्टल है पीएम स्वनिधि का उस पर ऑनलाइन आके अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं।
1: और अब माइक एजाजा अख्तर के हवाले।
2: शुक्रिया तजमुल। समयीन, पीएम स्वनिधि स्कीम ने रेड़ी वालों की मुआशी और समाजी हालत सुधारने में गुज़श्त बरसों के दौरान काफी मुस्बत काम किया है। इस स्कीम की बदौलत माली मुश्किलात के शिकार इन रेड़ी फरोशों ने बगैर किसी तवालत के कर्जे हासिल किए हैं, और स्कीम की अच्छी बात यह है कि इसके तहत मिलने वाला कर्जा यक वक्ती नहीं बल्कि इजाफे के साथ कई मरतबा मिलता है। हमारे नुमाइंदे जानिसार अहमद ने इस स्कीम से मुस्तफीद होने वाले कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने अपने तासुरात यूं बयां किए।
3: मेरा नाम मंजूर अहमद भट्ट, यानी त्रेम किस्म के चलन, गोटी में 10,000, पत्नी में 20,000, पत्नी लास्ट 15,000 में चलन। ये आज असल स्कीम, अमे सोल माजा तेरान ठीक पा, मगर इंटरेस्ट थोड़ा बहुत ज्यादा पा नारे असल।
4: इंटरेस्ट कूटा तुम पे दिन अच्छ 7% गवर्नमेंट दिवान, 3% तुम पे दिन
3: फिलहाल 7% रटान बराबर पे।

0: कहीं सिक्किमों की अमलावरी में रास्ते का पत्थर बन जाते हैं, कहीं सिक्किमों के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल तवील होता है, तो कहीं दफ्तरी तवालत मुस्तहिक अफराद को कुछ इतना थका देती है कि कुछ लोग इन सिक्किमों से मुस्तफीद होने की तगोदो ही छोड़ देते हैं। क्या ही अच्छा होता कि इन फलाही सिक्किमों की अमलावरी के दौरान मुतलका हुकाम मुस्तहिक लोगों से फीडबैक भी लेते और फिर उसी फीडबैक के हिसाब से कवायद और जवाबित में जरूरी तरामीम भी की जाती। और तो और हमारी न जाने कितनी फलाही सिक्किमें ऐसी भी है जिनके हवाले से मुतलका लोगों में जानकारी बहुत कम या कहीं कहीं पर न होने के बराबर है। इस जानिब हुकाम को फौरी और लाजमी तवज्जो देने की जरूरत है।
1: इसके साथ ही जलनामा का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर हुआ। निगरान आला तारिक राथर, तरतीब तहजीब अशफाक अहमद शाह और कौश की कश्यप, रिकॉर्डिंग व एडिटिंग नसीर अहमद लोन, तहरीर शेख तजम्मुल, पेशकश रीजनल न्यूज यूनिट आकाशवाणी श्रीनगर।
2: समीत हमारा शोबे खबर की पेशकश जिलानामा। आज का जिलानामा जिला शोपियां की तामीर व तरक्की से मुतालिक था। आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज।

समीन आपने अपने रेडियो सेट्स पे ट्यून किया है आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन मीडियम वेव 268.8 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। इसके अलावा आप हमें सुन सकते हैं डीटीएच और आकाशवाणी की लाइव मोबाइल ऐप पर। 8:45 हो रहे हैं, थोड़ी देर में आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी खबरों का बुलेटिन नष्ट होगा, जरा सा इंतजार फरमाएं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। कर्नाटक में डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया, बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे और ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉक्टर जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि डी के शिव कुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
1: जब मीटिंग आरंभ हुई तो सिद्धरमैया द्वारा एक लाइन का रेजोल्यूशन दिया गया कि CLP नेता का चयन का कार्य AICC को सौंप देना चाहिए। इसके बाद AICC जनरल सेक्रेटरी KC मेरो गोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सिद्धरमैया से अलग मुख्यमंत्री के कक्ष में बातचीत की। तब तक CLP मीटिंग रुकी रही। जब फिर से मीटिंग आरंभ

0: हुई तो ये रेजोल्यूशन पारित किया गया कि डी के शिवकुमार नेता के रूप में चुने गए हैं। इसके बाद सभी विधायक राज्यपाल से मिले और डी के शिवकुमार को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाने के लिए वक्त मांगा। अब डी के शिवकुमार और अन्य मंत्रिमंडल के सदस्य जून 3 तारीख को 4:05 पर शपथ ग्रहण करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के सचेतक एग्री एसएस कृष्णमूर्ति ने आज राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और उनसे सत्तारूढ़ टीवी के द्वारा कथित तौर पर 4 विधायकों की खरीद फरोख्त के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि ये चारों विधायक ऑल इंडिया अन्ना डीएमके से इस्तीफा देने के तुरंत बाद टीवीके में शामिल हो गए। श्री कृष्णमूर्ति ने कहा कि इन विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन करते हुए टीवीके सरकार के पक्ष में मतदान किया। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वय की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहां विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि एआई और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है।
3: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
1: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में स्टार्टअप लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
4: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहां से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीन है जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीन है जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा।

0: हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी ये कार्यक्रम प्रसारित करेगा। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज शाम श्री ऊ मिन से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के प्रति म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। उन्होंने कहा कि वे शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सोमवार को उनकी मुलाकात का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले दिन में म्यांमार के राष्ट्रपति बिहार में गया गए और महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि चिकित्सा वस्त्र, तकनीकी वस्त्र और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी क्षेत्र भारत की आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने की अपार क्षमता रखते हैं। विशाखापट्टनम में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भारत को वैश्विक विनिर्माण और नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि ये प्रयास मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। सरकार ने सोमवार से 31 अक्टूबर तक कपास के आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी रूप से छूट दी है। कपड़ा मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि ये निर्णय कपास किसानों और संपूर्ण कपास मूल्य श्रृंखला के हितों को सर्वोपरि रखते हुए लिया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान लागू किया गया ये उपाय कपड़ा उद्योग के लिए कपास की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण के लिए तैयार हैं। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड में जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है।
1: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है। साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। इस अवसर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बधाई संदेश पढ़ा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हिंदी पत्रकारिता की द्विशताब्दी भारत की चेतना, विचार और जन जागरूकता का उत्सव है। श्री सिंधिया ने कहा कि पत्रकारिता का इतिहास भारत का इतिहास भी है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय जागृति का एक आंदोलन है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने डिजी यात्रा ऐप के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक निर्बाध यात्राएं संपन्न कराने के लिए डिजी यात्रा टीम को बधाई दी है। श्री नायडू ने कहा है कि ये उपलब्धि निर्बाध और कागज तथा संपर्क रहित प्रक्रिया पर यात्रियों के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है। वर्तमान समय में डिजी यात्रा ऐप पर 38 हवाई अड्डे हैं और अगले वर्ष इनमें 27 और हवाई अड्डे जुड़ जाएंगे। पश्चिम बंगाल में स्वच्छता में सुधार और नागरिक समस्याओं का तेजी से समाधान करने के लिए एक नया स्वच्छ मोबाइल ऐप जारी किया गया है। आवासन और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने आज कोलकाता में इस ऐप को जारी किया। इस ऐप के जरिए नागरिक अपनी समस्याओं जैसे रुका हुआ पानी, कचरा या नालियों का फोटो अपलोड कर सकते हैं। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम आई

0: टीआई क्लस्टर के लिए एक निजी कंपनी आर्सेलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया की रणनीतिक निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। आंध्र प्रदेश इस योजना के अंतर्गत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की है। कल आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, माहे, लक्षद्वीप और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा की संभावना है। अगले दो दिनों में ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिकल और मध्य प्रदेश में भी तेज बारिश हो सकती है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने का अनुमान है। और अब बात खेलों की। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सीओ सेउंग जाए और किम वॉन हो को हराया। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में हार गई। ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने पांचवें ओवर में एक विकेट पर 34 रन बना लिए हैं। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। भारतीय हज मिशन ने सऊदी अरब में आयोजित इस वर्ष के खितमाहू मिस्क समारोह में दो प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं। ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। सऊदी हज मंत्रालय द्वारा तीर्थयात्रियों की उत्कृष्ट सेवाओं को मान्यता देने के लिए प्रतिवर्ष दिए जाने वाले लब्बैतुम पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ हज समन्वय और संचार श्रेणी के तहत भारतीय हज मिशन को प्रदान किए गए हैं। इस वर्ष लगभग 1,75,000 भारतीय हज के लिए गए थे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कर्नाटक में डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे और ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हमारी आवाज अब तक आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से पहुंच रही है मीडियम में 268.8 एक मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारा अगला ऐलान सुनिए। ये जो आकाशवाणी हुंद श्रीनगर स्टेशन समीन रोज संज 9 बजे वोल्यू खुश मौसीकी भोजो। ये जो कला में डॉक्टर सतीश विमलीकरण पेश मुनीर अहमद मीर।

ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। कर्नाटक में कांग्रेस कानून साज पार्टी ने डीके शिवकुमार को अपना लीडर मुंतखब किया है। वो बुध के रोज नए वजीर आला की हैसियत से हलफ लेंगे। कीमियावी खाद के मुतवाजन और सोच समझकर इस्तेमाल को फरोग देने की खातिर फिर से एक माह तवील खेत बचाओ अभियान शुरू होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्याल का इजहार करेंगे। भारतीय मौसमियात महकमे ने मशरकी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में कल ओले गिरने और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की पेशगोई की है। बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी सिंगापुर ओपन के मर्दों के डबल्स के फाइनल में पहुंच गई है। और खवातीन क्रिकेट में ब्रिस्टल में दूसरे टी20 मैच में इंग्लैंड ने भारत के सामने 169 रन का निशाना रखा है। अब खबरें तफसील से। कर्नाटक में वजीर आला के ओहदे से सिद्धरमैया के इस्तीफे के बाद विधानसभा में कांग्रेस कानून साज पार्टी की मीटिंग में डीके शिवकुमार को नया लीडर मुंतखब किया गया है। इस सिलसिले में सिद्धरमैया और डॉक्टर जी परमेश्वर की जानिब से पेश की गई करारदाद को अरकान असेंबली ने मंजूर कर लिया। इस तरह डीके शिवकुमार कर्नाटक के नए वजीर आला होंगे। जनाब शिवकुमार को लीडर मुंतखब करने से मुतालिक करारदाद मंजूर किए जाने के बाद मीटिंग में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी के सी वेणुगोपाल ने सभी कांग्रेस अरकान असेंबली को

0: बाजाब्ता तौर पर इस फैसले से मुतला किया। बाद में नामानिगारों को जानकारी देते हुए जनाब वेणुगोपाल ने ऐलान किया कि पार्टी के अरकान असम्बली ने इत्तफाक राय से डी के शिव कुमार को अपना लीडर मुंतखब किया है और वो सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए गवर्नर मौसूफ से मिलने जाएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि हलफबरदारी की तकरीब 3 जून को होगी। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: तनाव से भरे कुछ लम्हात के बाद ये खबर सामने आई कि डी के शिव कुमार को कांग्रेस कानून साज पार्टी का लीडर मुंतखब कर लिया गया है। सुबुकदोश होने वाले वजीर आला सिद्धरमैया ने एक सतर पर मुश्तमिल ये करारदाद पेश की थी कि कानून साज पार्टी के लीडर के इंतखाब का मामला ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी पर छोड़ दिया जाना चाहिए। इसके बाद AICC के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने विधानसौधा में वजीर आला के चैम्बर में सिद्धरमैया के साथ अलहदा अलहदा बातचीत की। इस तरह कानून साज पार्टी की मीटिंग में वक्फे के बाद जब ये दोबारा शुरू हुई तो डी के शिव कुमार को लीडर मुंतखब कर लिया गया। इसके बाद रियासत के गवर्नर ने डी के शिव कुमार को वजीर आला की हैसियत से हलफ लेने के लिए मदु किया। रियासत के गवर्नर के साथ मुलाकात के बाद ये ऐलान किया गया कि डी के शिव कुमार और उनकी काबीना के साथियों की हलफबरदारी की तकरीब 3 जून को सुपहर 4:05 पर होगी। बेंगलुरु से सुधेंद्र की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए खेत बचाओ अभियान को एक जामे कौमी मुहिम की शक्ल दी जानी चाहिए। वजीर मौसूफ ने आज नई दिल्ली में खेत बचाओ अभियान की तैयारियों के सिलसिले में आला सतह की मीटिंग की सदारत करते हुए ये बात कही। मीटिंग के दौरान जनाब चौहान ने कहा कि मस्कूरा मुहिम में कीमियावी खाद के मुतवाजन और सोच समझकर इस्तेमाल करने, मौसम से वाबस्ता चैलेंजों के मद्देनजर किसानों को बरवक्त सलाह देने, पंचायत सतह पर सरगर्म शमूलियत और मुतालिका स्कीमों के फायदे सीधे गांव तक पहुंचाने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। पेश है एक रिपोर्ट।
2: पीर के रोज से मुल्क भर में खेत बचाओ अभियान का आगाज होगा और ये 30 जून तक जारी रहेगा। इस मुहिम में शामिल सभी इदारों के हम राबताकार के तौर पर कृषि विज्ञान केंद्र को मुकर्रर किया गया है। 1600 ज़्यादा टीमें तश्कील दी गई और खाद के ज़्यादा इस्तेमाल वाले 100 अजला के लिए कुल 500 टीमें बनाई गई हैं। मुहिम के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को बरवक्त और सही रहनुमाई फराहम करने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। ज़राअत की वजारत ने जोर देकर कहा है कि कीमियावी खाद के बेतहाशा इस्तेमाल को कम करना इस मुहिम का असल मकसद है। किसानों को खाद के मुतवाजन इस्तेमाल और मिट्टी की जांच की बुनियाद पर दीगर ज़रई सामान को इस्तेमाल में लाने, माहौल के लिए साजगार खाद, नामियाती और हयातियाती अशिया के इस्तेमाल को फ़रोग देने के सिलसिले में मालूमात फराहम की जाएगी। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद आजम खान।
0: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क लोगों से अपने ख्याल का इजहार करेंगे। ये महाना रेडियो प्रोग्राम का 134वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क्स, AIR न्यूज़ की वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी नशर होगा। इसे AIR न्यूज़, DT न्यूज़, वज़ीर आज़म के दफ्तर और इत्तला तो नशरियात की वजारत के यूट्यूब चैनलों पर बराह रास्त सुना जा सकेगा। हिंदी नशरिये के फौरन बाद आकाशवाणी से इस प्रोग्राम को इलाकाई जबानों में नशर किया जाएगा। अमले, अवामी शिकायत और पेंशन महकमे के वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में मसनूई जहानत AI पर मबनी CP ग्राम्स वॉयस चैटबोर्ड समाधान दीदी का आगाज किया। इसे भाषिनी के इश्तराक से इंतजामी इस्लाहात और अवामी शिकायत के महकमे ने तैयार किया है। इस चैटबोर्ड के तवसुत से लोग गुफ्तगू के जरिए अवामी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। मीडिया से खिताब करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने समाधान दीदी को शिकायत के इजाले से मुतालिक सरकार के निजाम को सभी के लिए दस्तयाब कराने की समत एक अहम कदम करार दिया। वजीर मौसूफ ने इस बात को उजागर किया कि समाधान दीदी सरदस्त सभी 22 शेड्यूल्ड भारतीय जबानों में काम करेगा और इसमें मजीद इलाकाई और मकामी जबानें शामिल करने के लिए कोशिशें जारी हैं।
3: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: सरकार ने कपास की दरामद को अगले महीने की पहली

से इस साल 31 अक्टूबर तक कस्टम्स ड्यूटी से आरजी तौर पर मुस्तस्ना कर दिया है। एक नोटिफिकेशन में टेक्सटाइल्स की वजारत ने कहा है कि कपास के किसानों और कपास से मुताल्लिक पूरी वैल्यू चेन के मफाद को मलहूज़ खातिर रखते हुए ये फैसला किया गया है। इसमें कहा गया है कि अब जबकि कपास का सीजन नहीं है, तो इस कदम पर अमल दरामद से टेक्सटाइल सनत के लिए कपास की मुनासिब दस्तियाबी को यकीनी बनाया जा सकेगा, एमएसएमई इदारों की मदद हो सकेगी, लागत को एतदाल पर लाया जा सकेगा और भारतीय टेक्सटाइल्स की मुसाबकत को मुस्तहकम बनाया जा सकेगा। वजारत ने जोर देकर कहा है कि इस इकदाम से किसानों के मफादात का तहफुज होगा और मार्केट में इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जा सकेगा। इलेक्ट्रॉनिक और आईटी महकमे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने आज ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में लोहम का दौरा किया, जो पायदार अहम मादनियात और जदीद साजो सामान तैयार कर रहा है। मीडिया से बातचीत करते हुए जनाब वैष्णव ने कहा कि मुख्तलिफ जदीद टेक्नोलॉजीज

0: इलेक्ट्रॉनिक और आईटी महकमे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने आज ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में लोहम का दौरा किया, जो पायदार अहम मादनियात और जदीद साजो सामान तैयार कर रहा है। मीडिया से बातचीत करते हुए जनाब वैष्णव ने कहा कि मुख्तलिफ जदीद टेक्नोलॉजीज में लिथियम बैटरियां और मकनातीस कलीदी रोल अदा करते हैं और वजीर आजम नरेंद्र मोदी का नजरिया है कि इन्हें भारत में ही तैयार किया जाए और इसकी टेक्नोलॉजी को भी अंदरून मुल्क ही तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि इस नज़रिए से मुताबकत रखते हुए लोहम नामी एक नए स्टार्टअप ने कामयाबी के साथ ये अहम टेक्नोलॉजी तैयार की है।
1: मेटल्स में बैटरी बनाने के लिए, परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोडक्शन हो, चाहे किसी भी तरह का, आज की बड़ी मशीनों में सब जगह परमानेंट मैग्नेट्स और लिथियम की बैटरीज का उपयोग होता है। इसका प्रोडक्शन भारत में हो और बड़ी बात यह है कि इसकी टेक्नोलॉजी भारत में डेवलप हो, ऐसा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है। इस विजन के तहत एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहां से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीन है जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीन है जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। म्यांमार के सदर ऊ मिन आउं लाइन भारत के 5 रोजा दौरे के तहत आज शाम नई दिल्ली पहुंचे हैं। खारजी उमूर के मरकजी वजीर ममलिकत कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका खैर मकदम किया। इससे कबल आज म्यांमार के सदर ने बिहार के गया का दौरा किया और वहां महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके हमरा मुख्तलिफ काबीनी वुजरा, सीनियर अहदेदारान और कारोबारी रहनुमाओं का एक आला सतही वफद भी है। म्यांमार के सदर का ओहदा संभालने के बाद यह उनका भारत का पहला दौरा है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज उनसे मुलाकात की। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर डॉक्टर जयशंकर ने तवील मुद्दती बाहमी इश्तराक को मुस्तहकम करने के तई म्यांमार के सदर की मुस्बत सोच की सताइश की। उन्होंने कहा कि वो अमन, तरक्की और खुशहाली की खातिर शराकतदारी की पेशरफ्त के सिलसिले में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ जनाब लाइन की मीटिंग के मुंतजर हैं। म्यांमार के सदर दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी और तहजीबी रवाबित को मजीद मुस्तहकम करने की खातिर पीर के रोज वजीर आजम मोदी से बातचीत करेंगे। वो एक कारोबारी फोरम में भी शिरकत करेंगे। कौमी सेहत अथॉरिटी की जानिब से नाफिज करदा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत मुल्क भर में 90 करोड़ आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट्स आभा का तारीखी संगे मील हासिल किया गया। सेहत व खानदानी बहबूद की वजारत ने कहा कि एक मरबूत मुश्तरका तरीक़ेकार और शहरियों पर मरकूज डिजिटल सेहत इको निज़ाम की जानिब भारत के सफर में यह एक अहम पेशरफ्त है। वजारत ने कहा कि 2021 में 14 करोड़ से ज्यादा आभा अकाउंट्स की तादाद बढ़कर इस साल 90 करोड़ हो गई है। दिल्ली पुलिस के खसूसी शोबे ने पाकिस्तान की ISI और मुंबई के जराइम पेशा ग्रोह के नेटवर्क के इशारे पर काम करने वाले 8 मुलजिमों को गिरफ्तार किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए दिल्ली पुलिस के खसूसी शोबे के खसूसी पुलिस कमिश्नर अनिल शुक्ला ने बताया कि इन मुलजिमों को दिल्ली में अहम तनसीबात और सिक्योरिटी एहलकारों पर हमला करने का काम सौंपा गया था। उन्होंने कहा कि इन मुलजिमों के कब्जे से हथियार और धमाकाखेज मादा जब्त किया गया है। जनाब शुक्ला ने बताया कि ये मुलजिम सरहद पार अपने आकाओं के इशारे पर काम कर रहे थे। इन्हें दिल्ली, महाराष्ट्र और पुणे से गिरफ्तार किया गया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने कल आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरलम, माहे, लक्षद्वीप और मुल्क के शिमाल मशरकी हिस्सों में तेज बारिश की पेशगोई की है। अगले 2 दिन के दौरान ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, क्राइकल और मध्य प्रदेश में भी शदीद बारिश का इम्कान है। मौसमियात महकमे ने मशरकी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ खित्ते में कल आंधी और ज्वालाबारी के साथ बारिश की पेशगोई की है। इसके अलावा दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और मगरबी बंगाल में गंगा की तराई वाले खित्ते में भी कल गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश होने का इम्कान है। केरलम में मानसून से पहले की बारिश के तनाजुर में भारतीय मौसमियात महकमे ने तिरुवनंतपुरम जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जिले के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश हुई है। कई इलाकों से पानी जमा हो जाने और ट्रैफिक में खलल पड़ने की इत्तला मिली है। शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर राम मोहन नायडू ने डिजी यात्रा ऐप के जरिए 10 करोड़ से ज्यादा बिला रुकावट सफर के तजुर्बात को यकीनी बनाने के लिए डिजी यात्रा टीम को मुबारकबाद दी। जनाब नायडू ने कहा कि इस संगे मील से बिला रुकावट, पेपर के बगैर और किसी

0: गाम नाम का एक गांव है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। इब्तदाई तालीम मेरी वहीं से हो गई है। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बॉयज़ खानाबल में मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। उसके बाद 2001 2002 में मैंने मास्टर्स प्रोग्राम मैथमेटिक्स में कंप्लीट किया है। मास्टर्स के बाद एक चीज़ मैं यहाँ बोलना चाहूँगा कि हमारे यहाँ बच्चों का जो आजकल तकाजा है मैथमेटिक्स के हवाले से, उस ज़िमन में थोड़ा बहुत मैं हट के बोलना चाहूँगा, क्योंकि क्या हुआ है कि जब मैंने मास्टर्स किया है, मुझे उसी टाइम दिमाग में डाला गया है कि नहीं, मैथमेटिक्स बहुत ही मुश्किल है और उसका फील्ड कुछ ऐसा है जहाँ पर ये जॉब ओरिएंटेड कोर्स नहीं माना जाता था। ये एक फोबिया सा डेवलप किया गया था, मैं भी उसका शिकार हो गया था, होने वाला था, लेकिन अल्लाह का करम है उसमें मैं किसी सूरत में उसमें नहीं फंस गया। हुआ यूं कि मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला है कि नहीं, मैथमेटिक्स का जॉब मार्केट वो अच्छा नहीं है, इसलिए आप की सलाहियत तो ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आप किसी दूसरे शोबे में कोशिश कर लीजिए। थोड़ा बहुत मैं मायल हुआ, मैंने सोचा कि चलो ठीक है, उनका तजुर्बा रहा है, उस वजह से मुझे ये देखना चाहिए कि किस में जॉब मार्केट है। उस टाइम मेरा सब्जेक्ट रहा था कॉलेज में फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैथमेटिक्स अलॉन्ग विद इंग्लिश। तो मैंने फिर सोचा कि इलेक्ट्रॉनिक्स एक नया सब्जेक्ट है, उसका फील्ड शायद आगे ठीक होगा, तो मैंने कोशिश की थी इलेक्ट्रॉनिक्स में और मैथमेटिक्स मेरा दूसरे नंबर पर रहा था। लेकिन क्या हुआ कि मैथमेटिक्स मेरा अल्हम्दुलिल्लाह पहले से, मैं अभी भी याद कर रहा हूँ कि 6th स्टैंडर्ड में मुझे लगा था कि नहीं, मैथमेटिक्स में कुछ दम है, मैं कर सकता हूँ। पता नहीं ये कोई मुझे फहम ऐसा आया था, कोई मुझे एक अंदर से कोई जलन महसूस हुई थी कि नहीं, मैथमेटिक्स के हवाले से मुझे लगता है कुछ हो सकता है मेरे से, क्योंकि 6th स्टैंडर्ड में बच्चे का उतना जहन उतना स्ट्रांग नहीं होता है। तो फिर जब मैं मास्टर्स में गया इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो फिर मेरा हुआ था, लेकिन वेटिंग में मेरा नंबर वन था। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम जब मुझे लगता है मैं किसी ने मुझे रिजेक्ट किया है, लेकिन मैथमेटिक्स में मेरा तीसरा ही नंबर था। फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये ऊपर वाले ने शायद जो मैं पहले सोच रहा था एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से, मैं इलेक्ट्रॉनिक सोच रहा था, लेकिन जो मेरे नसीब में था वो मैथमेटिक्स ही शायद सबसे बेहतरीन ऊपर वाले ने लिखा होगा। फिर मैंने जब मेरा तीसरा ही नंबर मैथमेटिक्स में, फिर मैंने मास्टर्स इन मैथमेटिक्स किया है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद एक और अभी भी उस बहुत सारे बच्चे शिकार हो रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि IAS और JKAS अभी भी मैथमेटिक्स में ज़्यादा रुझान नहीं है। मैं जब मैंने उसके पीछे तहकीक ढूंढी है, वो क्या है, वजह क्या है, तो मुझे जो फील हुआ है वो ये है कि असल में जब तक एग्ज़ाम में बैठा नहीं जाता है तो एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई होगा, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्या है वो KAS एग्जामिनेशन, JKAS जिसका नाम आजकल है, या UPSC एग्जामिनेशन IAS में वो मैथमेटिक्स लेते ही नहीं है, तो क्वालिफाई कहाँ से हो सकते, वो पहले ही दिमाग में ये लेके बैठते हैं कि नहीं ये मुश्किल सब्जेक्ट है, उस वजह से वो उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट रहता ही नहीं है। तो फिर हम ये बोलते हैं मैथमेटिक्स उस हवाले से मुश्किल माना जाता है। तो उसके बाद मैंने मास्टर्स में सोचा है कि नहीं ठीक है, तो मास्टर्स करने के बाद बोला गया कि किसी का आज तक नेट क्वालिफाई नहीं हुआ, किसी का JRF क्वालिफाई नहीं हुआ था। मैंने बोला एग्जाम में बैठने से कोई नुकसान तो नहीं है, कम से कम देख सकते हैं। फिर मैंने एक हिम्मत जुटाई है, उस टाइम ये भी मुश्किल था कि हमारा सेंटर जम्मू में हुआ करता था, 2002 में मैं जम्मू गया, मैंने सोचा कि चलो देख लेते। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुछ महीने पढ़ा है इकबाल लाइब्रेरी में, मैं मेहनत करता रहा, अल्लाह ने बहुत फजल किया है और मैं जम्मू गया। तो मैं जब वहाँ से वापस आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, आई क्वालिफाइड विद द 17th रैंक ऑल इंडिया रैंक,
1: माशाल्लाह।
0: तो उस वजह से अल्लाह ने बहुत कुछ नवाजा आगे। तो उसके बाद जब मैंने मास्टर JRF क्वालिफाई किया, आई वॉज द फर्स्ट विद द गोल्ड मेडलिस्ट ऑल्सो, फिर जस्ट विद इन 6 मंथ मैं स्टूडेंटशिप से एक फैकल्टी में आ गया, मेरा तो एज
1: माशाल्लाह।
0: लेक्चरर मेरी प्रमोशन हो गई थी।
1: डॉक्टर साहब, चूंकि आप सरबरा हैं आप उस डिपार्टमेंट के जहाँ से आपने पढ़ा, तो इस वक्त उस डिपार्टमेंट की जो सरगर्मियाँ हैं और माजी में जो उसका एक लेगेसी रही है, उस हवाले से हमारे सामईन को आप पूछ ना करें।
0: दो चीज़ें हैं, एक तो पहले मैं ये बोलना चाहूँगा, जहाँ तक मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट, उसको रियाजी बोलते हैं उर्दू में, रियाज का मतलब यह है रियाज करना, बार बार दोहराना। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा शोबा है जहाँ पर ये लाइक अदर सब्जेक्ट्स उसकी इफादियत, उसकी अहमियत कुछ अलग सी है, क्योंकि जहाँ तक हम सोचते हैं मैथमेटिक्स वजूद में कैसे आ गया, फिर यहाँ पर हमारे डिपार्टमेंट की जहाँ तक बात है, हमारे कुछ अच्छे लोग रहे हैं डिपार्टमेंट जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, चाहे एनालिसिस की बात करें, चाहे कोई अलजबरा की बात करें, चाहे जमेट

0: की बात करें, बहुत सारे लोगों ने काम किया। हमारा जो डिपार्टमेंट है 1958 में उसका कयाम हुआ, ये बहुत पुराना डिपार्टमेंट है यूनिवर्सिटी का, तो बहुत सारे लोगों ने उसमें काम किया है। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत सारे जैसे तहकीकात होते टीचिंग के साथ साथ बहुत सारा रिसर्च भी हो रहा है। जहाँ तक टीचिंग की बात है, हमारा जो करिकुलम होता है वो एज़ पर अभी रिसेंटली हमने NEP 2020 वो तो फ्रेम किया है, उससे पहले भी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम दैट इज़ एट पार जितने सारे नेशनल और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनज है उनके साथ बराबर हमारा जो सिलेबस है एट पार है। और दूसरी बात है हमारा जो कोर पेपर्स होते हैं वहाँ पर हमारा एनालिसिस होता है, हमारी अलजिब्रा होती है, उनके बारे में मैं आपको बोलूँ कि कैसे उनका आ गया वजूद में। और उसके बाद जहाँ तक हमारे मैथमेटिक्स में, मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि हम अप्लाइड मैथमेटिक्स भी मैंने इंट्रोड्यूस कराया है डिपार्टमेंट में। जब मैंने मास्टर्स के बाद सोचा है कि ठीक है, जहाँ तक मेरा फहम था कि मैथमेटिक्स में कहाँ पर यूज़ करूँ, मास्टर जब मैं फैकल्टी हुआ था, जब मैंने कहा 2003 में मैं अपॉइंट हुआ, उसके बाद मैंने सोचा कि ठीक है अब मैं कंट्रीब्यूट कैसे कर सकता हूँ सोसाइटी को। और ये मेरे जहन में भी रहा कि मेरे से कुछ छूट गया है 10th के बाद जब मैंने बायोलॉजी छोड़ दी। फिर बायोलॉजी ये जो स्ट्राइक मुझे हो रहा था कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक कंपोनेंट मुझसे छूट रहा है, फिर मैंने सोचा है कि अब MSc के बाद मैं शुरू करूं। मैंने फिर MSc के बाद बायोलॉजी पढ़नी शुरू की है, फिर मैंने PhD जो की है वो मैथमेटिकल बायोलॉजी में किया है। और आजकल हम बहुत सारे बच्चों को हम PhD करा रहे हैं, हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स में करा रहे हैं। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं हीट एंड मास ट्रांसफर इन बायोलॉजिकल टिश्यूज, हमारी बॉडी में जो बहुत सारे न्यूट्रेंट्स है, ब्लड सर्कुलेशन है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एक्सचेंज है, ट्यूमर काइनेटिक्स कैसे मैलेग्नेंसीज हमारी बॉडी में डिफ्यूज होती है, तो उन चीज़ों पर हम तहकीक करते हैं। या हम कोल्ड की वजह से हमारे जिसको फ्रॉस्टबाइट्स बोलते हैं, चिलबलिन बोलते हैं, जहाँ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ टिश्यूज होते हैं सरफेसिस पर, जो जिल्द पर सर्दी की वजह से, गर्मी की वजह से वो डैमेज होता है, स्किन लेयर्स होते हैं डैमेज, उन पर भी हमने कुछ लोगों को रिसर्च कराया है। और बाकी लोग हमारे कुछ कुलीग्स हैं, कुछ लोग तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में रिसर्च कराते हैं जिसमें ग्राफ थ्योरी आता है, कॉम्बिनेटोरियल आता है, अलजिब्रा आता है, कुछ लोग तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कराते हैं, कुछ लोग तो फंक्शनल एनालिसिस में कराते हैं, कुछ हमारे और साथी भी है दूसरी जगहों पर, वो वेवलेट्स पर भी कराते हैं। ओवरऑल जो हमारे बच्चे जो है वो मुस्तफीद हो रहे हैं डिपार्टमेंट के, बहुत सारे जितने सारे हमारे बहुत सारे स्पेशलाइजेशन है उनसे मुस्तफीद हो जाते हैं।
1: आपने जो पस मंजर खींचा है, जैसा फरमा रहे थे कि आपकी खुद अपनी PhD जिसमें अब हयातियात बायोलॉजी इन्वॉल्व है, और हमारा जो नुक्ते नज़र है रियाजी के हवाले से वो बहुत ही महदूद रहता है, शायद वही मैथमेटिक्स कैलकुलेशन हो रही है बस, उससे बाहर की दुनिया और कुछ नहीं है। लेकिन जैसा आपने फरमाया कि बहुत वसी दुनिया है, और मैथमेटिक्स का वो जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ, तो ये बहुत ही खुशाइंद बात है सुनने में भी कि ऐसा कुछ तहकीकी लेवल पर हो रहा है। डॉक्टर साहब, तारीखी सतह पर जब हमने देखा है, कहीं पढ़ा हुआ है कि जो अफलातून थे, प्लेटो, उन्होंने अपनी एकेडमी भी लिखा हुआ था, जो मैथमेटिक्स नहीं जानता वो यहाँ ना आए, उनका वो दाखला जो था ममनू था। उस हवाले से मैं ये कहूँगा कि जो तारीखी और असली अहमियत है सब्जेक्ट की, इल्म रियाजी की, मैथमेटिक्स की, उस हवाले से ज़रा आप कौमी सतह पर क्या है, हमारी स्टेट सतह पर क्या है, या फिर बैन अक्वामी सतह पर क्या है अभी इस जो सिचुएशन मैथमेटिक्स के हवाले से, ताकि हमारे जो सामईन है या वो बच्चे जिनमें एक फोबिया पड़ा हुआ है कि नहीं जी मैथमेटिक्स में नहीं जाना, डर लगता है, उनकी रहनुमाई करें क्यों आना चाहिए मैथमेटिक्स में।
0: डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल एक सही और बेहतरीन ये मौजू छेड़ा है, वो ये है कि क्योंकि आजकल के दौर में जैसे माना जाता था मैथमेटिक्स जो है ना, इट इज़ ट्रीटेड एज ए क्वीन ऑफ ऑल साइंसेस और मदर ऑफ ऑल डिसिप्लिनस। पहले मैं उसको बोलना चाहूँगा सामीन के लिए, जो माँ का रोल होता है ना, वो हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन देती है। यहाँ पर भी जहाँ तक आपने बोला है कि शायद हमारा कैलकुलेशन बेस्ड होता था अंडरस्टैंडिंग हमारे मैथमेटिक्स के हवाले से, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक पार्ट है जिसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक्स। अरिथमेटिक्स इज ए स्मॉल पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। लेकिन हम क्या समझते हैं, क्योंकि जिसने पढ़ा ही नहीं होगा, जिसका अभी उस लेवल की सलाहियत नहीं होती, वो क्या समझते हैं शायद यही कैलकुलेशन सब कुछ मैथमेटिक्स है। असल में जितने सारे डिसिप्लिनस हैं उनकी जो कम्प्लेक्सिटीज होती है, जो उनकी मुश्किलात होती है, उनका अजाला, उनका सोल्यूशन, वो मैथमेटिक्स से ही वो हल होते हैं। चाहे जो जिस रूम में भी हम बैठे हैं, अगर आप अभी भी इसका एरिया निकाल देंगे, आपको टाइलिंग करनी है, आपको उसको पेंट करना है, तो ये अरिथमेटिक्स की वजह से या मेंसुरेशन जो आपने टेंथ में पढ़ा होगा वो हम वो फार्मूले

यूज करके उसका कर सकते हैं, लेकिन उसके पैटर्न्स जो है शायद ही कोई जानता है कि इनकी सिमेट्री कैसी बनती है। जैसे हमारा ड्रेस है उसके पीछे कैसे मैथमेटिक्स है, जो मेरी बॉडी है जो अल्लाह पाक ने मुझे क्रिएट किया है तो उसके पीछे मैथमेटिक्स कैसा है। हर एक जगह अगर आप ढूंढेंगे, अगर आपको वो विजन है वो सलाहियत है ढूंढने की, मैथमेटिक्स आप वहां पर पाएंगे। जहां तक आपने बोला है प्लेटो की बात आपने छेड़ी है, प्लेटो ने एक बार बोला है, उसने बोला है कि जैसे गैलीलियो का कॉल है, उसने बोला है कि मैं एडवाइस लेना चाहूंगा प्लेटो की, अगर मैं फिर से शुरू करना चाहूंगा अपनी, वो बड़े फिजिस्ट थे गैलीलियो, उसने कहा कि अगर मैं अपनी जिंदगी अपनी तालीमी जो बुनियाद फिर से शुरू करना चाहूंगा वो प्लेटो की मैं एडवाइस लेके मैथमेटिक्स से मैं शुरू कर देता। तो इतना उनके लिए मैथमेटिक्स, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद मैं अगर आपसे बात करना चाहूंगा, आपका भी शायद मैथमेटिक्स का रुझान पहले आज आपको लगता होगा नहीं मुझसे कुछ अगर छूट गया है, मुझे पढ़ना चाहिए था मैथमेटिक्स, अगर किसी लेवल पर आपकी उसमें कमी रही होगी। अगर हम किसी भी किसी फिलासफर से बात करेंगे, किसी टीचर से बात करें, किसी डॉक्टर से बात करेंगे, उनको लगता है कि अगर आज हम और कुछ करना चाहेंगे इस लेवल पर, हम कर सकते थे और ज़्यादा कर सकते थे अगर हमारे अंदर अच्छा खासा मैथमेटिक्स हो जाता। जहां तक हमारे बच्चों की बात है, हमारे बच्चे, मैं उनको कसूर नहीं दे सकता हूं क्योंकि एज ए टीचर मैं ही उसका रिस्पॉन्सिबल हूं। आई एम नॉट ए गुड टीचर इन ए वे, क्योंकि मुझे पेडागॉजी पर कोई ट्रेनिंग नहीं मिलती है, मुझे नहीं पता है कि बच्चों का लेवल कैसा है। मेरी क्लास में तीन कैटेगरीज हो सकती है, बिलो एवरेज, एवरेज एंड अबव एवरेज। मुझे नहीं लगता है कि मैं प्रेजेंटेशन ऐसा दे पाता हूं क्लास में जिसमें मुझे तीनों कैटेगरीज के बच्चे कैटर होते हैं उनको मैं दे। कभी क्या होता है बिलो एवरेज की ओर मैं रुझान देता हूं तो अबव एवरेज बेचारे शिकार हो जाते हैं। एवरेज बच्चे बोलते हैं ये हमें क्या पढ़ाते हैं, हम ऑलरेडी जानते हैं। तो उस लेवल पर टीचर का बहुत अच्छा रोल बनता है यहां पर। जहां तक टीचर की बात है, टीचर को यह समझना पड़ेगा कि मुझे जो बच्चे हैं पहले उनको समझना जरूरी है। ये नहीं है कि मैं एक्सरसाइज उठाऊंगा मैथमेटिक्स में, अक्सर बच्चा किस चीज का शिकार होता है, टीचर है चलो फलानी एक्सरसाइज नंबर ये है चलो कर लेते हैं, उसको पता नहीं ये एक्सरसाइज हम क्यों कर रहे हैं, मुझे क्या फायदा। मैं बच्चों को एनकरेज करना चाहूंगा इस माध्यम से, उनको अपने टीचर को हर टाइम ये पूछना चाहिए आप मुझे पता ये मुझे क्यों पढ़ रहे, उससे मुझे क्या फायदा होगा, अगर मैं ये नहीं पढ़ूंगा और अगर ये पढ़ूंगा मेरी जिंदगी में क्या फर्क आ जाएगा। ये नहीं है कि उसमें पॉलिसी मेकर्स का भी ठीक ठाक रोल है। क्या है कि जो टीचर खुद भी नहीं पढ़ाना चाहते, जिसको खुद आता नहीं है, मैं नहीं बोल रहा आई एम नॉट अंडरमाइनिंग द कैलिबर ऑफ ए टीचर, लेकिन यह है कि जो टीचर जहनी तौर पर तैयार नहीं है कि मुझे मैथमेटिक्स आता है मैं पढ़ा सकता, एक्सरसाइज तो वो पढ़ा सकती है लेकिन शायद ही कंसेप्चुअल मैथमेटिक्स वो नहीं पढ़ा सकते है। पेडागॉजी पर देखना पड़ेगा हमारे, जहां तक पॉलिसी मेकर्स का ये है उनको देखना पड़ेगा कि टीचर्स एडुकेट नंबर ऑफ टीचर्स की बहुत जरूरत है और देयर शुड बी ए ट्रेनिंग एट एवरी लेवल। ये नहीं है कि ट्रेनिंग आजकल क्या होती है मुझे ट्रेनिंग करनी है बस वहां पर अटेंडेंस इंपॉर्टेंट है बस हो गया, इट शुड बी देयर शुड बी अकाउंटेबिलिटी ऑल्सो, उनको एहतसाब करना बहुत जरूरी है। आपने जो ट्रेनिंग ली है चाहे ये इम्पार्ट आपने बाद में की है सोसाइटी में, तो ये बहुत जरूरी है। जब तक ये चीजें हम नहीं देखेंगे, और जहां तक एप्लीकेशन की बात है, अगर आप कोई भी डिसिप्लिन आप मुझे पूछेंगे, आज तक हमारे हाथ में मोबाइल है, इसमें हम पैटर्न और पिन की जहां तक बात है उसके पीछे नंबर थ्योरी का कंसेप्ट है, क्योंकि आजकल हमें पैटर्न पर ज्यादा भरोसा है, अपने दोस्त से भी अपने फैमिली मेंबर से भी ज्यादा भरोसा है उस पैटर्न पर। वो क्यों है? बिकॉज ये कन्वर्ट करता है न्यूमेरल्स को, अल्फाबेट्स को किस में कन्वर्ट करता है, कोड्स में, एनक्रिप्शन एंड डिस्क्रिप्शन। जब ये इनक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन यही पूरा है, उसके पीछे एल्गोरिज्म होते हैं, वो मैथमेटिक्स की बुनियाद होती है। हम जो पिक्चर लेते हैं पिक्सल्स में, कोई भी हम देखते हैं, कोई डेकोरेशन वाला पार्ट है, सिमेट्री वाला पार्ट है, जैसे मैंने ये आपको कहा कि मेरी जो बॉडी है उसमें भी जो गोल्डन रेशियो है, डिवाइन प्रपोर्शन है, जो ऊपर वाले ने जो भी क्रिएट किया है उसके पीछे एक सिमेट्री होती है। अगर हम कहेंगे एक 1:1.61 एक पर्टिकुलर रेशियो, चाहे मम्मीज है, पायरामिड्स जो हमारी है, चाहे हमारी बॉडी है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, यू कैन जस्ट, बच्चों को मैं चाहूंगा कि वो देखें कि गूगल करके गोल्डन रेशियो ऑफ माई बॉडी, ऑफ फेस, ऑफ प्लांट्स, ऑफ एनिमल्स, व्हाट्सएवर एग्जिस्ट्स अराउंड, उनके पीछे जो ऊपर वाले ने क्रिएशन में एक रेशो डाल दिया, मैथमेटिकल रेशो, डिवाइन पर, जो हमारा डीएनए है, जो ईसीजी करते हैं, हमारी आंखें क्यों स्फेरिकल है उसके पीछे बिकॉज दे हैव टू मूव अराउंड, और हमारा जो सिस्टम है उसमें अगर आप देखेंगे वी कैन इजीली डिटरमिन ये बॉय है ये गर्ल है।
तो उसके पीछे जो पैटर्न है उसके पीछे ठीक ठाक मैथमेटिक्स, अगर हम उस लेवल से समझेंगे, बच्चों को समझाएंगे, वी हैव टू कनेक्ट क्लासरूम विद द एक्सपीरियंशियल लर्निंग।

0: बच्चों को खुद वहां इवॉल्व करना पड़ेगा क्लासरूम में कि मैथमेटिक्स कहां पर हम डेवलप कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, बात बच्चों की उठी है, आपने जिक्र छेड़ दिया, तो वो बच्चे जो ख्वाहिशमंद हो कि वो जामिया कश्मीर में आकर शोबे रियाजी में एडमिशन लेना चाहे, उन बच्चों के लिए जिन्हें ग्रेजुएशन कंप्लीट की हो, तो उनके लिए रहनुमाई के लिए आप ये फरमाएं कि जो आपका डिपार्टमेंट है वहाँ पर कौन से कोर्सेज होते हैं, कोई सर्टिफिकेट कोर्स हैं, डिप्लोमा टाइप है, डिग्री कोर्स हैं, उस ज़मीन में ज़रा आप कुछ वजाहत फरमाएं।
0: हमारा डिपार्टमेंट मास्टर्स के साथ साथ पीएचडी डिग्री प्रोवाइड करता है। मास्टर्स में हमारे जहाँ तक आपने बोला है कि कौन कौन से स्पेशलाइजेशन है, जैसे मैंने कहा कि हमारे पहले चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में होते थे तीन कैटेगरीज। एक होते थे कोर पेपर्स जो नेशनल लेवल पर होते हैं, जो भी होते हैं वो हमारे यहाँ भी होते हैं, चाहे उसमें एनालिसिस आती है, उसमें अलजेब्रा आती है, उसमें ज्योमेट्री आती है और डिफरेंशियल इक्वेशंस आते हैं, ये तो होते ही है नेशनल लेवल पर। उसके साथ साथ जो एक्सपर्ट्स हमारे स्पेशलिस्ट्स होते हैं यूनिवर्सिटी में, जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनकी अपनी स्पेशलाइजेशन, जैसे मैंने आपको कहा मेरा मैथमेटिकल बायोलॉजी है, मेरे दूसरे कुली का है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, एक का एनालिसिस है, तो उस हवाले से हम डिसिप्लिन सेंट्रिक कोर्सेज होते हैं, फिर जो अपनी स्पेशलाइजेशन होती है वो हम देते हैं ऑप्शनल सेकंड कैटेगरी, और थर्ड कैटेगरी में हम देते हैं ओपन इलेक्टिव्स। हमारे बच्चे अगर जाना चाहे, फॉर एग्जांपल हमारे बच्चे ये लिटरेचर में कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए दो क्रेडिट्स या चार क्रेडिट्स वो लेते हैं वहां से आउटसाइड डिपार्टमेंट। अगर वो कहीं पोएट्री में जाना चाहते, अगर वो फिजिकल एजुकेशन में कुछ करना चाहते, अगर वो एस्ट्रोनॉमी जाना चाहते, वो दूसरे डिपार्टमेंट्स में जा सकते हैं और वहां से कुछ क्रेडिट्स अर्न कर सकते हैं। ये पहले स्कीम थी, ये अभी भी है, लेकिन अभी हम जस्ट जैसे एनईपी 2020 में अब ये स्कीम जो है ना अब रिवाइज हो रहे हैं, इसमें ज्यादा चेंज नहीं है, लेकिन अभी एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर ज्यादा फोकस है, स्किल पर ज्यादा फोकस है, हाउ स्टूडेंट्स कैन बी जस्ट गेटिंग देयर लाइफ, दे मे बी सेल्फ रिलायंट। कल ऐसा नहीं है कि वो अपने रिसोर्सेज अपने लेवल पर कुछ एंटरप्रेन्योर बनना चाहेंगे या कुछ अपना रोजगार कमाना चाहेंगे, उस लेवल के कोर्सेज होते हैं। आज भी क्या है कि हमारे होते हैं मेजर, अब माइनर, और होते हैं कुछ इलेक्टिव पेपर्स, और स्किल बेस्ड कोर्सेज होते हैं, वैल्यू एडेड कोर्सेज होते हैं, ये सारे होते हैं। और जहाँ तक हमारी स्पेशलाइजेशन है, बच्चे तो बहुत सारे वहाँ से फारिग होने के बाद वो हायर एजुकेशन में जाती है, कॉलेज में भी जाते हैं और स्कूल एजुकेशन में भी जाते हैं और बाकी डिपार्टमेंट, क्योंकि मैथमेटिक्स एप्लीकेबल हर एक डिसिप्लिन में, उस हवाले से वह वहाँ से फारिग होने के बाद उनका जॉब मार्केट। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, जहाँ तक बच्चों की सलाहियत का सवाल है, उनको मुझे लगता है एक तो डिग्री के साथ साथ उनको अपने अंदर कुछ स्किल्स डेवलप करने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आजकल का मार्केट जो है वो हमेशा देखते हैं कि आपको ये चीज़ तो आती है, लेकिन मुझे छोटी छोटी चीज़ों में आपकी क्या एक्सपर्टीज़ है, क्योंकि सिर्फ डिग्री तक महदूद रहना उनके लिए जॉब मार्केट उतना फ्रूटफुल साबित नहीं हो सकता है।
1: डॉक्टर साहब, जॉब मार्केट की बात आपने की, पहले तो ये आपसे पूछना चाहेंगे, इशारतन या कुछ हद तक आपने उसका जवाब फरमाया था कि जो नेचुरल साइंसेस हैं जैसे अभी फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, अब कौमी सतह की बात तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन रियासती सतह पर यह देखा जा रहा है कि हमारे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इस तरफ माइल नहीं हो रहे हैं। हाँ, कुछ खामियां रही होंगी, जैसे आपने अभी पेडागॉजी की बात की, टीचिंग में बाकी चीज़ें, लेकिन जो मंजरनामा इसको और खींचते हैं, आप सर बताइए कि ऐसा हुआ क्या? जैसे माजी में तो यहाँ के बच्चे मतलब क्रेज पैशन होता था मैथमेटिक्स, अब वो नीचे आ रहा है, नॉट ओनली मैथमेटिक्स, फिजिक्स की बात आप कीजिए, फिजिक्स में भी वो ग्राफ नीचे आ रहा है, तो क्या प्रॉब्लम पेडागॉजी लेवल पर ही है या कुछ और भी फैक्टर्स हैं? और साथ ही में ये भी पूछना, क्या अब जो एनईपी के नाम से एक पॉलिसी आई हमारे पास, तो क्या उसमें सोल्यूशन है उस चीज का? सर आप देख रहे हैं कि नो एनईपी इज अ सोल्यूशन, जो वो प्रॉब्लम थी उस पर जरा कुछ फरमाए।
0: दरअसल जहां तक आपने बात छेड़ी है कि जो बेसिक साइंस है, चाहे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, अब बच्चों का रुझान उनकी ओर कम होते जा रहा है। ये सिर्फ यहाँ पर आपने कहा रियासती लेवल पर, अभी कुछ स्टूडेंट्स हमारे जो भी फैकल्टी बाहर काम कर रहे हैं, हमने उनसे पूछा एनरोलमेंट क्या है वहाँ पर आउटसाइड दिस, नो डाउट इतना ड्रास्टिक डिक्लाइन नहीं है, लेकिन वो बोल रहे हैं हमारे वहाँ पर हिमाचल में हमारा एक फैकल्टी है, उसने कहा कि हमारे वहाँ जो 33% ही एनरोलमेंट है मैथमेटिक्स में, वो तो नई यूनिवर्सिटी। हमने कहा कि ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत सारे ऐसे इदारे हैं आउटसाइड कश्मीर जे एंड के, वहाँ पर एनरोलमेंट ठीक ठाक है। उसमें दो तीन वजह मैं आपको बताना चाहूँगा। एक वजह है यहाँ पर हमारा पूरा जो है मेनली मोर देन 80% हमारा जो यहाँ पर जॉब मार्केट है वो पब्लिक सेक्टर है, वो प्राइवेट सेक्टर।

0: नहीं है। आउटसाइड जितने सारे मैथमेटिक्स डिग्री कंप्लीट करने के बाद उनका मार्केट किसी न किसी प्राइवेट सेक्टर में लगना ही लगना है, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात करें, चाहे बहुत सारी इंडस्ट्रीज की बात करें, क्योंकि मैथमेटिक्स के लोग उनको चाहिए ही चाहिए। यहां पर वो ज्यादा पॉसिबिलिटी बच्चों के लिए नहीं है, एक तो ये है। दूसरी बात यह है कि आजकल के बच्चे क्या है, वो टैक्स सेवी है, वो शॉर्टकट्स पर ज्यादा बिलीव करती है। ये जो बेसिक साइंसेस है उनमें कम से कम पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका टाइम डिमांड करता है, वो ऐसा शॉर्टकट बेस्ड नहीं है। ये ऐसी ही बात है कि अगर हम पहले देखेंगे, क्योंकि मुझे जहां तक याद है, हम जब कॉलेज में हुआ करते थे, हमें दो क्लासेस हुआ करते थे मैथमेटिक्स की, बाकी हर एक सब्जेक्ट का एक एक ही होता था, एक ही पीरियड होता था, उसके दो, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग भी है और उसमें टाइम की जरूरत पड़ भी जाती है, क्योंकि उसका 100% कंसंट्रेशन जब तक नहीं होगा ये बच्चे को समझ नहीं आता है। सो वहां तक जब मैंने देखा है कि अब धीरे धीरे कॉलेज से वो निकाल दिया गया, दो क्लासेस निकाल दिया, अब एक ही पर सिमट गया है वो, एक पर। और दूसरी बात है कि अब जो बच्चे हैं वो चाहते हैं कि मुझे रिजल्ट 5 मिनट में ही चाहिए, जिसमें 1 घंटे में आना चाहिए था, तो ये सब्जेक्ट उस हवाले से उसके शिकार हो गए हैं, क्योंकि बच्चों में पेशेंस ही नहीं है। मुझे लगता है कि जब तक मैं ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा तो रिजल्ट भी उतने ही शॉर्टकट में आ जाएंगे, जब तक मैं मेहनत नहीं करूंगा तो रिजल्ट्स कैसे अच्छे आ सकते हैं, वो मसला है। और ये जो बच्चों का रुझान है, क्योंकि उसमें टीचर्स, जैसे मैंने आपको कहा, जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको भी देखना है कि बहुत सारे हायर सेकेंडरी स्कूल्स, अभी हमने सर्वे किया है, क्योंकि हम हर एक डिस्ट्रिक्ट में गए हैं, मैं खुद चला गया, हम अवेयरनेस कैंपेन चलाई है इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द एनरोलमेंट ऑफ बेसिक साइंस कोर्सेज में। हम एनरोलमेंट कैसे, 10th लेवल के बाद बच्चे नहीं लेते हैं बेसिक कोर्सेज, तो यूनिवर्सिटी में कैसे पहुंचे, हम हर एक डिस्ट्रिक्ट में पहुंच गए, हमें अवेयरनेस का आउटरीच प्रोग्राम्स ने यूनिवर्सिटी और स्कूल को हमने कनेक्ट करना है, तो हमने अवेयरनेस बच्चों को समझाया कि बेसिक साइंसेज पढ़ने के बाद आप किसी भी फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं, वो तो नेचुरली हमारा काम है और पॉलिसी मेकर्स का भी कर, और करिकुलम के हवाले से जो आपने बीच में बोला, करिकुलम को रिवाइज करना बहुत जरूरी है। वहां पर मुझे लगता है कि हमें कनेक्ट करना है सोसाइटी को, रियल लाइफ सिचुएशंस को, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को कनेक्ट करना है विद द करिकुलम, तब हम उसमें इंप्रूवमेंट ला सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, जहां पर अभी आप फरमा रहे थे, जैसे आप यूनिवर्सिटी से गए, हायर सेकेंडरीज में गए, तो ये बताइए कि अब पॉलिसी मेकर्स को अगर आप कुछ कहना चाहेंगे, अब आपको क्या सपोर्ट मिलना चाहिए ताकि आप ये जो एक्टिविटी, आपका पर्सनल इनिशिएटिव, डिपार्टमेंटल इनिशिएटिव सदा आफरीन, लेकिन जब तक आपको सपोर्ट नहीं होगा ऊपर पॉलिसी मेकिंग लेवल पर, वो उनके लिए आपका पैगाम, हाँ, तो क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे उनसे?
0: हमने डायरेक्ट स्कूल एजुकेशन उनके साथ हमने कनेक्ट किया है, और यूनिवर्सिटी लेवल से आई एम वेरी थैंकफुल टू आवर ऑनरेबल वाइस चांसलर और डीन एकेडमिक्स और डीन स्कूल ऑफ फिजिकल एंड मैथमेटिकल साइंसेज, हमने एक प्रपोजल सबमिट किया, हमारे डिपार्टमेंट से ही हो गया है, उनको हमने कहा कि जो हमारे बच्चे हैं 4th सेमेस्टर में, उनको हम स्कूल्स में भेज देंगे एज इंटर्नस, इंटर्नशिप हम करना चाहते हैं, हमारे बच्चों को एक एक्सपीरियंस डेवलप होगी टीचिंग के हवाले से, उनको हम पहले एक काउंसलिंग करेंगे, उनको समझाएंगे कैसे आपको बच्चों को पढ़ाना है, वो भी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस गेन करेंगे, और दैट कैन फैसिलिटेट स्कूल एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को जहां पर उनको लगता है टीचर्स की कमी है, उनको एक्सपर्ट टीचर्स चाहिए, तो उनको हम प्रोवाइड कर रहे हैं एक ह्यूमन रिसोर्स। हमारी एक मीटिंग है डायरेक्ट स्कूल एजुकेशन के, वी आर गोइंग टू इवॉल्व ए मैकेनिज्म हाउ वी कैन सेंड अवर स्टूडेंट्स टू द स्कूल एजुकेशन सिस्टम, दे कैन फैसिलिटेट देम एंड अवर स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो अर्न सम क्रेडिट्स आउट ऑफ इट।
1: डॉक्टर साहब, बच्चों के लिए पैगाम?
0: बच्चों के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि कुछ चीजें हैं जो उनको समझे, हम ओलंपियाड कर रहे हैं बच्चों के, मैं कह रहा हूं कि जो 8th, 9th, 10th, 11th एंड 12th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं उनके लिए पैगाम है, वो ओलंपियाड है, मैथमेटिकल ओलंपियाड होता है 4, IOQM, इंडियन ओलंपियाड फॉर क्वालिफायर्स इन मैथमेटिक्स, वो सितंबर में होता है, उसके बाद रीजनल मैथ ओलंपियाड होता है, उसके बाद होता है इंडियन नेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड, वो हमारे डिपार्टमेंट से होता है, रीजनल मैथ ओलंपियाड भी, इंडियन नेशनल मैथ ओलंपियाड भी, और फिर होता है इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड। ये कुछ एग्जाम्स, एक और कुछ एग्जाम्स है PROMS, वो होते हैं जो बहुत सारे जहीन बच्चे, वो US जा सकते हैं, यूरोप जा सकते हैं, अगर वो 6 वीक्स वो ट्रेनिंग ले सकते हैं वहां से IIC बेंगलोर में, मुझे लगता है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, दे कैन ऑलवेज कनेक्ट विद अवर वेबसाइट, दे कैन गेट दिस टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन।
1: डॉक्टर साहब, दिल तो चाहता है बस आप बोलते रहे और हम सुनते रहे और हमारे सामने मुस्तफिद होते रहे, लेकिन दामन वक्त में उतनी गुंजाइश है नहीं, لیکن اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ مستقبل میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی, ہم آپ کے بھی اور ہمارے سننے والے معتبر اور محترم

0: समीना प्रोग्राम समाप्त कर रहे थे पेशरफ्त। प्रोग्राम के मेहमान थे डॉक्टर मुख्तार अहमद, इनसे हम कलाम थे प्रोग्राम के मेज़बान डॉक्टर तनवीर ताहिर। मौजू था करियर्स इन मैथमेटिक्स, पेशकश वसीम फारूक, माउनत आशिक हुसैन। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन मीडियम वे 268.81 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। सामीन इसके अलावा आप हमें सुन सकते हैं DTH और आकाशवाणी की लाइव मोबाइल ऐप पर।
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
0: आकाशवाणी हिंद श्रीनगर स्टेशन मीडियम वेव 71.8 FM 73.5 MHz पेश कश्र मौसीकी हिंद फरमाइशी प्रोग्राम तुहंस फरमाइश। प्रोग्राम करन तुहंदिस खिदमत में पेश अब्दुल रशीद निजामी।

घर घर तक पहुंचने वाली आवाज आकाशवाणी श्रीनगर की है। मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 MHz पर। समीन इसके अलावा आप हमें सुन सकते हैं डीटीएच और आकाशवाणी की लाइव मोबाइल ऐप पर। शब के 11 बज रहे हैं। थोड़ी देर में आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी और अंग्रेजी खबरों के बुलेटिन बारी बारी से नष्ट किए जाएंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धारमैया और डॉ जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। डी के शिव कुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वयक की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहां विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवाददात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉ सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करने में सक्षम है। डॉ सिंह ने बताया कि एआई और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री

कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम आईटीआई क्लस्टर के लिए एक निजी कंपनी ऑर्सिलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया की रणनीतिक निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में भारतीय टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में ओलावृष्टि के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

शाम 6:05 पर प्रोग्राम पेश होगा गमी बायन हिंदी खतर और हालात हजरा पर मबनी प्रोग्राम शहरबीन आप तक पहुंचेगा शाम 7 बजे।

गीत मेरे मन मीत आप सुन रहे हैं एफएम गोल्ड पर। आजकल की रातें जो है ना अजीब सी हो गई हैं। पहले लोग चांद दिखा करते थे, अब क्या देखते हैं, लास्ट सीन। कभी किसी का ऑनलाइन दिख जाना दिल को सुकून देता है, तो कभी टाइपिंग का वो छोटा सा शब्द दिल की धड़कनें बढ़ा देता है। फिर मैसेज आए ना आए, बात हो ना हो, लेकिन ये एहसास कि शायद वो भी जाग रहा है या जाग रही है, रात को थोड़ा कम तन्हा बना देते हैं। क्या यही प्यार है?

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली OG कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। डी के शिव कुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केन्द्रित होना चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉ सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
1: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। केंद्रीय विद्युत, आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल आज आधिकारिक दौरे पर त्रिपुरा जाएंगे। इस दौरान वे सुबह अगरतला के मुक्तधारा सभागार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 134वें संस्करण का प्रसारण सुनेंगे। इसके बाद वे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से जुड़े एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वाइस एडमिरल संजय वत्स्यान ने भारतीय नौसेना की पश्चिमी नौसेना कमान के प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। ये पद भारतीय नौसेना के सबसे महत्वपूर्ण परिचालन पदों में से एक माना जाता है। इससे पहले वे नई दिल्ली में नौसेना मुख्यालय में उप नौसेना प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे थे। निर्वाचन आयोग के कानूनी परामर्शदाताओं का राष्ट्रीय सम्मेलन कल नई दिल्ली में आयोजित किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने किया। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष और सही मतदाता सूची ही निष्पक्ष चुनाव की आधारशिला होती है। उन्होंने बूथ स्तर के अधिकारियों और बूथ स्तर के एजेंटों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि वे मतदाता सूची को सही और अद्यतन रखने में अहम योगदान देते हैं। नागालैंड में उच्च शिक्षा को मजबूत करने के लिए दीमापुर सरकारी कॉलेज में

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हुआ है 12:11:08 और ये समय है कार्यक्रम पानी पर लिखी कहानी का, जिसमें आज आप कहानी सुनेंगे मेरी मंजिल तुम नहीं। स्वर और आलेख हैं कुसुमलता के, परिकल्पना निर्देशन और प्रस्तुति रश्मि कुकरेती। तो चलिए आइए सुनते हैं कहानी मेरी मंजिल तुम नहीं।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर पानी पर लिखी कहानी। आज के दिन आप इस कार्यक्रम में सुनते हैं एक कहानी जिसमें घुले होते हैं सात सुरों के रंग। मैं कुसुम लेकर आई हूँ आज की कहानी मेरी मंजिल।

ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो दुबला पतला साधारण शक्ल सूरत का गरीब माँ बाप की इकलौती संतान था। अपने लाडले बेटे से ढेरों उम्मीदें बांधे हुए उसके माता पिता को इंतजार था तो उस दिन का, जब दीपक पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा और उनके दिन फिरेंगे। बड़े प्यार से उन्होंने अपने जिगर के टुकड़े का नाम रखा था दीपक। हमने अक्सर देखा है कि अगर परमात्मा कहीं पर किसी को कुछ कम देता है तो दूसरी जगह उसे बढ़ा कर दे देता है। जी हाँ, दीपक पढ़ने में बेहद होशियार था, हमेशा अपनी क्लास में फर्स्ट। बावजूद इसके जवानी के दहलीज पर कदम रखते ही दीपक का ध्यान बार बार अपने साधारण व्यक्तित्व की ओर जाने लगा था, खासतौर पर आजकल जब से उसने सीमा को देखा था। सीमा का परिवार हाल ही में उसके पड़ोस में शिफ्ट हुआ था। सीमा बला की खूबसूरत थी। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे कि ईश्वर ने बड़ी फुर्सत से उसे तराशा था। दीपक ने जब सीमा को देखा

दीपक मन ही मन सीमा को चाहने लगा, लेकिन कभी सामने आकर उसे कहने की हिम्मत ना हुई। उसे डर था कहीं सीमा उसके प्यार को ठुकरा ना दे। कहां परियों से दिखने वाली सीमा और कहां साधारण से शक्लो सूरत का दीपक। मगर चाहत ये सब सोचकर तो नहीं होती ना। सीमा के लिए दीपक की दीवानगी बढ़ती जा रही थी, मगर उसे सीमा के करीब जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इसे संयोग कहिए या कुछ और, एक दिन सीमा की माँ दीपक की माँ से मिलने आई थी और दीपक चुपके से उन दोनों के बीच हो रही बातों को गौर से सुनने लगा। सीमा की माँ कह रही थी, क्या करूं बहन, मेरी बेटी इस बार भी फेल हो गई। उसके लिए रिश्ते तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन बस पढ़ाई की वजह से बात बनते बनते बिगड़ जाती है। ये तो बड़े दुख की बात है बहन, लेकिन मैं भला इसमें क्या कर सकती हूँ, दीपक की माँ ने कहा। सुना है आपका बेटा पढ़ने में बहुत तेज है, अगर वो मेरी बेटी को ट्यूशन पढ़ा दे तो शायद वो पास हो जाए और उसकी जिंदगी संवर जाए। बड़ी दुआएं लगेंगी आपको। ये सुनते ही दीपक का दिल बल्लियों उछलने लगा। उसे तो मानो मन की मुराद मिल गई थी। उसने सुना कि उसकी माँ कह रही थी, माफ करना बहन, दीपक को तो अपनी ही पढ़ाई से फुर्सत नहीं मिलती, फिर भी एक बार आप उसी से ही पूछ लो। दीपक की तो खुशी का ठिकाना ना था, फिर भी सीमा की माँ के कहने पर उसने अपनी खुशी को दबाते हुए अनमने अंदाज में कहा, ठीक है आंटी, आप कहती हैं तो मैं किसी तरह टाइम निकाल लूंगा। दीपक मन ही मन सीमा के प्यार के ख्वाब बुनने लगा था।

0: दूसरे ही दिन से दीपक सीमा को ट्यूशन पढ़ाने उसके घर जाने लगा। सीमा भी मन लगाकर पढ़ाई कर रही थी। जब वो पढ़ती तो दीपक उसे देखता रहता और जब सीमा से उसकी नजरें मिलती तो वो झेप जाता। फिर धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से खुलने लगे, बातें करने लगे। और फिर एक दिन दीपक ने सीमा से कहा, सीमा एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगी? मुझे पता है, सीमा मुस्कुराते हुए बोली। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? दीपक ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा। अरे बुद्धू, फीलिंग्स को ज्यादा देर तक छिपाया जा सकता है कहीं? ये तो एक खुशबू की तरह होती है, बिना कहे ही आंखों से, चेहरे से, रोम रोम से बयां हो जाती है। अच्छा, इतना कुछ जानती हो फीलिंग्स के बारे में, तो अपना जवाब भी बता दो, खुद ही समझ लो। ये कहती हुई सीमा एक अदा के साथ वहाँ से चली गई। सीमा की दोस्ती का आसरा पाकर दीपक के सपनों को मानो पंख लग गए और वो सातवें आसमान पर उड़ने लगा।
1: इतना

सीमा के सपनों के हवा महल में दीपक पढ़ना लिखना भूलता गया। उसे तो अब रात दिन सीमा के सिवा जैसे कुछ सोचता ही ना था। जैसे तैसे दिन गुजरता और शाम ढले वो सीमा के घर पहुंच जाता। एक दिन रास्ते में उसका एक पुराना दोस्त राहुल उसे मिला और बोला, क्या बात है दीपक, आजकल तुम कॉलेज नहीं आ रहे हो। मैं जानता हूं तुम्हारे और सीमा के बारे में। देखो, सीमा वैसी नहीं है जैसा तुम उसे समझते हो। अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दो, एग्जाम सिर पर है। अगर अभी नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे। दीपक को राहुल की बात बेहद नागवार गुजरी। उसे लगा राहुल उससे जलता है। वो तीखे अंदाज में बोला, मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं तुम्हें इससे क्या? कहीं सीमा के साथ देखकर तुम्हें मुझसे जलन तो नहीं हो रही? अपनी सीख अपने पास रखो, समझे? राहुल को लगा कि अभी दीपक को समझाना ठीक नहीं। वो सीमा के प्यार में अंधा और बहरा हो चुका है। अभी उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा।

धीरे चाहत भरे दिन पंख लगाकर उड़ने लगे। आखिर वो दिन भी आ गया जब सीमा का रिजल्ट आने वाला था। दीपक आज बेहद खुश नजर आ रहा था। उसने अपनी पढ़ाई पर ध्यान न देकर जी जान से सीमा को पढ़ाया था। उसे पूरा विश्वास था कि सीमा जरूर पास हो जाएगी। और फिर उसने सोचा था कि सीमा के पास होते ही वो अपनी मोहब्बत का इजहार कर देगा। जैसे ही दीपक को पता चला कि सीमा पास हो गई है, वो खुशी से झूम उठा, भागा भागा सीमा के घर पहुंचा। उंगलियां डोरबेल की बटन से हट ही नहीं रही थी। अचानक दरवाजा खुला, सामने सीमा खड़ी थी। चेहरे पर झुंझलाहट के भाव साफ जाहिर हो रहे थे। बेरुखी से बोली, क्या बात है, क्यों शोर मचा रखा है? दीपक अपनी ही धुन में बोला, सीमा तुम्हें पता है तुम पास हो गई हो? हाँ मुझे पता है। तो सीमा उसी बेरुखी से बोली, तुम खुश तो हो ना? दीपक ने पूछा। हाँ बहुत खुश हूं, आखिर इतनी मेहनत जो की है, लेकिन तुम इतने खुश क्यों हो रही हो? सीमा के लफ्जों में बेरुखी जारी रही, लेकिन सीमा के मोहब्बत में पागल दीपक का ध्यान सीमा की बेरुखी की तरफ नहीं जा रहा था। वो उसी प्यार भरी अंदाज में बोला, सीमा मैं आज तुमसे कुछ कहने आया हूं। तो कहो, अंदर नहीं बुलाओगी सीमा? नहीं अभी टाइम नहीं है, जो कहना है यही कह दो। सीमा आई लव यू, दीपक उसी उतावलेपन में बोला था। प्यार? और तुमसे? सीमा आश्चर्यचकित होते हुए बोली, तुमने सोच कैसे लिया कि मैं तुमसे प्यार करूंगी? आईने में देखी है शक्ल अपनी? तुम्हारे पास है ही क्या मुझे देने के लिए? सीमा, दीपक तड़प कर बोला, मानो किसी ने उसकी दुखती रग पर उंगली रखती हो। वो धीरे से बोला, तुम मेरी दोस्त हो ना, और दोस्ती ही तो प्यार होता है। दीपक ने अपने जज्बात का हवाला दिया, प्यार तुम मुझसे करते हो मिस्टर दीपक, मैं नहीं। मैंने तो सिर्फ पढ़ने के लिए तुमसे दोस्ती का नाटक किया था, माफ करना। प्यार मैं राज से करती हूँ, जी हाँ, राज जो कि इंग्लैंड में रहता है, और शादी भी उसी से करूंगी। राज आज अपने पेरेंट्स के साथ घर आ रहा है। उसके मम्मी पापा की शर्त थी कि जब तक मैं अपनी

पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर लेती तब तक उसके साथ मेरी शादी नहीं हो सकती, और आज वो दिन आ गया है। एनीवे, तुम जल्दी से यहां से चले जाओ, मैं नहीं चाहती कि वो लोग तुम्हें यहां देखें और कुछ सोचें, सीमा बोलती जा रही थी। और उसके कहे एक एक शब्द दीपक के दिल पर हथौड़े की तरह पड़ रहे थे। चंद पलों बाद दरवाजा बंद हो चुका था और दीपक के तो जैसे सपनों की दुनिया ही लुट चुकी थी। उसके रंग बिरंगे ख्वाब मटिया

रास्ते में एक जगह भीड़ लगी हुई थी। शायद किसी बाइक सवार लड़के का एक्सीडेंट हुआ था। राहुल अपनी बहन आरती के साथ वहां से गुजर रहा था। भीड़ देखी तो रुक गया। अरे ये तो दीपक है, मेरा दोस्त। शुक्र है ज्यादा चोट नहीं आई, किसी ने कहा। राहुल अपनी बहन आरती की मदद से दीपक को घर ले आया। पूरी तरह होश में आते ही दीपक रोने लगा। मर जाने दो मुझे, जीकर क्या करूंगा, किसी लायक नहीं हूं मैं, राहुल उसे दिलासा देने लगा। ऐसी नासमझों वाली बातें नहीं करती दीपक, तुम्हें पता है अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे माता पिता पर क्या गुजरेगी, कभी सोचा है तुमने? वो तो जीते जी मर जाएंगे, क्या इसी दिन के लिए उन्होंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है? पूरी जिंदगी तो उन्होंने तुम्हें पाला पोसा, और एक अजनबी लड़की आई और तुमने अपनी जिंदगी और मौत उसके हाथ में दे दी। ये भी नहीं सोचा कि मेरे माँ बाप का क्या होगा जो मुझे देखकर जी रहे हैं। मैं अब किसी के लायक नहीं हूं राहुल, दीपक रोते हुए बोला। तुम बहुत लायक हो दीपक, तुम्हें पता नहीं अभी भी वक्त है, कुछ नहीं बिगड़ा है, संभालो खुद को। तुम्हें अपने सपनों को पूरा करना है, जिंदगी अनमोल है, इसे किसी ऐसे इंसान के लिए गंवाना समझदारी नहीं जिसके लिए तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं। उठो और खुद

दिनों में और महीने सालों में बदलते गए और इस तरह कई बरस गुजर गए। दीपक अपनी मेहनत और लगन की बदौलत एक मशहूर डॉक्टर बन चुका था। दौलत और शोहरत उसके कदमों में थी। एक रात अचानक उसके फोन की घंटी बजी। किसी महिला का फोन था। हेलो हेलो डॉक्टर साहब, जल्दी से आ जाइए प्लीज, वरना ये मर जाएगी। कौन और आप कहां से बोल रही हैं? वहां पहुंचा तो देखा कि एक टूटा फूटा जर्जर सा मकान था। एक बुजुर्ग महिला थी जिन्होंने डॉक्टर दीपक को फोन किया था। मरीज को देखते ही दीपक मानो उछल पड़ा। अरे सीमा, तुम और इस हाल में? सब बताऊंगी दीपक, लेकिन पहले ठीक तो हो जाने दो, सीमा ने आहिस्ता से कहा। धीरे धीरे दीपक के इलाज से सीमा ठीक होने लगी। एक दिन फुर्सत के पलों में सीमा ने दीपक से कहा, दीपक मैंने तुम्हारे प्यार को ठुकरा कर

बहुत दर्द दिया था ना, मुझे मेरी गलती का सिला मिल गया। राज मुझे छोड़कर चला गया, उसने मुझे धोखा दिया। शादी के बाद मुझे पता चला कि इंग्लैंड में उसने एक और शादी कर रखी थी, उसके एक बेटा भी है। फिर अचानक कुछ सोचते हुए सीमा बोली, खैर तुम बताओ कैसे हो, तुम्हारे बीवी बच्चे कैसे हैं? दीपक, जो अब तक चुपचाप सीमा की बातें सुन रहा था, धीरे से बोला, मैंने शादी नहीं की सीमा। ये सुनकर सीमा की आंखों में एक चमक उभर आई। वो बोली, मैं जानती हूँ तुम आज भी मुझसे प्यार करते हो, है ना, इसीलिए तो शादी नहीं की, सीमा भावावेश में कहती चली गई। दीपक, हम क्यों ना गुजरी हुई बातों को भूलकर एक हो जाएं? मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ दीपक। दीपक चुप रहा, वो कुछ सोच रहा था।

0: क्यों है?
1: कुछ पल खामोश रहने के बाद डॉक्टर दीपक ने अपनी चुप्पी तोड़ी और बोला, अब बहुत देर हो चुकी है सीमा, आरती मेरा इंतजार कर रही है। कौन आरती? वही तुम्हारे दोस्त राहुल की अपाहिज बहन, सीमा ने कटाक्ष करते हुए कहा। उसे अपाहिज मत कहो सीमा, वो बहुत अच्छी और बहुत नेक लड़की है, तुम्हें क्या पता कि वो कितने काबिल है। हाँ, लेकिन तुम तो रूप और दौलत को ही सब कुछ समझती हो ना। खैर, मुझे यकीन है कि मैं आरती के साथ बहुत खुश रहूंगा। दर्द ही सही, लेकिन तुम्हारी ही वजह से मैं आज यहां तक पहुंचा हूं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सीमा। और हाँ, एक हफ्ते बाद मेरी आरती के साथ मंगनी है, तुम जरूर आना। ये कहकर दीपक वापस अपने घर की ओर मुड़ चला। सुनो दीपक, लेकिन प्यार तो तुम मुझसे, सीमा ने पीछे से आवाज देकर कुछ कहना चाहा। दीपक के कदम कुछ पल ठिठके, वो बिना पीछे मुड़े ही बोला, सीमा मेरी मंजिल तुम नहीं।

तो ये थी कहानी मेरी मंजिल तुम नहीं। कहानी की परिकल्पना, निर्देशन और प्रस्तुति है रश्मि कुकरेती की। तो अब मुझे यानी कुसुम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे पानी पे लिखी कहानी, जिसमें शीर्षक था मेरी मंजिल तुम नहीं। दोस्तों, कुछ कार्यक्रमों की रूपरेखा आपको बता देते हैं, क्योंकि अभी होंगे कुछ ही समय में हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, और 1:10 पर कार्यक्रम होगा गीत सुहाने। उसके बाद 2:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम रात सुरमई, और फिर 3:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हमराही, और आपके साथ रहेंगी रूपा धवन, और मैं अंजू रहूंगी आपके साथ शुरुआत के कार्यक्रमों में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी इस संबंध में विधायकों ने सिद्धारमैया और डॉ जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉ सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
1: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। केंद्रीय विद्युत, आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल आज आधिकारिक दौरे पर त्रिपुरा जाएंगे। इस दौरान वे सुबह अगरतला के मुक्तधारा सभागार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 134वें संस्करण का प्रसारण सुनेंगे। इसके बाद वे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से जुड़े एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। नागालैंड में उच्च शिक्षा को मजबूत करने के लिए दीमापुर सरकारी कॉलेज में कल 3 नई परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। ये परियोजनाएं प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान पीएम उषा के तहत शुरू की गई हैं। निर्वाचन आयोग ने कानूनी परामर्शदाताओं का राष्ट्रीय सम्मेलन कल नई दिल्ली में आयोजित किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने किया। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष और सही मतदाता सूची ही निष्पक्ष चुनाव की आधारशिला होती है। उन्होंने बूथ स्तर के अधिकारियों और बूथ स्तर के एजेंटों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि वे मतदाता सूची को सही और अद्यतन रखने में अहम योगदान देते हैं। अगरतला की विशेष सीबीआई अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसले में प्रगतिशील इंफ्रा प्रोजेक्ट्स एंड सर्विसेज लिमिटेड के 3 वरिष्ठ अधिकारियों को 6 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने तीनों को आपराधिक साजिश रचने, लोगों से धोखाधड़ी करने और त्रिपुरा जमाकर्ता हित संरक्षण कानून का उल्लंघन करने का दोषी पाया। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल

आज गगन में पूनम की रात है और साथ में तारों की बारात भी है, क्योंकि मिलन होगा चांद और चांदनी का, ऐसे में दोनों की मुलाकात है। दोस्तों, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आज अंजू आपके साथ, लेकर आई हूं कार्यक्रम गीत सुहाने। और रहिए इस घंटे मेरे साथ, सुनेंगे बहुत ही सदाबहार गीत। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

अच्छा सुनो, जहां हमें कोई नाम से ना पुकारे, जहां कोई हाल ना पूछे, जहां कोई हमें नाम से ना पुकारे और जहां कोई हाल ना पूछे, चलो उस अजनबी शहर की तरफ कदम बढ़ाते हैं।

लोग पूछते हैं हमसे हमारी दीवानगी की हद, लोग पूछते हैं हमसे हमारी दीवानगी की हद, हम मुस्कुराकर कहते हैं कि उनसे पूछो जिन्होंने मोहब्बत नहीं की।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

समय हुआ है 1:30 और 2 सेकंड। कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने और मैं हूं आपके साथ अंजू।

उसने पूछा कि बताओ मोहब्बत क्या है। उसने पूछा कि बताओ मोहब्बत क्या है। मैंने कहा कि किसी की खुशी में अपनी खुशी को ढूंढ लेना और खुद को खोकर किसी और के वजूद में खो जाना, यही प्यार है।

एक सुकून सा मिलने लगा है तेरी बातों में, जैसे कोई खोया हुआ तारा मिल गया हो रातों में। एक सुकून सा मिलने लगा है तेरी बातों में, जैसे कोई खोया हुआ तारा मिल गया हो रातों में। बस यूं ही बातें करते करते हम दिल हार बैठे हैं, सच कहें तो अब हमें तुमसे प्यार हो गया है यही मान बैठे हैं।

चेहरे पढ़ लेने का हुनर सीख लिया है हमने। लोगों के दिलों की हर बात हम यूं ही पढ़ लेते हैं। आंखों को क्यों छुपाए फिरते हो तुम हरदम, बिन देखे ही तेरी हर बात को हम यूं ही समझ लेते हैं।

वाले गीत है, अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 2:10 पर फिर से मिलूंगी। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल।

0: कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवाददात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉ सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
1: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। केंद्रीय विद्युत आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल आज आधिकारिक दौरे पर त्रिपुरा जाएंगे। इस दौरान वे सुबह अगरतला के मुक्तधारा सभागार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 134वें संस्करण का प्रसारण सुनेंगे। इसके बाद वे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से जुड़े एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। म्यांमा के उपराष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने श्री ऊ मिन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के प्रति म्यांमा के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काईकास्ट प्रणाली के शुभारंभ का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि स्काईकास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणाली कोहरे के दौरान उड़ान संचालन में सुधार कर सकती है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे ये तकनीक देश भर के अधिक हवाई अड्डों तक विस्तारित होगी, इससे सुरक्षा मजबूत और यात्रियों के यात्रा अनुभव में वृद्धि होगी। नागालैंड में उच्च शिक्षा को मजबूत करने के लिए दीमापुर सरकारी कॉलेज में कल तीन नई परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। ये परियोजनाएं प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान पीएम उषा के तहत शुरू की गई हैं। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। अहमदाबाद में ये महामुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में ओलावृष्टि के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना व्यक्त की है। आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं के साथ बादल गरजने की भी संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला।

समय हो गया है 2:11 और 4 सेकंड। ये समय है कार्यक्रम रात सुरमई का, जिसमें आप सुनते हैं बहुत ही मधुर गीत। और मैं हूं एक बार फिर से आपके साथ अंजू। बहुत ही सुहाने गीत, बहुत ही प्यारे गीत रहेंगे इस कार्यक्रम में, और आप भी कहीं मत जाइएगा। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

लोग पूछते हैं मुझसे मेरी दीवानगी की वजह, लोग पूछते हैं मुझसे मेरी दीवानगी की वजह, मैं तो बस मुस्कुराकर तुम्हारा ही नाम लेती हूँ।

जी हाँ, ये आकाशवाणी है और आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम है रात सुरमई और मैं हूँ आपके साथ अंजू। सुनो, आज बादलों से सिफारिश करके ये मौसम को

जी हाँ, ये आकाशवाणी है और आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम है रात सुरमई और मैं हूँ आपके साथ अंजू। सुनो, आज बादलों से सिफारिश करके ये मौसम को रुकवाया है। आज बादलों से सिफारिश करके ये इस मौसम को रुकवाया है ताकि तुम्हें जी भर के देख सकूं जो खुदा ने तुम्हें मेरे पास भिजवाया है।

ए हवा, जरा रुक और मेरे साथ साथ चल। कोई रास्ता नहीं, फिर भी तू मेरे साथ साथ चल। ले चल मुझे वहां जहां यादें उसकी महकती हों। ए हवा, कुछ तो मेरे साथ, कुछ देर मेरे साथ चल।

वादा निभाने का हुनर तो सीख लेते, वादा निभाने का हुनर तो सीख लेते, क्योंकि दिल तोड़ने की कला में तो तुम माहिर निकले।

जो कभी कहते थे कि धड़कन है हम तुम्हारी, जो कभी कहते थे कि धड़कन है हम तुम्हारी, आज वही मेरे दिल के टुकड़े करके चलते बने।

दवा की चाहत में हम तुम्हारे पास आए थे, दवा की चाहत में हम तुम्हारे पास आए थे, पर क्या पता था कि सबसे गहरा दर्द तो हमें तुमसे ही मिलना था।

दोस्तों, कार्यक्रम का आखिरी गीत है, अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 3:10 पर हम राही लेकर आएंगे आपके साथ मेरी दोस्त रेख रूपा, और मुझे अनुमति दीजिए, जल्द मिलूंगी कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड पर। अपना और अपने अपनों का खास ख्याल रखिएगा। नमस्कार, शुभ रात्रि।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव

0: प्रस्ताव पारित किया। डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉ सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
1: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। केंद्रीय विद्युत आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल आज आधिकारिक दौरे पर त्रिपुरा जाएंगे। इस दौरान वे सुबह अगरतला के मुक्तधारा सभागार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 134वें संस्करण का प्रसारण सुनेंगे। इसके बाद वे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से जुड़े एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति ओ मिन आउं लाइन भारत के 5 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने श्री ओ मिन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के प्रति म्यांमा के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। इससे पहले कल दिन में म्यांमा के राष्ट्रपति बिहार में गया गए और महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने नई दिल्ली में के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काईकास्ट प्रणाली के शुभारंभ का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि स्काईकास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणाली कोहरे के दौरान उड़ान संचालन में सुधार कर सकती है। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सीओ सेंग जाय और किम वॉन हो को हराया। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। अहमदाबाद में ये महामुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में ओलावृष्टि के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना व्यक्त की है। आज आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, माहे, लक्षद्वीप और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

साथियों, अगर पुराने फिल्मी गीतों की बात करें, युगल गीतों की, तो खूबसूरत शब्द का इस्तेमाल सिर्फ किसी के चेहरे की तारीफ ही नहीं, बल्कि मोहब्बत की पाकीजगी, हसीन वादियों और दिल के जज्बातों को बयां करने के लिए किया जाता था। तो क्यों ना कुछ ऐसे ही गीतों को, नगमों को याद किया जाए आपके साथ, आपके अपने चैनल पर। जी हाँ, आप सुन रहे हैं आप ही का पसंदीदा चैनल, आपका अपना चैनल, आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। वक्त हुआ है सुबह के 3:11 और 55 सेकंड। आप हैं हमराही कार्यक्रम में और आपके साथ आपकी दोस्त हूँ मैं, आप ही की हम सफर रूपा धवन। बहुत ही प्यार भरा नमस्कार। और आइए आगाज करते हैं इस गीत के साथ हमराही कार्यक्रम का, जिसे हमने शामिल किया है बेमिसाल फिल्म से किशोर साहब और लता जी के स्वरों में।

साथियों, चाहे डूबता हुआ सूरज हो, उगता हुआ सूरज, आसमान में चांद और तारों की छटा, गुलाब की पंखड़ी पर ओस की छोटी सी एक नन्ही बूंद, सभी कुछ अपनी खूबसूरती की कहानी को बयां करती है। ऐसे ही एक अजनबी हैं जो बात कर रहे हैं अपनी बहारों की मलिका से। आइए सुनते हैं वो क्या कहते हैं।

खूबसूरत। वाकई इस एक शब्द में कितनी कशिश है ना। लेकिन आज के दौर में जब हम किसी को बहुत सुंदर कह देते हैं तो वो भले ही दिल को ज्यादा छूती नहीं, लेकिन पुराने जमाने के खूबसूरत शब्द में जो हुआ करती थी कशिश, वो कशिश आज के जमाने में नहीं।

इस एक शब्द में कितनी कशिश है ना। लेकिन आज के दौर में जब हम किसी को बहुत सुंदर कह देते हैं तो वो भले ही दिल को ज्यादा छूती नहीं, लेकिन पुराने जमाने के खूबसूरत शब्द में जो हुआ करती थी कशिश, वो कशिश आज के जमाने में नहीं। खासकर तब जब ये शब्द ब्लैक एंड व्हाइट जमाने के युगल गीतों में रफी साहब, किशोरदा या लता दीदी की आवाज में हमारे कानों में घुलता था। यकीन नहीं आता तो चलिए सुन लेते हैं किशोर साहब और लता जी की आवाज में ये खूबसूरत सा गीत।

समय हुआ है 3:31 और 53 सुबह के, और जनाब कार्यक्रम हमरा ही सुन रहे हैं आप अपने ही चैनल आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और आज हमरा ही लेकर आपके साथ हूं मैं, आप ही की दोस्त रूपा धवन। तो बात कर रहे हैं आज हम उन गीतों की जो मोहब्बत की पाकीज़गी लिए हुए हैं, दिल के जज्बातों को बयां करने के लिए, हर शब्द को जो रूह से उतर जाता था उस गीत में इस्तेमाल किया जाता था तारीफ के पुलों को। जी हाँ, हम उन गीतों को सुन रहे हैं आज हमराही में, जो खूबसूरती के साथ साथ अपने दिल के अनेकों जज्बातों से महसूस कराता था। सुनते हैं एक ऐसा ही नगमा जिसे हम शामिल कर रहे हैं कारवा फिल्म से। और वैसे भी दोस्तों, जब हम पुराने युगल गीतों की बात करते हैं तो आनंद बख्शी साहब या मजरूह सुल्तानपुरी, उनके लिखे बोलों को हम अक्सर याद करते हैं, जहां खूबसूरत शब्द सिर्फ एक तारीफ नहीं। ऐसा ही एक बेहद हसीन नगमा हम शामिल कर रहे हैं जिसमें हसीन वादे की बात की गई है। कारवां फिल्म का ये नगमा आप सभी के लिए।

क्या बात है, सुन रहे हैं ना आप, इसे कहते हैं शब्दों का जादू। पुराने युगल गीतों में एक और खास बात थी, प्रेमियों के बीच की वो खट्टी मीठी नोकझोंक जहां नायक नायिका के खूबसूरती की कस्में खाता था और नायिका शर्माकर मुंह फेर लेती थी।

सचमुच रूप चाहे चेहरे का हो या दिल का, जब वो सुरों में ढलकर हमारे कानों तक पहुंचता है तो जिंदगी थोड़ी और खूबसूरत हो जाती है। आज के इस दौर में जहां सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी बदल रहा है, ठहर कर इन पुराने युगल गीतों को सुनना किसी सुकून से कम नहीं है। हमारा तो यही कहना है ना? सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा नगमा जिसमें नायक को जब दिल से प्यार हो जाता है नायिका के साथ, तो वो उसके साथ हमेशा रहना पसंद करता है, चाहे फिर उंगली में अंगूठी की जगह छल्ले की जगह लेकर ही क्यों ना रहे।

जी हाँ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही अपने दोस्त रूपा के साथ। आपका पसंदीदा चैनल आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। हमराही में आज हम बात कर रहे हैं खूबसूरत या दिल के जज्बातों को बयां करते कुछ ऐसे शब्दों से जिसका युगल गीतों में बेहतर प्रयोग किया गया। जाने से पहले बस इतना कहेंगे कि अपने आसपास की हर छोटी चीज में खूबसूरती ढूंढिए, क्योंकि जिंदगी खुद में बहुत खूबसूरत है। आइए चलते हैं एक ऐसे ही प्यारे से गीत की ओर, जहां बात कर रहे हैं उनकी जुल्फों की और वो कहां जा रही हैं।

4:10 पर अरुणिमा के साथ फिर से रहूंगी आपके साथ. अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार. तब तक के लिए विदा दीजिएगा मुझे यानी रूपा धवन को. नमस्कार.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। केंद्रीय विद्युत आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल आज आधिकारिक दौरे पर त्रिपुरा जाएंगे। इस दौरान वे सुबह अगरतला के मुक्तधारा सभागार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 134वें संस्करण का प्रसारण सुनेंगे। इसके बाद वे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से जुड़े एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है।

0: विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि कल से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉ सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
1: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रति वर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने श्री ऊ मिन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के प्रति म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। इससे पहले कल दिन में म्यांमार के राष्ट्रपति बिहार में गया गए और महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काईकास्ट प्रणाली के शुभारंभ का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि स्काईकास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणाली कोहरे के दौरान उड़ान संचालन में सुधार कर सकती है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे ये तकनीक देशभर के अधिक हवाई अड्डों तक विस्तारित होगी, इससे सुरक्षा मजबूत और यात्रियों के यात्रा अनुभव में वृद्धि होगी। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। अहमदाबाद में ये महामुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में ओलावृष्टि के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना व्यक्त की है। आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. In Karnataka, the Congress Legislature Party meeting in Vidhanasabha has elected D.K. Shivakumar as its new leader after the resignation of Siddaramaiah. His name was proposed by outgoing Chief Minister Siddaramaiah and Dr. G. Parmeshwar. After adopting the resolution, AICC General Secretary K.C. Venugopal made the official announcement. Later briefing the media persons in Bengaluru, Mr. Venugopal said, D.K. Shivakumar will visit the governor to stake claim to form the government. He also announced that the swearing-in ceremony will be held on 3rd of June. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in the Mann Ki Baat program on Akashvani at 11 a.m. today. It will be the 134th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across the entire network of Akashvani and Doordarshan, the AIR News website and the News on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashwani will broadcast the program in regional languages.

बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार मेरा, यानी आपकी दोस्त रूपा धवन का। आप सुन रहे हैं

एक अपना चैनल आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। जैसा कि हमने वादा किया था अभी कि अरुणिमा लेकर आपके साथ फिर से रहेंगे, तो आपकी सेवा में फिर से हाजिर हूँ अरुणिमा लेकर। समय हुआ है 4:11 सुबह के। तो दोस्तों, सुबह की ताजा हवा के साथ हैं हम आपके मनपसंद कार्यक्रम के साथ। और वैसे भी किसी ने क्या खूब कहा है, जिंदगी में धूप कितनी भी तेज हो, समंदर कभी सूखा नहीं करते। बहारों की महफिल हो तो ऐसी महफिल में हवा के झोंके रुका नहीं करते।

साथियों, अक्सर जब हमारे सामने मुश्किलें आती हैं तो हमारा पूरा ध्यान इस बात पर चला जाता है कि क्या क्या गलत हो रहा है, लेकिन जानते हैं सकारात्मक सोच इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम अपनी परेशानियों को अनदेखा कर दें। जी हाँ, बल्कि इसका मतलब ये है कि उन परेशानियों के बीच भी हम इस बात पर भरोसा रखें कि ये वक्त भी गुजर जाएगा और जो आने वाला पल होगा वो इससे बहुत ही बेहतर होगा। तो कुछ कुछ हमें दिल की भी तो सुननी चाहिए ना।

आप हैं अपने दोस्त रूपा के साथ हमराही के सफर पर। जी हाँ, हमराही के सफर से हम निकल चुके हैं, हम आ गए हैं अरुणिमा के पड़ाव पर। सोचिए जरा, एक आधे भरे हुए पानी के ग्लास को देखकर दो तरह के लोग बात करते हैं। एक कहता है ये आधा खाली है, इसमें निराशा है। दूसरा मुस्कुराकर कहता है अरे वाह, ये तो आधा भरा हुआ है। बस यही है आशा, यही है सकारात्मकता। ग्लास में पानी उतना ही है, बदला क्या, सिर्फ हमारा देखने का नजरिया। जब हम अपनी सोच को सकारात्मक रखते हैं तो आपको बंद दरवाजों के पीछे भी कोई ना कोई राह ऊंचे नीचे रास्तों से मिल ही जाएगी।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

आप हैं रूपा के साथ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अरुणिमा के सफर पर। जी हाँ, अरुणिमा का सफर है और वक्त है 4:30:53। सुनते हैं एक और ऐसा ही कुछ नगमा जो हमें आपसे मिलकर महसूस हो रहा है।

जी हाँ, जब मुलाकात इतनी हसीन हो तो लबों पर मुस्कुराहट आ ही जाती है। उस खुशी की इंतहा नहीं होती जब हमारे दिल के जो करीब होते हैं तो उनसे जब मुलाकात होती है तो सहसा ही मुस्कुराहट का आना सहज सी स्वाभाविक सी बात है। हर दिन को और हर दिन की शुरुआत को एक नई उम्मीद के साथ हमें करना चाहिए। अपने

चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान सजाकर, क्योंकि आपकी एक मुस्कान किसी उदास चेहरे पर रौनक ला सकती है। उस रौनक का आलम यह होगा कि कुछ ना कुछ तो गाने का मन भी जरूर करेगा।

जी हाँ, हम मानते हैं कि परिस्थितियाँ हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन उन परिस्थितियों में हम कैसा महसूस करेंगे ये पूरी तरह से हमारे हाथ में होता है। अपनी सोच को हमें बदलना होगा। जब हम अपनी सोच को बदलेंगे तो हमारी दुनिया खुद ब खुद बदल जाएगी, और जब हमारी सोच बदलेगी तो हमारा नजरिया खुद ब खुद बदल जाएगा। बस नजर प्यार भरी होनी चाहिए।

देखा, सिर्फ देखने के नजरिया ने ही दुनिया को बदल के रख दिया। प्यार से देखिए और दुनिया में उजाला ही उजाला हो जाएगा। फिलहाल अरुणिमा की महफिल यहीं तक। भोर सुहानी में फिर से आपके साथ रहूंगी। अब रूपा को विदा दीजिए और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कल कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया था। डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्चस्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि कल से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। सरकार ने कल से 31 अक्टूबर तक कपास के आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी रूप से छूट दे दी है। वस्त्र मंत्रालय ने कहा कि यह निर्णय कपास किसानों और संपूर्ण कपास मूल्य श्रृंखला के हितों को सर्वोपरि रखते हुए लिया गया। मंत्रालय ने कहा कि कपास के ऑफ सीजन के दौरान लागू किया गया ये उपाय वस्त्र उद्योग के लिए कपास की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री

0: जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
1: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में सैनिकों की तरह कार्य करने वाले बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों की प्रशंसा की। बैठक में सर्वोच्च न्यायालय और देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के साथ आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काई कास्ट प्रणाली के शुभारंभ का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि स्काई कास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणाली कोहरे के दौरान उड़ान संचालन में सुधार कर सकती है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे ये तकनीक देश भर के अधिक हवाई अड्डों तक विस्तारित होगी, इससे सुरक्षा मजबूत और यात्रियों के यात्रा अनुभव में वृद्धि होगी। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने श्री ऊ मिन के साथ मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक आपसी सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमा के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की प्रशंसा की। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष डबल्स फाइनल में आज सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना इंडोनेशिया के मोहम्मद शोहिबुल फिक्री और फजर अल्फियान से होगा। भारतीय जोड़ी ने मई 2024 में थाईलैंड ओपन के बाद से कोई खिताब नहीं जीता है। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में आज ओलावृष्टि और गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना व्यक्त की है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, माहे, लक्षद्वीप और देश के पूर्वोत्तर हिस्सों में आज तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in the Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 a.m. today. It will be the 134th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across the entire Akashwani and Doordarshan network, the AIR News website and the News on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashwani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar called on President of Myanmar, U Min Aung Hlaing, yesterday evening. In a social media post, Dr. Jaishankar appreciated Myanmar President's positive sentiment towards deepening the long-standing bilateral cooperation. He said that he is looking forward to the meeting of Mr. Hlaing with Prime Minister Narendra Modi to advance the partnership for peace, progress and prosperity. The visiting dignitary will hold discussions with Prime Minister Modi tomorrow on further strengthening the historical and civilizational ties between the two countries. Earlier yesterday, President of Myanmar visited Gaya in Bihar and prayed at Mahabodhi Temple. President Hlaing is on a 5-day visit to India. The government has temporarily exempted customs duties on cotton imports from the 1st of next month to 31st October this year. The Ministry of Textiles in a notification said that the decision has been taken keeping the interests of the cotton farmers and the entire cotton value chain at the forefront. It added that the measure implemented during the cotton off season will ensure adequate availability of cotton for the textile industry, support MSMEs, moderate input costs, and strengthen the competitiveness of Indian textile.

उठिए, किस पूरब की खिड़की से उस रब ने नूर बहाया है। जरा आंखें तो खोलिए जनाब, एक और खूबसूरत सवेरा आया है। नमस्कार, प्रणाम, सुप्रभात और एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान के साथ आप सभी को नमस्कार। आपकी दोस्त और हम सफर आपके साथ है रूपा धवन, भोर सुहानी लेकर। आप सुन रहे हैं आज का सबसे शांत और रूहानी शो। हर रोज की तरह इसी वक्त आपके साथ होता है भोर सुहानी। 5:11 पर आप हैं अपनी दोस्त रूपा के साथ। तो चलिए, सोच विचार कैसा, आज के दिन की शुरुआत भी प्रभु के नाम से करें और उन्हीं के साथ, उन्हीं के हाथ पर छोड़ दें हम आज का दिन भी।

दोस्तों, सुबह का ये जो वक्त होता है ना, जब आसमान का रंग गहरे नीले से धीरे धीरे संतरी होने लगता है, बस ये वक्त मानो आंखों में बसाने का दिल चाहता है इस समय को। ये वक्त कुदरत की सबसे हसीन पेंटिंग जैसा होता है। ठंडी हवा के झोंके जब चेहरे को छूते हैं तो ऐसा लगता है मानो जिंदगी खुद आकर हमारे कान में कह रही हो, चलो उठो, एक नई शुरुआत करते हैं। और वाकई इस वक्त से तो जो भी अगर देखेगा इसे तो दिल से लगाव हो जाएगा, दिल से इसका प्रेमी हो जाएगा।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भोर सुहानी, और भोर सुहानी में इतनी सुहावनी है कि बस हम तो मदहोश हुए जा रहे हैं। जी हाँ, ये समय बेहद खूबसूरत 5:29:55 भोर सुहानी के सफर पर आप हैं मेरे साथ यानी रूपा के साथ।